आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर

0: परमेश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: तो घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं। समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम पूजा के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको पूजा।
2: नमस्कार रिया, सभी को मेरा नमस्कार। पूर्व मंत्री नंदू बोधा के पुत्र जीनू बोधा की मौत दम घुटने से हुई है। कल रात पुलिस के चीफ फॉरेंसिक ऑफिसर डॉक्टर सुदेश कुमार गंगादीन द्वारा किए गए पोस्टमार्टम से ये पता चला है। जीनू बोधा को कल दिन के दौरान लानी कोलिया में मृत पाया गया। इस मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। जीनू बोधा का अंतिम संस्कार आज दिन के दौरान किया जाएगा। उनकी अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके पिता नंदो बोधा के मकान सुल्फेगिनो नंबर 5 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थामा मेल की सिमिट्री ले जाई जाएगी। MBC शोकग्रस्त परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करती है। कैम्ब्रिज के जून संस्करण के लिए ए लेवल मैथमेटिक्स में भाग लेने वाले 440 कैंडिडेट्स अनिश्चितता में हैं। कारण है गणित की 2 परीक्षा पत्रों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लीक होने की संभावना। एक बयान में मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट MES ने पुष्टि की है कि 29 अप्रैल का प्रश्न पत्र कई क्षेत्रों में समय से पहले साझा किया गया था, विशेष रूप से अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में, और इसलिए कैम्ब्रिज ने आधिकारिक तौर पर इस परीक्षा को रद्द कर दिया है और 9 जून को एक नया सत्र निर्धारित किया है। जहां तक दूसरे पेपर की बात है, जिसके मूल्यांकन मंगलवार को हुआ और जिसे भी लीक होने का संदेह है, MES ने बताया कि वो कैम्ब्रिज के निर्देशों का इंतजार कर रहा है। शनि जयंती हिंदू धर्म का एक बहुत ही शुभ दिन होता है। इस दिन भगवान शनि देव का जन्मदिन मनाया जाता है। ये दिन अमावस्या तिथि को आता है, इसलिए इसे शनि अमावस्या भी कहा जाता है। साल 2026 में शनि जयंती 16 मई 2026 को यानी आज मनाई जा रही है। इस पवित्र दिन भगवान सूर्य और माता छाया यानी स्वर्णा ने शनि देव को जन्म दिया था, इसलिए ये दिन शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। और अब मौसम का हाल। हमारे इलाके पर स्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान सुबह के समय तथा शाम को बादल घिरे रहेंगे। ऊंचाइयों पर हल्की वर्षा होगी और रात को भी बादल छाए रहेंगे तथा देश के पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों पर बारिश होगी। कोहरा भी छाया रहेगा ऊंचाइयों पर और हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। और दक्षिणी पश्चिमी लगूनों में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। जनता से पश्चिमी एवं दक्षिणी लगूनों में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 24 से 26, साहली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 24, अधिकतम तापमान 28 से 30

ऐ ईमान वालो, अल्लाह उसके रसूल से आगे न बढ़ो और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सुनता जानता है। ऐ ईमान वालो, अपनी आवाजें ऊंची न करो इस गैब बताने वाले नबी की आवाज से, और इनके हुजूर बात चिल्ला कर न कहो जैसे आपस में एक दूसरे के सामने चिल्लाते हो कि कहीं तुम्हारे अमल अकारत न हो जाएं और तुम्हें खबर न हो।

बेशक वो जो अपनी आवाजें पस्त करते हैं रसूलुल्लाह के पास, वो हैं जिनका दिल अल्लाह ने परहेजगारी के लिए परख लिया है, उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। बेशक वो जो तुम्हें हुजरों के बाहर से पुकारते हैं उनमें अक्सर बेअक्ल हैं, और अगर वो सब्र करते यहां तक कि आप उनके पास तशरीफ

ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक कर लो कि कहीं किसी कौम को बेजाने ईजा न दे बैठो, फिर अपने किए पर पछताते रह जाओ। और जान लो कि तुम में अल्लाह के रसूल हैं, बहुत मामलों में अगर ये तुम्हारी खुशी करें तो तुम जरूर मशक्कत में पड़ो, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें ईमान प्यारा कर दिया है और उसे तुम्हारे दिलों में आरास्ता कर दिया, और कुफ्र और हुक्म उदूली और नाफरमानी तुम्हें नागवार कर दी। ऐसे ही लोग राह पर हैं, अल्लाह का फ़ज़्ल और एहसान और अल्लाह इल्म हिकमत वाला है।

0: الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: और अगर मुसलमानों के दो गुरु आपस में लड़ें तो उनमें सुलह कराओ, फिर अगर एक दूसरे पर ज्यादती करे तो उस ज्यादती वाले से लड़ो यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट आए, फिर अगर पलट आए तो इंसाफ के साथ उनमें इस्लाह कर दो और अदल करो, बेशक अदल वाले अल्लाह को प्यारे हैं। मुसलमान मुसलमान भाई हैं तो अपने दो भाइयों में सुलह करो और अल्लाह से डरो कि तुम पर रहमत हो।

0: ए ईमान वालों, न मर्द मर्दों से हंसें, अजब नहीं कि वो उन हंसने वालों से बेहतर हों, और न औरतें औरतों से, दूर नहीं कि वो उन हंसने वालियों से बेहतर हों। और आपस में ताना न करो और एक दूसरे के बुरे नाम न रखो, क्या ही बुरा नाम है मुसलमान होकर फासिक कहलाना, और जो तौबा न करें तो वही जालिम हैं।
1: या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न।

ऐ ईमान वालों, बहुत गुमानों से बचो, बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है। और ऐब न ढूंढो और एक दूसरे की गीबत न करो। क्या तुम में कोई पसंद रखेगा कि अपने मरे भाई का गोश्त खाए, तो ये तुम्हें गवारा न होगा। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है।

ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें शाखें और कबीले किया कि आपस में पहचान रखो। बेशक अल्लाह के यहाँ तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो जो तुम में ज्यादा परहेजगार है, बेशक अल्लाह जानने वाला खबरदार है। गवार बोले, हम ईमान लाए। तुम फरमाओ, तुम ईमान तो न लाए। हाँ यूं कहो कि हम मुतीह हुए और अभी ईमान तुम्हारे दिनों में कहाँ दाखिल हुआ। और अगर तुम अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करोगे तो तुम्हारे किसी अमल का तुम्हें नुकसान न देगा। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है।

0: ईमान वाले तो वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर शक न किया और अपनी जान और माल से अल्लाह की राह में जिहाद किया, वही सच्चे हैं। तुम फरमाओ, क्या तुम अल्लाह को अपना दीन बताते हो? और अल्लाह जानता है जो कुछ आसमान और जो कुछ जमीन में है, और अल्लाह सब कुछ जानता है।
1: यमू

सही मुस्लिम की रिवायत है जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की तो अल्लाह दुनिया व आखिरत में उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। सही हदीस है कि जिस शख्स ने अपना गुस्सा रोका अल्लाह ताला उसके उयूब पर पर्दा डाल देगा। जो शख्स अपने गुस्से के मुताबिक अमल करने की ताकत के बावजूद अपने गुस्से को पी गया अल्लाह ताला कयामत के दिन उसके दिल को उम्मीद से भर देगा।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मजदूरी और उजरत की लालच के बग़ैर महज सवाब हासिल करने की नीयत से 7 साल तक अजान दे तो उसके लिए जहन्नम से नजात लिख दी जाती है। बहवाला तिर्मिज़ी शरीफ। हादी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स रास्ते पर चला जा रहा था, उसने रास्ते पर एक कांटेदार टहनी देखी तो उसे एक तरफ हटा दिया, अल्लाह ताला ने उसे उसका इनाम दिया तो उसकी बख्शिश फरमा दी। बहवाला मुस्लिम शरीफ़।

नबी आखिरी उज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सोने के लिए बिस्तर पर लेटे और अल्लाह ताला का जिक्र न करे तो ये उसके लिए क़यामत के दिन हसरत और नदामत का बाइस होगा। बुखारी शरीफ में रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जवान जिसकी जवानी इबादत इलाही में गुजरी उसे अल्लाह ताला रोज़े महशर अपने अर्श का साया अता फरमाएंगे।

Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.

0: कसा काय मंडळी
1: द बेस्ट सॉन्ग्स ऑन द रेडियो. दिस इज माय ओनली फेवरेट स्टेशन
2: RM 3 मनोरंजन रेडियो.

0: आपूस केसर तोता पुरे
1: शियाडे उंधियो खवा
2: बालोर पापड़ी ने मुठिया न भूलता
1: चौमासा मा भजिया तड़ो के

नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं वेदिता आप समों का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम भक्ति में शक्ति में। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और रेडियो मनोरंजन के साथ जुड़े हुए हैं। श्रोताओं, इस पवित्र शनिवार की सुबह हम सभी को शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज का दिन भगवान शनिदेव की आराधना, धैर्य, न्याय और कर्म के महत्व को समझाने का दिन है। कहते हैं कि जो व्यक्ति ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उस पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है। आज का दिन बहुत ही विशेष है और शनिदेव की कृपा हम पर बनी रहे। आइए इस सुबह को भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंग देते हैं।

श्रोताओं, शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। वे हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसलिए शनिदेव हमें सिखाते हैं कि जीवन में कभी भी अन्याय, अहंकार और बुरे कर्मों का साथ न दें। शनि जयंती के दिन तेल का दान, पीपल पूजन और हनुमान जी की आराधना बहुत शुभ मानी गई है। आइए प्रार्थना करें कि शनिदेव हम सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं।

श्रोताओं, इस समय आप कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति में शक्ति और मैं हूं वेदिता, आपका साथ दे रही हूं। श्रोताओं, जीवन में कठिनाइयां कभी भी आ सकती है, लेकिन शनि देव हमें संघर्ष से लड़ना और धैर्य रखना सिखाते हैं। हर मुश्किल हमें और मजबूत बनाती है। अगर हम सच्चे मन से भक्ति करें और अच्छे कर्म करें तो हर अंधेरा एक दिन रोशनी में बदल जाता है। विश्वास के साथ आज के दिन अपने मन को आप शक्ति और ऊर्जा से भर लीजिए और चलिए शनिदेव का ध्यान करें।

विनीता के साथ इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भक्ति में शक्ति। अब समय हो चला है श्रोताओं एक सुंदर भजन का जो समर्पित है भगवान शनिदेव के चरणों में। भक्ति और श्रद्धा से भरा ये भजन आपके मन को शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देगा। तो जुड़े रहिए भक्ति में शक्ति के साथ और लीजिए आनंद इस पवित्र प्रस्तुति का।

कहा जाता है कि एक बार राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव के प्रभाव को हल्का समझा, तब शनिदेव ने उनकी कठिन परीक्षा ली। राजा ने बहुत दुख सहे, लेकिन उन्होंने कभी धर्म और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। अंत में शनिदेव प्रसन्न हुए और उन्हें पुनः सम्मान और सुख प्राप्त हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और धैर्य हमेशा विजय दिलाते हैं।

भक्ति में शक्ति कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, मैं हूं वेदिता। श्रोताओं, हम लेकर आए हैं शनिदेव की एक पवित्र आरती। कहते हैं कि शनिवार के दिन आरती और मंत्र जाप करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन के कष्ट कम होते हैं। आइए भक्ति भाव के साथ मिलकर शनिदेव का स्मरण।

तो श्रोताओं, इस सुहानी शनिवार की सुबह पर याद कीजिए, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी का दिल न दुखाएं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और ज़रूरतमंद की मदद करें। यही असली भक्ति है और यही शनिदेव को प्रसन्न करने का सरल मार्ग है। भगवान शनि

देव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो प्रिय श्रोताओं, इसी के साथ भक्ति में शक्ति कार्यक्रम जो है हमारा आज का जो विशेष कार्यक्रम है शनि जयंती के संदर्भ में, यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। हम प्रार्थना करते हैं कि शनिदेव आपके जीवन के सभी दुख को दूर करें और सुख समृद्धि से आपका घर भर दें। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक ऐसे कार्यक्रम के साथ। अभी के लिए हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे कार्यक्रम के साथ आप जुड़े रहें। इजाज़त दीजिए हमें। जय शनिदेव, जय हनुमान।

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

0: सुनते हैं समाचार पूजा के साथ। आपको नमस्कार पूजा।
1: नमस्कार हंसिनी, सभी को मेरा नमस्कार। पोटली संबंधी राजधानी के सबसे अधिक भीड़ वाले स्थानों में से एक, यहां व्यापारियों और ग्राहकों ने कई वर्षों से कबूतरों की बढ़ती संख्या की शिकायत की है। ये समस्या आज एक वास्तविक सार्वजनिक स्वच्छता का मुद्दा बन गई है। कबूतरों का सब्जियों पर गंदगी फैलाना, गंदे कपड़े, बदबू, बाजार की स्थिति पर कई शिकायतें दर्ज की गई है। श्रम मंत्री रहीजा उतीम के साथ तीन बैठकों के बाद भी वर्ल्ड नीड्स यूनिवर्सल फैब्रिक्स और क्लीन टेक्सटाइल के कर्मचारियों के लिए अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया है। फेडरेशन डी ट्रावायर यूनिक से आत्मा शांतो ने कहा कि प्रभावित 550 कर्मचारी अपने पेशेवर भविष्य को लेकर बड़ी अनिश्चितता में हैं। संघ के अनुसार कुछ कर्मचारी आज गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें भोजन जुटाने में भी परेशानी हो रही है। आत्मा शांतो ने कहा कि इन तीन कंपनियों ने कई बार वित्तीय समस्याओं का हवाला दिया है। पूर्व मंत्री नंदू बोधा के बेटे जीनू बोधा की मौत दम घुटने से हुई है। कल रात पुलिस की चीफ फोरेंसिक ऑफिसर डॉ. सुदेश कुमार गंगाधीन द्वारा किए गए पोस्टमार्टम से ये पता चला है। आपको बता दें कि जीनू बोधा का अंतिम संस्कार आज दिन के दौरान किया जाएगा। उनकी अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके पिता नंदू बोधा के मकान सुल्फेरिनो नंबर 5 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामामेर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। गौतम लाल बिहारी का शिक्षा के

0: क्षेत्र में 38 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में अपनी मेहनत और लगन से एक विशिष्ट पहचान बनाई है। कोविड काल से उनका लेखन यात्रा शुरू हुई, जिसके फलस्वरूप उन्होंने गंतव्य नामक पुस्तिका लिखी। आज कौंजाबल के कैलाशनाथ मंदिर में उनकी इस पुस्तिका का लोकार्पण समारोह आयोजित किया जा रहा है। गौतम लाल बिहारी वर्तमान में फॉरेस्ट साइड के SSS बॉयज में हिंदी पढ़ा रहे हैं। उनकी लेखन यात्रा और शिक्षण के प्रति समर्पण ने उन्हें शिक्षा जगत में सम्मान और पहचान दिलाई है। शनि जयंती का पर्व भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना को समर्पित। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या तिथि पर सूर्य पुत्र शनिदेव का जन्म हुआ था। इस अवसर पर भक्त शनिदेव की विशेष पूजा, व्रत और दान पुण्य करते हैं, जिससे जीवन में चल रही परेशानियां, शनि दोष, कष्ट कम होने की मान्यता है। विदेश में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को चीन से औपचारिक रूप से स्वतंत्रता घोषित न करने की चेतावनी दी है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने पहले कहा था कि ताइवान को औपचारिक स्वतंत्रता घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही खुद को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में देखता है। अमरीका लंबे समय से ताइवान का समर्थन करता आया है, जिसमें कानून द्वारा इसे का साधन प्रदान करना शामिल है, लेकिन अक्सर इसे चीन के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखने के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता रहा है। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए कुछ ही समय में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
0: नंबर 37 बिशोलिन सैंपल फिनिक्स में 81 साल के 81 ईयर्स ओल्ड श्री जगदेव चमन, जिन्हें लोग सुरेश नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे इनके मकान नंबर 37 बिशोलिन सैंपल फिनिक्स से उठाकर फिनिक्स किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडिया 2:30 PM। और एवेन्यू बेल इतवाल पॉम्पलेमूस में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड श्री रोहिताश रामदीन, जिन्हें लोग सुरेश नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दोपहर के 3 बजे इनके मकान एवेन्यू बेल इतवाल पॉम्पलेमूस से उठाकर त्यामिनिस ट्रियोले किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडिया 3 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
2: Upcentered 95.5 North South 95.6 95.6 East West 98.2 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
5: घड़ी मिलाते चलिए, दिन के 12:05 हुए हैं।
6: सुहाना सफर।
5: हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और एक और शनिवार आ गया है, हमारी मुलाकात की घड़ी आ गई है और समय हो चला है आप लोगों के मनपसंद कार्यक्रम, जिसका नाम है सुहाना सफर। ऑफ कोर्स यू आर कनेक्टेड टू रेडियो मनोरंजन एंड साथ दे रही है आप ही की सखी अनीता, और हम यहाँ पर जो हैं आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस इन दो घंटों के सफ़र में हमारा हम सफ़र बन जाए, क्योंकि हम ऐसे गाने लाए हैं जो बेशक आप लोगों के लिए बहुत ही खास होगा और आप लोगों को डाउन मेमोरी लेन ले जाएंगे, पर साथ ही साथ इन गानों को सुनकर आप लोगों को इतना आनंद मिलेगा कि यू विल फील रिलैक्स, और वो भी एक शनिवार के दिन पर। तो चलिए मेरी पसंद का एक रेयर सा गाना सुनते हैं। 1975 की फिल्म है मेरे सजना। चलिए इस गाने का आनंद लेते हैं। और गाने के बोल हैं, मैंने कुछ खोया है

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: जी दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म मेरी सजना का मधुर एंड रोमांटिक गीत मैंने कुछ खोया है जो आप लोगों ने अभी आनंद लिया है। वाह वाह गीत, और दिग्गज किशोर कुमार द्वारा खूबसूरती से गाया यह गीत। यह सदाबहार गीत भावनाओं, रोमांस व क्लासिक बॉलीवुड अंदाज से भरपूर है। द म्यूजिक इज कंपोज बाय द आइकॉनिक डियो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वी हॉटफेल रिलिक्स बाय मजरू सुल्तानपुरी जी, जो इस गीत को स्वर्णिम युग का एक यादगार रत्न बनाते हैं। तो आइए एक और सदाबहार गीत सुनते हैं। फिल्म है दो चोर।

जी बिल्कुल दोस्तों, चाहे रहो दूर चाहे रहो पास, ये 1972 की फिल्म दो चोर जिसमें पिक्चराइज थे द डैशिंग धर्मेंद्र साहब एंड गोजस तनुजा जी, व्हाट एन इरा। और यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ गए हैं और हमने यहाँ पर हमें जो हैं शीला जी, शीला बुनमिया फ्लैग से उन्होंने हमें फ़ोन किया और आप काम से अभी अभी आए हुए हैं और जैसे आप आ गई आपने जो है रेडियो ऑन कर दिया हमारे कार्यक्रम को एंजॉय करने के लिए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है शीला जी। और आपकी मांग है फिल्म रोती कपड़ा और मकान, और आप कहती है जो पहला गाना आपने, जो पहला गाना हमने बजवाया था आपको बहुत पसंद आया, थैंक यू इसके लिए जी। तो चलिए आपके नाम यहाँ अगला गाना जाएगा, साथ ही साथ पूरे मकुना परिवार जो बुनमिया के रहने वाले हैं।

0: जी बेशक दोस्तों, आप पर लोग जो हम पर प्यार बरसा रहे हैं अपने मैसेजेस के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से, तो इसके लिए हम भी नहीं भूलेंगे, हम आप लोगों के आभारी हैं, तो थैंक यू इसके लिए जी।
1: सुहाना सफर।
0: जी दोस्तों, 12:23 हुए हैं और सुहाना सफर कार्यक्रम चल रहा है अनीता के साथ, और यहाँ पर हम आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहे हैं 5250 6200 पर, या फिर आप फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं 4028070 पर। और यहाँ पर सरिता जी कटरबोर्न से वे साथ दे रही है, और आपकी फरमाइश है फिल्म बहु बेटी का गाना, तो चलिए मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनते हैं यहाँ प्यारा गाना।

जी दोस्तों, जियो तो ऐसे जियो कि बस हम कहे कि जीवन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शोध है, तो जियो इस प्रकार की खुल के जियो कि एक रिग्रेट ना हो। और यहाँ लिस्पेरेंस ट्रेबुशे से मनोज जी, मनोज सोहन जी साथ दे रहे हैं और आप कहते हैं आप कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं। आपकी फरमाइश है फिल्म संगम का गाना, और यही गाना जाएगा विशेषकर हमेशा की तरह आपकी प्यारी पत्नी नजीमा के नाम, पूरे सोहन परिवार के नाम, और हमेशा की तरह आप हमारे बुजुर्गों को याद करते हुए उन्हें डेडिकेट करना चाहते हैं यह गाना। तो गया सिंह आश्रम के जितने भी बुजुर्ग हैं और जितने भी लोग अस्पताल में हैं, बीमार में हैं या कोई विपरीत परिस्थिति में है, तो उनके नाम यह प्यारा गाना जाएगा। साथ ही साथ विदेशी भगवत विदेशी जी तयक से साथ दे रहे हैं, और इस गाने पर आपको आपके नाम को जोड़ ले रहे हैं, और साथ ही साथ यह गाना जाएगा। आप कहते हैं टू माई स्वीट हार्ट अनुषा केदन ऑव मौताबा, तो चलिए आप दोनों के नाम, भगवत विदेशी जी और अनुषा केदन जी के नाम यहाँ प्यारा गाना।

0: सुहाना सफर सुहाना
1: सफर जी दोस्तों, जय श्री जी सुरीनाम से साथ दे रही हैं और आप जो हैं फिल्म फिर वही दिल आया हूँ का गाना सुनना चाहती हैं। आपकी फरमाइश है, आज आप आशा जी को सुनना चाहती है, तो चलिए यह गाना आपके नाम और आपके सभी प्रियजनों के नाम।

जी दोस्तों, कारो आकाशिया से बिंदु दुखित राम जी साथ दे रही हैं और आप कहती हैं कि आपको गाने बहुत पसंद आ रहे हैं और आपकी मांग है कि आप फिल्म जीने की राह का गाना सुनना चाहती हैं। यही गाना जाएगा खासकर पति रमेश के नाम, बेटे विकी हैं, बेटे विकेश हैं, बहू उषा हैं, बेटी दीपिका हैं, दामाद संजीव हैं और जितने भी छोटे बच्चे हैं, नाती नातिन हैं, उन सब के नाम यहाँ गाना जाएगा। और आप जो हैं इस शो को काफ़ी एंजॉय करती हैं, आप कहती हैं। साथ ही साथ यह गाना जाएगा शातु दे बेनागस की, ज्योति जी के नाम साथी हैं, अश्नी, रेखा, सुरेखा और पूरे माधव परिवार के नाम यह गाना जाएगा। तो चलिए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की प्यारी आवाज़ में।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, आज है शनिवार, रिलैक्स करने का दिन, घूमने का दिन, अपनों के साथ कुछ समय बिताने का दिन, एंड व्हाई नॉट एकांत में कुछ गीतों का आनंद लिया जाए। और यहाँ पर हम एक प्यारा गाना की फरमाइश आई है, फिल्म है इम्तिहान, और इसकी फरमाइश आई है थ्रियोले से कल्याणी जी द्वारा। और कल्याणी जी बेशक यह गाना सुनना चाह रही हैं, और यह गाना जाएगा विशेषकर उनकी चार बेटियों के नाम, श्वेता, हर्षिना, श्रेष्ठा, नितिशा, पति विरेन है, छोटा नातीन जियांश है, पूरे दुआओ परिवार। और साथ ही साथ यही गाना आ जाएगा फुलवंती जी के नाम, जो वाकवा से साथ दे रही हैं, और पूरे बालगोबिंद परिवार के नाम, उनके पति है देवानंद जी, बेटा है उषण, बेटी है भावना, बेटी है अर्थात मैं, मेरे लिए उन्होंने डेडिकेट किया यह गाना, अनीता है, पूनम है, रत्ना दीदी है, रोशन भैया है, और पूरे एमबीसी परिवार के नाम यह गाना जाता है। तो चलिए इस गाने को एंजॉय करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि बहुत ही प्यारा गाना है लता जी की सुरीली आवाज़ में।

0: सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, वाकवा से नंदलाल जी साथ दे रहे हैं और आपकी फरमाइश है आप फिल्म दिल तेरा दीवाना का गाना सुनना चाहते हैं और यही गाना जो आएगा पूरे लिसनर्स, सभी लिसनर्स के नाम और आपके परिवार वालों के नाम, तो चलिए सुनते हैं नजर बचा कर चले।

जी दोस्तों, खोंगुप से श्यामा जी साथ दे रही हैं और आपकी फरमाइश है फिल्म हम लोग का गाना लता जी की आवाज़ में, और यही गाना जाएगा आपके भाई जयप्रकाश के नाम, भाभी है नम्रता, नेफ्यूज़ हैं युधिष केशव, साथ ही साथ आपकी प्यारी सहेलियां हैं वीना कांफोल और विश्वानी दुखी। तो चलिए हम इस गाने को सुनते हैं।

जी दोस्तों, हम आपका दिल नहीं तोड़ेंगे और ठीक 1 बजे आप सुन पाएंगे समाचार। और अगला गाना जो जाएगा बीना जी के नाम, जो कटरबोन से साथ दे रही है और पूरे लक्ष्मण परिवार के नाम, फिल्म है काजल।

0: आइए सुनते हैं समाचार रजनी के साथ। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। कोरियन कस्टम्स सर्विस के एक डेलीगेशन ने मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के महानिदेशक के साथ जूनियर वित्त मंत्री दानिशा दामरी के साथ भेंट की। इसके अंतर्गत मॉरिशस में पार्सल्स के प्रवेश की प्रक्रिया नियंत्रित करने की दिशा में रिस्क मैनेजमेंट प्रणालियां मजबूत करने और उच्च टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। जूनियर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने ड्रग तस्करी से जुड़े खतरों के बेहतर संचालन और सरकारी सेवाओं के डिजिटाइजेशन की कटिबद्धता ली है। शिक्षा के क्षेत्र में जून महीने में कैम्ब्रिज परीक्षाओं के लिए ए लेवल मैथमेटिक्स में भाग लेने वाले 440 कैंडिडेट्स अनिश्चितता में हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस एग्जाम पेपर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लीक होने की संभावना है। एक बयान में मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट ने पुष्टि की कि 29 अप्रैल का प्रश्न पत्र कई क्षेत्रों में समय से पहले लीक हुआ, विशेष रूप से अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में। इसीलिए कैम्ब्रिज ने आधिकारिक तौर पर इस परीक्षा को रद्द कर दिया है और जून महीने को एक नया सत्र निर्धारित किया है। पुराने मंत्री नंदो बुद्धा के बेटे जीनो बुद्धा की मौत उसका गला दबाने से हुई है। कल रात पुलिस के चीफ फोरेंसिक ऑफिसर डॉक्टर सुदेश कुमार गंगाधीन की ओर से जो शव परीक्षण किया गया उससे ये बात सामने आई। जीनो बुद्धा को कलानी कोलिया में नरजीव पाया गया। इस मामले में दो संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया। विदेश समाचारों में अफ्रीका की एक प्रमुख सैनिटरी एजेंसी की ओर से कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में पूर्व के इतुरी जिले में प्रदेश में इबोला महामारी की घोषणा की गई है। करीब 246 मामले दर्ज किए गए, 80 लोगों की मौत हुई है। और भारत में मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब सहित 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: Pachala Road Amorime, Pachala.

0: रोड अमोरी में 34 साल के 34 years old के श्री मेलवन विनाथिथन, श्री मेलवन विनाथिथन की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे, आज दिन के 2 बजे उनकी माँ श्रीमती बबीता विनाथिथन के घर पाठशाला रोड अमोरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पितों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। केनी ग्लेन सैंपुल में 72 साल के 72 years old की जनाब मामूद राफिक भीनिक जो क्वीनी नाम से भी जाने जाते थे का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज दिन के 2 बजे उनके बेटे जनाब अल्फाद भीनिक के मकान केनी ग्लेन सैंपुल से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजा के लिए कागोलालियान मस्जिद माकवा ले जाया जाएगा, जिसके बाद दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रस्तान। फिनरल टुडे एट 2 PM। नंबर 37 बिशालेन सैंपुल फिनिक्स में, नंबर 37 बिशालेन सैंपुल फिनिक्स में 81 साल के 81 years old के श्री जगदेव चमन जो सुरेश नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनके घर नंबर 37 बिशालेन सैंपुल फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 2:30 PM। और रॉयल रोड शामुनी में 89 साल के 89 years old की श्रीमती मदोदरी दामो पैदाशी नाम मुसाई जो तारा नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के पौने तीन बजे उनके बेटे श्री अनिल दामो के घर रॉयल रोड शामुनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगोपाल श्रीमेघनिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:45 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
2: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: सुहाना सफर। जी दोस्तों, 1:05 हुए हैं और सुहाना सफर कार्यक्रम का दूसरा सेगमेंट शुरू हो चुका है जो चलेगा 2 बजे तक अनीता के साथ। और यहाँ पर अगला गाना जो है वो जाएगा किसके नाम, यहाँ पर है नंदा जी के नाम जो पाई से साथ दे रही हैं। और आपके पूरे परिवार के नाम, आपके पति है दीपक, आपके बेटे हैं अविनाश अभिषेक, फिर है अरविना अशील, नाती गुलू है और अरवी है। साथ ही साथ हाल ही में अभिषेक का की शादी हुई थी और तो आप लोग जो है नई बहू का स्वागत कर रहे हैं। और इस लिस्ट में एक नया नाम जुड़ गया है, आपकी बहू का नाम है दिव्या, तो दिव्या प्यारी बहू के नाम भी यहाँ गाना जाएगा। और सभी जो हैं गणेश और पुनीता परिवार के नाम, फिल्म संगम का गाना आप लोगों के नाम, जस्ट एंजॉय इट।

श्रोताओं, एक बात ज़रूर याद रखना चाहिए कि सामर्थ्य से अधिक बोझ भगवान कभी भी आपके कंधों पर नहीं रखते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक पिता बाजार जाता है और उसके साथ उनके दो बेटे भी जाते हैं, तो जो टोकरी थोड़ी अधिक भारी होती है, बेशक पिता जो है उस भारी टोकरी को बड़े बेटे को देगा, उसके सामर्थ्य को देखकर वह उसे जो है भारी टोकरी देगा और जो हल्की टोकरी है वह छोटे बेटे को देगा, क्योंकि उसका जो सामर्थ्य है बड़े बेटे की तुलना में कम है। तो अपने बेटों के सामर्थ्य

को देखकर ही उन्होंने प्रत्येक को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी। उसी प्रकार श्रोताओं, भगवान भी हमारे कंधों पर बोझ यूं ही नहीं डालते हैं। वे जानते हैं कि हम सामर्थ्य हैं, हम समर्थ हैं, हम कैपेबल हैं, हमारा सामर्थ्य है। कहते हैं कि जीवन में बिना हार्ड टाइम्स के आदमी लाइफ की सच्चाई जो है, लाइफ का मूल्य नहीं जान पाता है। इसलिए हार्ड टाइम्स जरूरी है। जो लोग कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, या कह सकते हैं कि जो लोग अभी विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उनको कहेंगे बों कुहाश, धैर्य धरिए, यहाँ भी समय जो है चला जाएगा, लेकिन जीवन में आपको सीख जरूर दे जाएंगी ये परिस्थितियाँ।

जी दोस्तों, मिलन का यहाँ गाना जाएगा माला जी के नाम, जो जो हम पास से सुन रही है, साथ ही साथ किरण, केविन, कनिल, कनिष, सत्यम और शिव भी है।

जी दोस्तों, गायत्री जी पिछले विषय से साथ दे रही हैं और आप सुनना चाह रही हैं फिल्म कल आज और कल, और यही गाना जाएगा भाभी मीरा के नाम, बेतिया गिरिशा मेढा कटरबोर्न की बहन अमृता, उनके बेतिया नेहा शीति दिव्या बेटे सुधीर कमलेश बहु सुधा हैं, और जितने भी लोग इस गाने को पसंद करते हैं देश में हो विदेश में हो उन सब के नाम, उन सभी लिसनर्स के नाम यहाँ गाना जाएगा। तो चलिए इस गाने को हम चलाते हैं आपकी पसंद पर।

जी दोस्तों, हमेशा की तरह यहाँ पर जो हैं मोहतालबे से अनीता जी ने एक छोटी सी पोएम भेजी है और आप कहती हैं, सुख और दुख अपने नसीब से मिलते हैं, सुख और दुख अपने नसीब से मिलते हैं, गरीबी का लेना, क्षमा कीजिए, जिसमें अमीरी और गरीबी का लेना देना नहीं होता, क्योंकि सुख इंसान खरीद नहीं सकता और दुख बेच नहीं सकता। इस कविता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। और आपकी फरमाइश है फिल्म सलामी का गाना, यही गाना जाएगा अनीता के नाम, क्षमा कीजिए, करुणा के नाम, अमृता के नाम और सभी दोस्तों के नाम, और जिन्हें मैसेज मिलना है ऑफ कोर्स उन्हें मिल जाएगा। शायद किसी खास के नाम भी यह गाना जा रहा है। आप ब्लश कर रही हैं, तो हमने ठीक ही कहा होगा। चलिए इसको गुनगुनाते हैं। कुमार शानू और अलका याग्निक की कर्णप्रिय आवाजों में तुम्हें।

जी दोस्तों, तुम्हें छेरे हवा चंचल। और यहाँ पर हमें एक प्यारा सा मैसेज मिला है आशा जानू जी की ओर से, कोटेज से सुन रही हैं। आप कहती हैं, नमस्ते अनीता जी। नमस्ते जी। विशिंग ऑल डिवोटीज ए पायस शांति जय, क्षमा कीजिए, शनि जयंती। हाँ, आज शनि जयंती बिल्कुल है, तो आप सभी भक्तगण को शनि जयंती की ढेर सारी मंगल कामनाएं। फ्रॉम मामा कुमारी, नेफ्यू शुभम हैं, ऋषभ हैं, दीदी आरती, जीजू राज हैं और पूरे जानू परिवार के नाम अगला गाना जाएगा। और आपकी फरमाइश है मिस्टर इंडिया का प्यारा सा गाना। बेशक किशोर कुमार साहब की आवाज़ में चलिए यहाँ गाना सुनते हैं। और इसी गाने में हम देवयानी जी का नाम जोड़ेंगे जो रेशमा फ्लैग से सुन रही हैं। और साथ ही साथ आपकी प्यारी पोती दिव्या है, आप सुनना चाहते थे महेंद्र कपूर साहब का ये गाना, लेकिन अभी लिस्ट में नहीं है, क्षमा कीजिएगा। अगले सप्ताह बिल्कुल आपके नाम कर देंगे। आपके पूरे देवधारी और छेड़ी परिवार के नाम यह गाना जाता है।

जी बिल्कुल दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें याद दिलाती है कि लाइफ इज रियली टू शॉर्ट। हम छोटी छोटी बातों को इतना दिल पर ले लेते हैं कि मुस्कुराना ही भूल जाते हैं।

कल की टेंशन, कल की गलतियां और आने वाले कल का डर। संस्कृत में एक भाव है अनित्य, मतलब सब कुछ टेम्पोररी, क्षणिक है। हर दुख, हर समस्या एक दिन गुजर जाती है, इसलिए हर बोझ को हमेशा साथ लेकर चलना जरूरी नहीं। कभी कभी बस सांस लो और स्माइल करो और धीरे से मूव ऑन करो, क्योंकि जिंदगी का असली राज ये नहीं कि कितनी समस्याएं थी, बल्कि ये है कि कितनी बार आपने उन समस्याओं के बावजूद मुस्कुराना नहीं छोड़ा। जी दोस्तों, अब अगला गाना जाएगा खासकर चांदनी पुरुषोत्तमम के नाम, जो हमें ब्रिटानिया से सुन रही हैं। आपकी फरमाइश है फिल्म, नई फिल्म पुकार का गाना, तो चलिए शंकर महादेवन और कविता कृष्णमूर्ति की प्यारी आवाज़ों में यह गाना सुनते हैं।

जी दोस्तों, सोना सफ़र कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर एक लिसनर हैं जो जिन्होंने हमें मैसेज भेजा लेकिन नाम नहीं लिखा आपने, और शायद हम सोच रहे हैं कि शायद यह माधुरी जी हैं और आप सुनना चाह रहे हैं फिल्म थ्रिशोल का गाना, और मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है, तो इस गाने को आपके नाम हम ज़रूर करेंगे। और साथ ही साथ ऐसे कई लोग हैं जो साथ जुड़े हुए हैं, कालबा से ललिता जी हैं, हम इसी गाने में आपका नाम जोड़ रहे हैं क्योंकि समय की कमी है, तो यहाँ गाना आपके नाम, और माई लवली सिस्टर, ओके, आपके प्यारी बहन के नाम, लेकिन बहन का नाम आपने नहीं लिखा जी। साथ ही साथ यह गाना जाएगा विशेषकर प्रकाशवती जी के नाम जो अभी बेल्जियम से साथ दे रही हैं, और साथ ही साथ कविता जी मुंशीदास से साथ दे रही हैं, और आप कहती है आशा है कि जो हैं आप कुशल मंगल हैं। जी हाँ, हम स्वस्थ हैं, धन्यवाद इसके लिए आपने हाल चाल पूछा, और समय की कमी के कारण हम अगले गाने में ही आपका नाम जोड़ रहे हैं, फिल्म त्रिशूल है, और मोताई ब्लॉन्श से माया जी हैं, आपने मैसेज भेजा है लेकिन थोड़ी देर से भेजा है इसलिए अगले गाने में ही आपका नाम जोड़ रहे हैं, और प्रेमिला है, स्वीती है, उन सब के नाम आप अगला गाना बजवाना चाह रही है, और सभी लोगों के नाम, तो चलिए, मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, अब जो है यह कार्यक्रम समाप्त ही होने वाला है, कुछ मिनट बाकी हैं और जो

अंतिम गाना बजने वाला है वो बेशक जाएगा हरीश जी की मांग पर अनु के नाम। हरीश जी कहते हैं कि वे बहुत ही अच्छे रोमांटिक मूड में हैं आज, तो

किसी खास के नाम बेशक अनु के नाम। तो चलिए यहाँ अगला गाना आ जाएगा फिल्म आशिकी से ही कुमार शानू की आवाज में। दिल का आलम क्या कर रहा है अभी हम सुनेंगे जरूर, और आशा करते हैं कि अनु भी इस गाने को सुनेगी अभी। और चूंकि समय नहीं है तो इस गाने में हम सुदेवी जी का नाम जोड़ ले रहे हैं, मुका से सुन रही है और आपको लाइन नहीं मिली है आठ। सुदेवी बेशक आपके पति राज है, बाबू अनंतवा पूरे अनंतवा परिवार कठरोबोन के रहने वाले हैं, और सभी सुनने वालों के नाम जिन्हें लाइन नहीं मिली है, नवीन जी मोताय ब्लॉश से हैं, और जितने भी लोग हमें हमेशा सुनते रहते हैं रेडियो के माध्यम से और फ़ोन करते रहते हैं, तो उन सब के नाम यहाँ अगला गाना जाएगा। और इसी के साथ अनीता कहती है कि अब मैं आप सभी को नमस्ते कहूँ और टेक केयर। हम फिर मिलेंगे अगले शनिवार को एक नए जज्बे के साथ, नए कार्यक्रम के साथ, और विशिंग यू हैव ए लवली वीकेंड और बो कुराज उन सबको जो काम करे हैं। तो चलिए अनीता की ओर से बाय बाय, टेक केयर, एंड कुमार शानू को सुनते हैं।

0: 94.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
1: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है रजनी, आपको नमस्कार।
2: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत करती हैं। सबसे पहले स्थानीय खबरें। कोरियन कस्टम सर्विस के एक डेलीगेशन ने मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के महानिदेशक के साथ जूनियर वित्त मंत्री दानिश शर्दामरी के साथ भेंट की। इसके अंतर्गत मॉरिशस में पार्सल्स के प्रवेश की प्रक्रिया नियंत्रित करने की दिशा में रिस्क मैनेजमेंट प्रणालियां मजबूत करने तथा उच्च टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। जूनियर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने ड्रग्स तस्करी से जुड़े खतरों के बेहतर संचालन और सरकारी सेवाओं के डिजिटलाइजेशन की कटिबद्धता ली है। मॉरिशस के सबसे पहले ई स्पोर्ट क्लब की लॉन्चिंग की गई है। मो स्पोर्ट्स और एलएसटीटी डुमोरिस की पहल है। ईएफएम रोजी में गेमर्स के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। कल रात मॉरिशस में फ्रांसीसी राजदूत और भूमि एवं आवास मंत्री की मौजूदगी में इस कैंपस की लॉन्चिंग की गई। सर्दी का मौसम अभी शुरू हुआ है और ठंड महसूस होने भी लग गया है। इस तरह थर्मोमीटर पर ही नहीं, ये पाया जा रहा है कि देश में सर्दी जुकाम के मामलों में चिंताजनक रूप से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 4 से 10 मई के बीच 3,400 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इससे एक सप्ताह पहले इसकी संख्या 3,000 थी। संबंधित सावधानियां बरतने की मांग की जा रही है। विदेशी समाचारों में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पांच देशों के दौरे पर हैं। संयुक्त अरब अमीरात के बाद वे नेदरलैंड्स पहुंच गए हैं। वहां हेग में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारतीय समुदायों को संबोधित करते हुए कहा कि इतना प्यार और उत्साह देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे वे भारत में ही किसी त्यौहार में हों, और साथ में उन्होंने भारतीयों के योगदान की भी सराहना की। भारत की ही बात करते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब सहित 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों को इस दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि देश के कई हिस्सों में 16 मई को मौसम में भारी बदलाव देखने को मिल सकता है। कई इलाकों में 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ उत्तर भारतीय राज्यों में एक बार फिर से भयंकर तूफान आ सकते हैं, जबकि कई इलाकों के लिए ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है। और अफ्रीकी समाचारों में यह खबर है कि अफ्रीका की एक प्रमुख सैनिटरी एजेंसी की ओर से कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में पूर्व के इलाके इतुरी प्रदेश में एबोला महामारी की घोषणा की गई है। करीब

0: 246 मामले दर्ज किए गए और 80 लोगों की मौत हुई है मुख्य रूप से मुंगवालू और रुआमपारा शहरों में युगांडा के अधिकारियों की तरफ से कल इस बात की पुष्टि की गई कि इबोला के मामले दूसरे देश से कोंगो में आए हैं संक्षिप्त समाचार ये बस समाप्त हुए आपने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद कुछ ही समय में शोक समाचार पाठशाला रोड अमोरी में 34 साल के 34 इयर्स ओल्ड के श्री मेलवेन विनाथितन की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे अभी से ही उनकी माँ श्रीमती बबीता विनाथितन के घर पाठशाला रोड अमोरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पितों के शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे 8:00 PM किनिक लेन सैंपुल में 72 साल के 72 इयर्स ओल्ड के जनाब महमूद रफीक भीनिक जो क्वीनी नाम से भी जाने जाते थे का इंतकाल हो गया है उनका जनाजा आज दिन के दो बजे उनके बेटे जनाब अल्फाद भीनिक के मकान किनिक लेन सैंपुल से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजा के लिए कागोलानियान वाकवा मस्जिद ले जाया जाएगा जिसके बाद अफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रस्तान फनरल टुडे 8:00 PM नंबर 37 बिशालेन सैंपुल फिनिक्स में 81 साल के 81 इयर्स ओल्ड के श्री जगदेव चमन जो सुरेश नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनके घर नंबर 37 बेशालेन सैंपल फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे 2:30 PM रॉयल रोड शामुनी में 89 साल के 89 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मदोदरी दामाओ पैदाशी नाम मुरसाई जो तारा नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के पौने तीन बजे उनके बेटे श्री अनिल दामाओ के घर रॉयल रोड शामुनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगोपाल शमेंगे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे 2:15 PM अवेनी बेल इतवाल पॉम्पलेमुसेज में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री रोहिताश रामजीन जो सुरेश नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनके घर अवेन्यू बेल इतवाल पॉम्पलेमुस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमनिस्त्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे 3:00 PM शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
2: इतिहास के झरोखों से

शनिवार 16 मई घड़ी मिला लीजिए दोपहर के 2:07 RM3 रेडियो मनोरंजन पर इतिहास के झरोखे इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। इतिहास के झरोखे से इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। ऐसे आपको बता दें कि आज हम अकेले हैं, अलका जी किसी कारणवश हमारे साथ नहीं जुड़ पाई है। अगले सप्ताह वो हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगी। तो आज हम यहाँ पर अभी से लेकर 3 बजे तक आपका साथ देने वाले हैं। और आपको बता दें कि आज हम किन पर बात करने वाले हैं। आज एक ऐसे व्यक्तित्व पर हम चर्चा करेंगे, ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे जो विश्वविख्यात कवि है, साहित्यकार है, दार्शनिक है और साथ ही भारतीय साहित्य के नोबल पुरस्कार के विजेता भी है। तो शायद इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज हम किन के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप भी इनके बारे में कुछ जोड़ना चाहते हैं, इनके बारे में आपने कुछ पढ़ा है जो आपको अच्छा लगता है, रविंद्र संगीत से आपकी काफ़ी रुचि है तो इस पर आप बात करना चाहते हैं, तो बेशक 4028070 पर आप हमें कॉल कर

भी सकते हैं। और कवि गुरु ठाकुर जी की हम बात करें तो विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और साथ ही भारत साहित्य के नोबल पुरस्कार विजेता हैं। उन्हें बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना की नई जान फूंकने का भी जो है इनका बड़ा एक योगदान रहा है। वे एशिया में प्रथम एशियाई थे जिन्हें जो है प्रथम नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी दो रचनाएं, यानी कि उनकी ऐसी दो रचनाएं हैं जो दो देशों का राष्ट्रगान बनी। जी हाँ, भारत और बांग्लादेश के जो है गुरुदेव जो है रचनाकार है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला। जी हाँ, और ठाकुर जी के बारे में जितना कहे उतना कम है। 7 मई इसी महीने 7 मई इनकी जन्म तिथि थी। 7 मई 1861 में इनका जन्म कोलकाता के जोड़ा शंकु ठाकुरबाड़ी में हुआ था। इनके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर और माता शारदा देवी थी। उनके आरंभिक जीवन की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो इनकी आरंभिक शिक्षा जो रही है प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल में हुई। उन्होंने बैरिस्टर बनने की इच्छा से 1868 में वे इंग्लैंड के ब्रिटेन के पब्लिक स्कूल में इनका दाखिला भी हुआ था। फिर लंदन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन इन्होंने करना आरंभ किया, लेकिन 1880 में बिना डिग्री प्राप्त किए ही ये स्वदेश पुनः लौट आए। सन 1883 में मृणालिनी देवी के साथ इनका विवाह हुआ। और ठाकुर जी के जीवन की अगर हम बात करें, खासकर इनके बचपन की बात करें, तो इनकी माता की जो मृत्यु है वो बचपन में ही हो गई थी और इनके पिता एक व्यापारी थे तो यात्रा में ही रहते थे ज़्यादातर समय। तो अतः इनका लालन पोषण जो है ज़्यादातर अधिकांश रूप से घर के नौकरों द्वारा ही किया जाता था। ठाकुर परिवार जो है अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध परिवार था। उन्होंने साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन करते थे बंगाली में, साथ ही पश्चिमी सांस्कृतिक संगीत एवं रंगमंच पाठकथाएँ इन सब से भी जुड़े थे, यानी कि कला से भी जो है ये काफ़ी जुड़े रहे, काफ़ी इनका लगाव रहा। और कुछ और बातें भी अगर अभी हम जोड़ेंगे, अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, इनके जीवन पर कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अभी के लिए इनका जो एक प्रसिद्ध गाना है, जो कहानी इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरती से गाया गया है, इसे हम आप लोगों के लिए प्रस्तुत करते हैं।

0: इतिहास के झरोखों से
1: यकीनन इस गाने के बारे में अगर हम बात करें जो अभी हमने चलाया ज्योति तो डाक सुने क्यों ना आशे तबे अकेला चल रे। हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा मोड़ आ ही जाता है कि अकेले चलना पड़ता है, जब आपको कोई समझता नहीं है, जब आपको समझने वाला नहीं होता है, जब आपका साथ देने वाला नहीं होता है, तो पुकारने पर भी कोई ना आए तो ज़िंदगी में अकेले आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि वक्त जो है, समय जो है, ज़िंदगी जो है, किसी के लिए रुकती नहीं है, तो हमें भी रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलिए रविंद्रनाथ ठाकुर जी के बारे में कुछ और बातें यहाँ पर जोड़ते हैं। ऐसे इनका जो परिवार रहा है काफ़ी प्रभावशाली परिवार रहा है, जैसे कि इनके पिता व्यापारी तो थे ही, साथ ही इनका पूरा परिवार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से साहित्य से जुड़ा रहा है, कला से जुड़ा रहा है, संगीत से जुड़ा रहा है। इनके भाइयों की यदि हम बात, ऐसे इनके पिता की अगर हम बात करें तो इनके समय जो है, इनके पिता जो है काफ़ी संगीतकारों को, काफ़ी नाटककारों को अपने यहाँ बुलाया करते थे, जो है रंगमंच पर जो है इनका जो है कार्यक्रम आयोजित हुआ, प्रदर्शित किया करते थे। और ठाकुर जी के पिता जो है कई पेशेवर संगीतकारों को अपने घर में रहने और बच्चों को भारतीय शास्त्रीय संगीत पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया करते थे। ठाकुर के जो सबसे बड़े भाई थे द्विजेंद्रनाथ, एक दार्शनिक थे और साथ में कवि भी थे।

0: उनके दूसरे भाई सत्येंद्र नाथ कुलीन और पूर्व में सभी यूरोपीय सिविल सेवाएं जो होती थी उसमें जो है ये पहले भारतीय नियुक्त थे व्यक्ति थे जो ये कार्य किया करते थे। इनके और एक भाई थे ज्योतिरिंद्रनाथ जो संगीतकार और नाटककार थे और साथ में इनकी बहन स्वर्ण कुमारी उपन्यासकार थी। और ज्योतिरिंद्रनाथ जी की जो पत्नी थी कादंबरी देवी ठाकुर परिवार से जो है ये उनकी बहू थी ठाकुर परिवार की। और ये रविंद्रनाथ ठाकुर जी के बचपन की एक अच्छी सहेली भी थी क्योंकि जब कादंबरी जी विवाह करके आई थी तो दोनों की उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं था तो इनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। और इनके बारे में अगर कुछ और बातें आप भी जोड़ना चाहते हैं तो बेशक 402-8070-70 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठाकुर जी की बात करें तो बड़े पैमाने पर विद्यालयी कक्षा की पढ़ाई से इन्हें परहेज था और ये जो है खुले मतलब के पर्यावरण में प्रकृति में नेचर में जो है पढ़ना लिखना बहुत ही पसंद करते थे। इसीलिए तो शांति निकेतन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ का जो परिवेश देखते ही अपने आप में बनता है क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई लिखाई करने का जो पद्धति है वो अपने आप में आम स्कूल और कॉलेज की पद्धतियों से बिल्कुल अलग है। और जो है ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई पर्यावरण से जुड़कर होती है, बंद कक्षाएं नहीं होती हैं, खुले आंगन में होती हैं। और ऐसे में माना जाता है कि बच्चों को जो है पढ़ाई के प्रति लगाव और भी बढ़ता है। चलिए कुछ और बातें अब हम जोड़ेंगे। अगर इनके साहित्यिक जीवन की यदि हम बात करें तो बचपन ही से जो है कवि ठाकुर जी को जो है कविता छंद और भाषाओं में जो है इनकी अद्भुत प्रतिभा थी। इन्हें पढ़ना लिखना बड़ा अच्छा लगता था और बहुत कम उम्र में जो है इन्होंने कविताएं लिखना छंद लिखना आरंभ कर दिया था। ठाकुर ने अपने जीवन काल में कई उपन्यास निबंध लघु कथाएं नाटक और बहुत सारे गाने लिखे हैं। वे आध्यात्मिक अपनी पद कविताओं के लिए जाने जाते हैं और साथ ही इनकी छोटी छोटी कहानियाँ जो है काफ़ी लोकप्रिय है और आज भी जी हाँ आज भी काफ़ी लोकप्रिय है। ठाकुर जी ने इतिहास भाषा विज्ञान और आध्यात्मिकता से जुड़ी पुस्तकें भी लिखी हैं। ठाकुर जी ने निबंध पर भी कई निबंध भी लिखे हैं और साथ ही जो है ऑब्वियसली जो है गीतांजलि के लिए तो ये विश्व प्रसिद्ध है। और चलिए यहाँ पर एक और गाना हम चलाएंगे और आज जितने भी गाने हम चलाएंगे ऐसे तो सभी के सभी गाने फिल्मी हैं लेकिन सभी गाने जो है रविंद्र संगीत से जो है इंस्पायर होकर बनाए गए हैं। इनका जो संगीत है काफ़ी प्रसिद्ध रहा है और इनका संगीत आज भी फिल्मों में किसी न किसी रूप में इस्तेमाल होता है। अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो लेजेंडरी कंपोजर्स जैसे कि एस डी बर्मन साहब सलील चौधरी राजेश रोशन जो है फ्रीक्वेंटली इनके सोल फुल मेलोडीज़ को जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कंपोज किए थे किसी ना किसी रूप में अपने गानों में उपयोग करते हैं। तो अभी के लिए जो गाना हम आपके लिए चलाने वाले हैं तेरे मेरे मिलन की ये रहना अभिमान फिल्म का ये गीत है। 70 के सालों में ये फिल्म आई थी। गाने को कंपोज किया था एस डी बर्मन साहब ने। क्लासिक डुएट है ये लता जी और किशोरदा की आवाज़ों में और ये जो है टैगोर जी की बंगाली कंपोजिशन ज्योति तारे नाई चिनीगो इस गाने का जो है हिंदी वर्जन है। तो चलिए साथ में मिलकर सुनते हैं।
1: You're listening to RM3 Radio, मन

चलिए इतिहास के झरोखे से इस प्रोग्राम में आप जुड़े हुए हैं और देखते ही देखते 2:28 ऑलरेडी हो गए हैं यहाँ पर और आज रविंद्रनाथ ठाकुर जी के जीवन पर हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं और साहित्य से जुड़ा जो इनका लगाव रहा है इस पर हम बात कर रहे हैं। ठाकुर जी के 150वें जन्मदिन के अवसर पर उनके कार्यों को एक

0: एक जो है रविंद्रनाथ रचनावली नामक एक संकलन वर्तमान में बंगाली जो है क्रम में प्रकाशित किया गया था। इसमें प्रत्येक उनके जो कार्य है, जो भी रचनाएं उन्होंने की है, वो सभी उसमें शामिल है। और ये 2011 में ये किया गया था और जो है ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि आज बहुत से बच्चे जो जो अब अपना PhD वगैरह करते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो है इन पर रिसर्च करते हैं, इनके बारे में लिखते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसे में जो है इनकी रचनाओं की यदि हम बात करें तो इनकी मुख्य रचनाएं जो है ऑब्वियसली गीतांजलि है, जिनके लिए इन्हें साहित्य के लिए नोबल पुरस्कार जो है दिया गया था। और यहाँ पर उनके अलावा इनकी कई और भी रचनाएं रही है, जैसे कि पूर्वी प्रवाहिन, शिशु, भोलानाथ, महुआ, वनवानी, परिशेष, विथिता, शेषलेखा, कणिका, गीतिमाल्याय, कथा ओ कहानी, ये सारी जो है इनके रचनाएं रही है। और रविंद्र संगीत की बात करें तो ठाकुर जी ने लगभग 2000 से भी गीतों की रचना, रविंद्र संगीत बांग्ला संस्कृति का जो है अपने आप में एक अभिन्न अंग है, और लगभग 2000 से भी ज़्यादा गीतों की रचना इन्होंने की है। और इनके गीतों का जो अडाप्टेशन है काफ़ी हमें हिंदी गानों में भी सुनने को मिलता है। ठाकुर जी के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता है। उनकी अधिकतर रचनाएं जो है अब उनके गीतों में शामिल हो चुकी है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ध्रुवपद शैली से प्रभावित ये गीत मानवीय भावनाओं के अलग अलग रंगों को, अलग अलग रूपों को प्रस्तुत करती है। कहते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी जो है बचपन में बहुत अकेलापन इन्होंने देखा है, क्योंकि बहुत छोटे थे तब इनकी माँ गुजर चुकी थी, इनके पिता एक व्यापारी थे, तो ज़्यादातर समय, अधिकांश समय बाहर काम करते हुए बिताते थे। तो ज़्यादातर इनका जो बचपन का वक्त है वो नौकरों के साथ बीता है, उन्होंने ही की देखभाल की है। तो ऐसे में अकेलेपन से ये काफ़ी जूझे हैं। तो यही सारी बातें जो हैं इनकी कविताओं में हमें पढ़ने को मिलती हैं, यही सारा अधूरापन जो है इनके गीतों में झलकता है, जो प्रेम है इनके गीतों में झलकता है। और अलग अलग जो है रागों में गुरुदेव के गीत यह आभास कराते हैं कि मानो उनकी रचना उस राग विशेष के लिए ही की गई हो। प्रकृति के प्रति गहरा लगाव रखते थे ठाकुर जी, और ऐसे में इनके गानों में प्रकृति से जुड़ा अंश भी हमें देखने को और सुनने को अवश्य मिलता ही है। तो चलिए आप बताइएगा कि आपको रविंद्रनाथ ठाकुर जी की कौन सी रचना अच्छी लगती है। आप बताइए कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी का कौन सा गीत है जो आपको पसंद है, या कौन सी ऐसी कविता है जो आपको पसंद है।
1: You're listening to RM3 Radio Mano.

0: इतिहास के झरोखों से।
1: चलिए आज रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में हम बात करते हैं। ऐसे इनका नाम तो रविंद्रनाथ ठाकुर है, लेकिन अंग्रेज़ों द्वारा जो है ये नाम एंग्लिसाइज्ड वर्जन बन के टैगोर बन गया था। ऐसे इनका असली नाम रविंद्रनाथ ठाकुर रहा है। और ठाकुर जी के बारे में बात करें तो इन्हें जो है जो ट्रेडिशनल स्कूल बंद कमरे जो कक्षाएँ होती थी कभी पसंद नहीं आती थी, और नेचर से इनका गहरा कनेक्शन था। टैगोर मानते थे कि असली शिक्षा क्लासरूम में नहीं प्रकृति के बीच होती है, इसलिए शांति निकेतन में बच्चे पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ते हैं और जो है और यही जो है स्वरूप शांति निकेतन में आज भी देखने को मिलता है। इस बात को आज भी बनाए रखने की जो है पूरी कोशिश की गई है, और नेचर से जुड़े होने के कारण जो है इनमें करुणा की भावना, संवेदनशील की भावना, जो भी मानवीय जो है हमारे थॉट्स प्रोसेस होते हैं, इनका जो जीवन है कुछ ऐसा ही रहा है। और अपने आप में ये काफ़ी इंटेलिजेंट थे, और इन्हें अपने जीवन के समय आइंस्टाइन के साथ भी जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ भी इनकी मुलाकात हुई थी, जहाँ पर दोनों ने साइंस और स्पिरिचुअलिटी पर गहरा डिस्कशन किया था। दोनों में काफ़ी गहरी बात हुई थी इस बात को लेकर। और जो है यहाँ पर आपको ये भी पता होगा कि महात्मा गांधी जी ने जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की पदवी दी थी, गुरुदेव का ये जो है नाम दिया था, और महात्मा गांधी जी को महात्मा कहकर रविंद्रनाथ टैगोर जी बुलाया करते थे। तो ये भी एक गहरा नाता है दोनों में कि महात्मा गांधी जी इन्हें गुरुदेव कहा करते थे और टैगोर जी इन्हें महात्मा के नाम से पुकारा करते थे। ऐसे बचपन से ही ये जीनियस थे। महज 8 साल की उम्र में जो है इन्होंने अपनी पहली कविता जो है लिखी थी,

0: और जैसे कि हमने बताया कि 2000 से भी ज़्यादा गाने इन्होंने कंपोज किए हैं, जिसे रविंद्र संगीत कहा जाता है। आज भी बंगाल में जो है ये एक अलग म्यूज़िकल ट्रेडिशन है। बहुत से बच्चे तो सिर्फ इसी को जो है एक सब्जेक्ट लेकर पढ़ते हैं, इस पर गहन अध्ययन करते हैं। टैगोर ने जो है यूरोप, अमेरिका, जापान, चाइना जैसे देशों का सफ़र किया है और हर जगह अपने लेक्चर से लोगों को इन्होंने इंस्पायर किया है। वो अपने आप में एक दार्शनिक थे, एक ग्लोबल थिंकर थे। और इनके निजी जीवन की बात करें तो इनके निजी जीवन में बहुत ही दुख और अकेलापन रहा है। चलिए इनके निजी जीवन के बारे में कुछ और बातें हम जोड़ेंगे। अभी के लिए एक छोटे से गाने के साथ हम प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं इतिहास के झरोखे से, जिसे आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन।
1: इतिहास के झरोखों से
2: listening to RM3 Radio. You're listening to RM3 Radio.

0: इतिहास के झरोखों से
1: ऐसे याराना फिल्म का ये जो प्रसिद्ध गाना अभी आप सुन रहे थे, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, किशोरदा की आवाज़ में ये गाना भी जो है रविंद्र संगीत से इंस्पायर हुआ है। राजेश रोशन साहब ने इस गाने को इस टाइमलेस मेलोडी का अडाप्टेशन तुमार होलो शुरू ये जो गाना है इससे जो है अडाप्शन करके इस गाने को बनाया है और ये गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ था बॉलीवुड में। और चलिए ठाकुर जी के जीवन के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे तो गुरुदेव ने जीवन के अंतिम दिनों में जो है चित्र बनाना भी शुरू किया था। ऐसे तो कविताओं की बात करें, हम रविंद्र संगीत की बात करें, गानों की बात करें, नाटकों की बात करें, इसमें तो इनका बड़ा योगदान रहा ही है, लेकिन अंतिम दिनों में इन्होंने चित्र बनाना भी आरम्भ किया था। इनमें युग का संशय, मोह, क्लांति और निराशा के स्वर प्रकट हुए हैं। मनुष्य और ईश्वर के बीच में जो चिरस्थायी संपर्क है उनकी रचनाओं में अलग अलग रूपों में उभर कर सामने आए हैं। ठाकुर और महात्मा गांधी जी के बारे में तो हमने आपको बताया ही था। ठाकुर ये नाम महात्मा गांधी जी ने जो है रविंद्रनाथ जी को दिया था और महात्मा की जो पदवी है ये इन्हें ठाकुर जी ने ये नाम उन्हें दिया था। लेकिन जब देश की बात आती है तो दोनों में मतभेद काफ़ी था। गांधी जी मानते थे राष्ट्रवाद को ऊपर रखते थे, वहीं ठाकुर जो थे वो मानवतावाद थे और इस बात को लेकर दोनों में बहस हमेशा होती थी। लेकिन दोनों ही के मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम भी उतना ही था। एक समय था जब शांति निकेतन आर्थिक कमी से जूझ रहा था और गुरुदेव देश भर में नाटकों का मंचन करके जो है पैसे इकट्ठा करते थे। उस समय कहा जाता है कि गांधी जी ने ठाकुर जी को उस समय 60,000 रुपये का अनुदान का चेक दिया था और जीवन के अंतिम समय में 7 अगस्त 1941 में कुछ समय पहले इलाज के लिए जब शांति निकेतन से ठाकुर जी को कोलकाता लाया जा रहा था तो उनके नातिन ने कहा था कि आपको मालूम है हमारे यहाँ नया पावर हाउस बना है और जवाब में उन्होंने कहा था पुराना आलोक चला गया है और नए का आगमन हुआ है। ऐसे ठाकुर जी के जीवन से ऐसी कई ऐसी बातें, छोटी छोटी बातें, कई ऐसी विशेषताएं जुड़ी हुई है जो लोग आज भी इस पर चर्चा करते हैं।
0: इतिहास के झरोखों से
1: जी हाँ, उनकी रचनाओं में मनुष्य और ईश्वर के बीच जो चिरस्थायी संपर्क है वो विभिन्न रूपों में उन्होंने अभिव्यक्त किया है। उन्होंने बंगाली साहित्य में नए तरह के पद और गद के साथ बोलचाल की भाषा को भी प्रयोग किया है। इसमें बंगाली साहित्य और कला और संस्कृति भी जुड़ जाती है। ठाकुर जी की जो रचनाएँ हैं बांग्ला साहित्य में एक नई ऊर्जा लेकर आई हैं। उन्होंने एक दर्जन से अधिक उपन्यास लिखे हैं, इसमें चुखेर बाली, घरे बहिरे, गोरा आदि शामिल है। उनके उपन्यास जो है, उनके जो लिखे हुए उपन्यास हैं वो कई फिल्मों में जो है कहानी के रूप में भी दर्शाए गए हैं। उनके उपन्यास के माध्यम से वर्गीय समाज विशेष रूप से उभर कर सामने आया है और कहीं ना कहीं जो है इनकी कथाएं, इनका संगीत, इनकी कविताएं आज भी बहुत ही प्रसिद्ध है और जब भी रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती मनाई जाती है जो अभी कुछ दिन पहले मनाई गई, उस दिन जो है इनकी लिखी हुई कविताएं, इनके जो है कंपोज किए हुए गाने गाए जाते हैं, अलग अलग रूपों में इनकी कहानियों को जो है स्टेज पर दर्शाया जाता है और लोग बहुत ही रुचि से इसमें भाग लेते हैं, देखने और सुनने को आते हैं।

0: इतिहास के झरोखों से।
1: तो ये गाना अभी जो आपने सुना युग पुरुष, इस फिल्म से लिया गया। ये भी रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्र संगीत का

एक अडैप्टेशन है एक गीत का। टैगोर जी सिर्फ एक कवि या लेखक ही नहीं थे, वो एक सोच, एक दर्शन और एक पूरी दुनिया थे। उन्होंने अपनी कविताओं, अपने गीतों, अपनी कहानियों और शिक्षा के माध्यम से इंसान को खुद से, प्रकृति से और ईश्वर से जोड़ने का कार्य किया था। उनकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि दर्द और खुशी दोनों ही जीवन

चाहे नोबल प्राइज हो, राष्ट्रगान हो या शांति निकेतन जैसा सपना, टैगोर ने हर जगह एक ही बात कही है, इंसानियत सबसे ऊपर है। इनके लिए मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, जो राष्ट्रवाद से भी ऊपर रखा करते थे। उनके जीवन एक मिसाल है, और अगर सोच आज़ाद हो तो इंसान दुनिया को नए नज़रिए से देख सकती है। टैगोर ने शब्दों से सिर्फ कविता ही नहीं लिखी, बल्कि हर एक व्यक्ति को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवन कैसा होना चाहिए एक व्यक्ति का। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम के हम लगभग अंत तक आ गए हैं। हमने रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन के बारे में कुछ अंश जोड़ने का प्रयास किया। आशा करते हैं ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। जाते जाते एक और सुंदर गीत आप सभी के नाम हम करते हैं, और इसी के साथ आज का कार्यक्रम खत्म होने को चला। 3 बजे आप सुनेंगे समाचार, और उसके बाद सवेरे जो आज की चर्चा कार्यक्रम चला था उसका रिब्रॉडकास्ट आप सुन पाएंगे। हमें दीजिए अनुमति, अगले सप्ताह हम आपसे मिलेंगे। नमस्कार आप सभी को।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है रजनी। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। स्थानीय खबर सबसे पहले, आज दिन के दौरान जॉन माइल ओलिविए रोज और लुई इस्माइल मिकेल लारिबॉब को वीकेंड कोर्ट में मैजिस्ट्रेट ननलोर के सामने पेश किया गया। उन पर हत्या का अस्थायी आरोप लगाया गया है। इंक्वायरी ऑफिसर ने बताया कि पुलिस को उनकी रिहाई पर आपत्ति है क्योंकि सबूत और गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने और उनके भागने का खतरा है। दोनों ही संदिग्ध लोगों को अगले 18 मई तक पुलिस सेल में भेजा गया। उन्हें अगले सोमवार 18 मई को मापो अदालत में पेश किया जाएगा। बता दें कि पुराने मंत्री नंद बुद्धा के बेटे जिनो बुद्धा की मौत उसका गला दबाने से हुई थी। पुलिस के चीफ फोरेंसिक ऑफिसर डॉक्टर सुदेश कुमार गंगाधर की ओर से शव परीक्षण किया गया और ये बात सामने आई। जिनो बुद्धा को कलानी कोरिया में निर्जीव पाया गया। फ्लैक स्थित अनिरुद्ध जगन्नाथ अस्पताल के बाद अब पोर्ट लुइस जीतू अस्पताल में एक ट्रोमा एंड इमरजेंसी यूनिट की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचूर और चुनाव क्षेत्र के सांसदों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द अन्य इलाकाई अस्पतालों में भी ट्रोमा एंड इमरजेंसी यूनिट का इंतजाम किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिससे अभिभावक और अध्यापक दोनों ही चिंतित। स्कूल सर्टिफिकेट के हालिया नतीजों से ये पता चलता है कि 50% से कम छात्रों को फ्रेंच भाषा में एक डिस्टिंक्शन या एक क्रेडिट प्राप्त हुआ है। 13,000 छात्रों ने इन परीक्षाओं में भाग लिया था जिनमें से केवल 3% को ग्रेड 1 हासिल हुआ। इस गिरावट का कारण यही बताया जा रहा है, ज़्यादा समय स्क्रीन के सामने बिताना और कम पढ़ाई करना। मॉरिशस के सबसे पहले ई स्पोर्ट क्लब की लॉन्चिंग की गई। मो स्पोर्ट्स और लेंस्टिटी दे मोरिस की पहल है। ईएफएम रोजिल में गेमर्स के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मॉरिशस में फ्रांसीसी राजदूत और भूमि एवं आवास मंत्री की मौजूदगी में इस कैंपस की लॉन्चिंग की गई। विदेशी समाचारों की ओर बढ़ते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे पर हैं। संयुक्त अरब अमीरात के बाद वे नेदरलैंड्स पहुंचे। वहां हेग में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारतीय समुदायों को संबोधित करते हुए कहा कि इतना प्यार और उत्साह देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे वे भारत में ही हैं, किसी त्यौहार में हों, और उन्होंने भारतीयों के योगदान की भी सराहना की। अली फली कदीम अल कैदी जैदी इराक के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने इराक के नए प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए दोनों देशों की साझा तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद जताई। इसके साथ ही अली जैदी इराक के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। इराक के नए प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने सिर्फ एक अधूरे कैबिनेट के साथ शपथ ली। संक्षिप्त समाचार ये पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में एक शोक समाचार। अवेन्यू बेल इतवाल पॉम्पलेमुसेज में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री रोहिताश रामजीन जो सुरेश नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई।

0: गई है। उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनके घर आवेनी बेले ट्वाल पॉम्पले मुसे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमनीस त्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

0: नमस्कार, आज की चर्चा कार्यक्रम में मैं किरण आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की चर्चा जो विषय बना हुआ है वह है मॉरिशस में शर्तबंद मजदूरी। अभी 3 दिनों तक मॉरिशस में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन चला जो कि इंडेंचर लेबर रूट पर आधारित था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच था जहाँ पर विदेश से अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, शोधकर्ता हैं, जो व्याख्यान देने वाले लेक्चरर हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो लोग मॉरिशस आए और मॉरिशस के भी जो रिसर्चर्स हैं, जो शोधकर्ता हैं, वो उन सभी लोगों ने इसमें भाग लिया। और फिर दुनिया भर में किस तरह से शर्तबंद मजदूरी फैली, कैसे भारत से निकलकर अलग अलग देश में जाकर आज भी भारतीय बसे हुए हैं, उनके वंशज बसे हुए हैं, इन बातों पर चर्चा की गई। और इसके अंतर्गत अलग अलग विषयों पर बातचीत हुई, कई पेपर्स प्रस्तुत किए गए। और जब मॉरिशस में हम शर्तबंद मजदूरी की बात करते हैं, इंडेंचर पर बात करते हैं, तो ऐसी कई संस्थाएं हैं जो इस विषय पर काम कर रहे हैं, इस विषय से जुड़ी गतिविधियां चला रहे हैं। विषय मैंने कहा कि हमारे पुरखन की जो यादें हैं, उनका जो इतिहास है, उन पर चल रहा जो रिसर्च है, इन सभी पर कार्य किए जा रहे हैं। और उनमें से एक है गोप्य मॉरिशस। गोप्य मॉरिशस किस तरह से हमारे पुरखों की यादों से जुड़कर गतिविधियां चलाता है, किस तरह उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है, किस तरह उनके संस्कारों, उनकी संस्कृति, उनके इतिहास को जनता तक प्रस्तुत किया जाता है, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं गोप्य मॉरिशस के प्रधान श्री विनय दसोई जी। विनय दसोई जी, नमस्कार।
1: नमस्कार किरण जी,
0: आज इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है।
1: धन्यवाद।
0: और जैसा कि मैंने कहा, अभी हमने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चलाया, हमारे देश ने चलाया। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डायस्पोरा देशों में इंडेंचर की बात करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश में इंडेंचर से जुड़ी जो गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं, गोप्य मॉरिशस का इसमें क्या भागीदारी है, इन सभी बातों पर ध्यान दें। और हम चाहते हैं कि आप मॉरिशस में गोप्य मॉरिशस की जो भूमिका है उस पर ज़रा प्रकाश डालें, ताकि लोगों को पता चले कि इंडेंचर जो डायस्पोरा देश में अलग अलग स्कॉलर्स उस पर बात कर रहे हैं, मॉरिशस में जो कि इंडेंचर लेबर रूट का सचिवालय संभालता है, इसमें गोप्य मॉरिशस जैसी एक संस्था है जो कि हमारे पुरखों की यादों से जुड़ी हुई है, ज़रा इस पर प्रकाश डालिए।
1: नमस्कार सभी को। बड़ा अच्छा प्रश्न किया, लेकिन सबसे पहले मैं अपने और गोपियों, पूरे गोपियों परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। हमारे सभी पूर्वज लोग जो आए थे और जिन्होंने इस देश को बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मेहनत करके, अनुकूल परिस्थिति नहीं थी, बड़ी गलत व्यवहार किया गया था उनके साथ, लेकिन उन्होंने अपना जो माइंड है, दिमाग है, बड़ा शांत रखा और आगे का रास्ता चुना। तो उनके लिए, उनकी इस ब्रेवरी के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं गोपियों की ओर से और पूरे पीआईओ परिवार की ओर से। देखिए, शर्तबंद मजदूर, एक शब्द में कहेंगे तो उसको बोलेंगे मजबूरी।
0: अच्छा जी,
1: क्योंकि वो खुशी खुशी आए नहीं थे, मजबूरी थी,
0: भारत की दुर्दशा थी उधर। हाँ, मॉरिशस में
1: पेट का सवाल था, पेट का सवाल था, और अच्छे दिन के सपने थे
0: जी। हाँ।
1: कि अच्छे दिन के लिए हम जिए, बच्चों के लिए जिए। उस समय भी उनके दिमाग में इसीलिए वो बाहर आए थे, क्योंकि अपने

0: बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे थे,
1: जरूर, या तो, फिर अपने परिवार की भलाई के लिए सोच रहे थे,
0: पूरा आगे का परिवार जो है कैसे, जो वो सह रहा है उससे थोड़ा कम उनको दुख है, इसके लिए वो सोच रहे थे और आगे कर रहे थे। इसलिए वो देश छोड़कर गए विदेशों में, जहाँ जहाँ अवसर मिला, अभी भी लोग जाते हैं
1: जी हाँ।
0: लेकिन अब बड़ा सभ्य
1: तरीके से
0: जाते,
1: अभी कानून है, कई नियम है, लेकिन उस समय तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी कॉन्ट्रैक्ट है, आप पहले से अपना कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, साइन करते हैं, अग्रीमेंट सच में होता है क्या? उस समय अग्रीमेंट था, कहाँ था
0: वो, मतलब बोलने के लिए अग्रीमेंट था कि आपको ये इसी शर्त पर ले जाते हैं, फिर शर्त भूल गए तो भूल गए, आपका कोई उसमें कुछ बोल नहीं सकते आप, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं। अभी तो सब कुछ लिखा है, बाहर से भी लोग मॉरिशस में अभी भी काम करने आते हैं,
1: मॉरिशस से बाहर जाते हैं।
0: अरे अभी कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं।

0: कोई उसमें कुछ बोल नहीं सकते आप, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं।
1: हाँ।
0: अभी तो सब कुछ लिखा है, बाहर से भी लोग मॉरिशस में अभी भी काम करने आते हैं,
1: मॉरिशस से बाहर जाते हैं।
0: हाँ, अरे अभी कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं, थोड़ी उसमें हम भी है, बाहर के ओरिजिन बाहर के, भारत के बाहर, मॉरिशस में भारत से कई लोग आए, यहाँ बस गए, फिर यहाँ से कई देशों में गए, इस तरह से इंडियन डायस्पोरा बना। और हर देश की अपनी अपनी सच्चाई है, अपनी अपनी कहानी है, अपना अपना इतिहास है, और मॉरिशस का भी बहुत बड़ा इतिहास रहा है,
1: बड़ा इतिहास रहा है, और बहुत ही मीनिंगफुल इतिहास रहा है, जहाँ पर हमारे पास लिखित प्रमाण है कि हमारे पूर्वज यहाँ कितनी भारी संख्या में आए।
0: केवल लिखित प्रमाण के साथ साथ, केवल लिखित प्रमाण नहीं है, हमारा जो इतिहास है प्रेरणादायक है दूसरे देशों के लिए
1: अवश्य,
0: ये हमें इस पर बड़ा गर्व है। और इसके पीछे जो लोग थे वो हमारे पूर्वज थे, क्योंकि उन लोगों ने इस इतिहास को बनाया है, रचा है, और आगे देश को आज यहाँ लाए हैं। तो इसलिए हम बड़ा गौरव महसूस करते हैं कि हम उनके वंशज हैं। और आज मुझे इस बात से और बड़ी खुशी होती है कि मुझे एक तरह से छोटा सा अवसर मिला है कि मैं उसी उन्हीं वंशजों की बच्चों के साथ, उनके साथ काम करने का माध्यम बना हूँ, और हमारा काम उन्हीं वंशजों को याद करके आगे का रास्ता तय कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने हर क्षेत्र में हमें उदाहरण दिया है कि आगे हमें इस मुश्किल की घड़ी में क्या करना है, क्या नहीं करना हो। तो इस तरह से गोपियों जुड़ा है, वैसे गोपियों की स्थापना 80 के दशक में हुई है।
1: अच्छा।
0: लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि 80 के दशक में ही सोचा गया गोपियों के बारे में,
1: इससे पहले भी सोचा गया
0: बहुत। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक मंच है, मंच बना था। मंच क्या है? मिलने का,
1: अवश्य
0: आपस में विचारों का आदान प्रदान करने का, एक दूसरे के दुख को बांटने का, आगे साथ मिलकर चलने का। तो ये जो मंच है, उस समय सोचिए जब एक जहाज में निकले थे कलकत्ता से या कहीं से भारत से, और कई लंबी यात्रा के बाद एक देश में पहुंचे, वहाँ कुछ लोग उतर गए, जहाज आगे गया, फिर वहाँ उतर गए। तो उतरने से पहले वो जो बिछड़ने का मोह है, उस समय भी तो था, तो मोह के बाद ये तो सोचेंगे कि भाई हम अवश्य मिलेंगे एक दिन।
1: यहाँ पर मैं ये जोड़ना चाहूँगी कि मॉरिशस में आने के लिए ये जो सफ़र तय हुआ था कलकत्ता से, वो लगभग 6 हफ्तों का था। हाँ। लंबा सफ़र था, और जहाज़ों में लोग खचाखच भरा हुआ करते थे। आज जिस तरह से हम सफ़र करते हैं, लेग रूम चाहते हैं, वैसा कुछ भी नहीं था। खाने पीने की सुविधा बहुत कम थी, और क्या खाना खाते थे? रूखा सूखा, क्योंकि 6 हफ्तों तक वैसे जहाज़ में सफ़र करना उस ज़माने में, आपके पास रेफ्रिजरेटर वगैरह कुछ है नहीं, तो जब रूखा सूखा खा रहे हैं, उसमें फ्रेश फूड नहीं है, ताज़ा सब्जी नहीं है, तो विटामिन सी के कमी के कारण बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, एपिडेमीज मतलब कि महामारी शुरू हो जाती थी। ऐसे में जहाज़ के सफ़र के दौरान ही कई लोग दम तोड़ देते थे, और मजबूरन उनको समुद्र में ही छोड़ना पड़ता था। यहीं से शुरू होती है ये जो बिछड़ने का दर्द है, बिछड़ने का दर्द, कभी फिर न मिलने का दर्द, ये जहाज़ से शुरू होता था। एक तो भारत में, फिर जहाज़ में, और मॉरिशस में जब ये जहाज़ रुकता था तो उसकी मरम्मत होती थी लगभग 2 महीने तक, और फिर यहाँ पर जो रुके हैं उनमें से कुछ लोगों फिर दूसरे देशों में ले जाया जाता था, फिर यहाँ से एक दूसरा जो बिछड़ने का दर्द है वो फिर से शुरू होता था। तो ऐसे में आज हम किसी से, परिवार से थोड़े देर के लिए बिछड़ते हैं तो कितना ट्रॉमाटाइजिंग होता है, और वैसे फिर से कभी ना मिलना, या फिर इस उम्मीद के साथ कभी हम मिलेंगे, ऐसे दर्द के साथ वे जिए इस देश में, फिर भी इस देश का इतनी खूबसूरती से उन्होंने निर्माण किया।
0: उस समय उन लोगों की प्रबल इच्छा क्या रही होगी कि भाई हम तो जहाज़ में जितने भी समय बिताए, परिवार हो गए
1: जी, जहाजी भाई,
0: जहाजी भाई जो बोलते हैं, और जब बिछड़ रहे हैं तो मन तो बड़ा दुखी होता है
1: जी।
0: लेकिन उस समय उन लोगों की यही प्रबल इच्छा रही होगी कि एक दिन मिलेंगे, कभी भी ऐसा अवसर आए, एक मंच आए, कुछ भी हो हम मिलें। हालांकि ये उनका

0: सपना था। देखिए अभी 200 साल लगभग हो रहे हैं, 200 साल, इतने सालों के बाद उनका वो सपना, मिलने का सपना,
1: उनके
0: एक मंच का सपना आज गोपियों कर रहा है
1: जी।
0: ये थोड़ा सा तो वो हमने कुछ नया नहीं किया है, जो हमारे
1: उनके सपनों को साकार
0: कर रहे हैं। हमें वो अवसर मिला, वो लोग नहीं कर पाए अपने समय में, हमें वो अवसर मिला है आज, अब सुविधा मिली है तो हम वो मंच तैयार कर रहे थे। इसलिए ये गोपियों का मंच उभर कर सामने है
1: जी।
0: गोपियों की सोच, मिलने की सोच, एक मंच में सबको लाने की सोच इंडियन डायस्पोरा का पहले से बहुत था, 200 साल पहले से भी था, लेकिन उसका कार्य रूप अब दिया गया है और माध्यम बना है गोपियों। और मैं आज, मुझे बड़ा गर्व है कि मैं उस स्तर पर इस कार्य को आगे ले चल रहा हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो जैसा कि अभी विनय दोसोई जी हमें बता रहे हैं कि गोपियों मॉरिशस का जो गठन हुआ तो वह हमारे पूर्वजों की, उनका जो सपना था उसकी एक बार हम मिलेंगे, कहीं ना कहीं हम मिलेंगे, चाहे किसी भी देश में क्यों ना हो, उस सपने को आप अंजाम दे रहे हैं, उसको कार्य रूप दे रहे हैं गोपियों मॉरिशस के माध्यम से। किस तरह से हम मिलते हैं तो क्या बात करते हैं, कहाँ मिलते हैं और कौन कौन सी गतिविधियाँ चलाते हैं, इन सभी विषयों पर हम थोड़ी देर बाद गहराई से बात करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा विराम।

0: आज की चर्चा कार्यक्रम में मैं किरण आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो विषय है वह है शर्तबंद मजदूरों से जुड़ी जो गतिविधियाँ चलती हैं मॉरिशस में, और मॉरिशस में कई संस्थाएं हैं जो हमारे पुरखों की याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और फिर जो वंशज हैं पूर्वजों के कैसे उनको एक साथ एक मंच प्रदान करके हम आगे की सोचते हैं। और ऐसी एक संस्था है गोप्यो मॉरिशस, और गोप्यो मॉरिशस के प्रधान श्री विनय दसोई जी आज हमारे मेहमान हैं। विनय दसोई जी, आप बहुत सुंदर रूप से हमने के अपन पूर्वज के जो सपना रहल ओके कैसे आप लोग साकार करत हो जा गोप्यो मॉरिशस के अंतर्गत, ई बात पर प्रकाश डलना। अब हमने के थोड़ा ये बतावा कि ये जन गोप्यो मॉरिशस संस्था बा एकर शुरुआत कैसे होल।
1: एकर शुरुआत बातचीत बहुत पहले से चला था, लेकिन एकर विधिवत शुरुआत 1908 में वो पहला गोप्यो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होल यूके में
0: 1988 में
1: शुरू होल। और उसके बाद मॉरिशस में एक साल बाद मॉरिशस में इसका वो स्वरूप खड़ा होल।
0: जी हाँ।
1: और है गोपियों के स्थापना में एक लीडरशिप हमने के स्वर्गीय भाई धनदेव बहादुर जी का था, हमने सब साथ में रह लीजा फाउंडर मेम्बर, उनकर निर्देशन में हमने आगे बढ़ लीजा। और साथ में भारत के बलेश्वर अग्रवाल जी रहन, और मलेशिया के हमने के सेल्वर राजू एक मित्र रहन, इन लोगों के बहुत बड़ा प्रयास रहल कि एक तो लोकल गोप्यो चैप्टर सब देश में खोलेंगे, तो इसलिए मॉरिशस गोप्यो मॉरिशस एगो चैप्टर है, कई देश में बना हुआ है।
0: अच्छा, हर एक देश के अपने गोप्यो
1: एगो गोप्यो चैप्टर, और उसके बाद एगो प्लेटफॉर्म बनाओ गल
0: अंतर्राष्ट्रीय,
1: जो उनके अभी प्रधान डॉक्टर पुनु स्वामी होन मलेशिया के, और डिप्यूटी प्रधान मॉरिशस के बाद वो हम है अभी।
0: अच्छा,
1: तो इस तरह से गोप्यो की स्थापना मॉरिशस में 89 में शुरू होल, और उकर बाद कई कार्यक्रम शुरू होल गल। और जब भाई प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल बनल लोकल चैप्टर के बाद, तो प्रश्न रहल कि हमने का चाहत है जा।
0: हाँ, कहे कि हर एगो संस्था जब उकर स्थापना होवेला उकर एगो मिशन और विजन रहेला।
1: हाँ, तो हमने के गोप्यो मूवमेंट के उकर
0: उद्देश्य
1: का रहल का, और हमने के का चाहे, बहुत कोई कम जाने लगे कि भारत, हम सब भारतीय मूल के लोग हैं।
0: जी
1: हाँ। इस जैसे अभी तू बोल रहा कि शर्त बन के तो कोनो कागज में लिखा पढ़ी नहीं हो रहा,
0: नहीं हो रहा,
1: तो अभी भी हमने

0: के गोपियो मूवमेंट बनने से पहले स्थिति है ये रहल, हमने भारतीय मूल के रलीजा, लेकिन भारत में कहीं पर कुछ लिखा होगा नहीं है कि बिना ही दसोई पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो है जो रिकॉग्निशन रहल, इस सबसे बड़ा चीज रहल हमने के काम करी के कपर हाउ सब कोई मिल के पूरे दुनिया के जय जय देश में चैप्टर बनल भारत सरकार के सामने रखल गल कि पहला हमनी के रिकॉग्निशन चाहिए।
1: मतलब कि आप लोग के पहला मकसद रहल भारत सरकार के साथ जुड़े के, जहां से हमनी के पूर्वज निकल के अलग अलग देश में जाके बसलन जा।
0: तो रिकॉग्निशन भारत सरकार कई गो बातचीत के बाद दिलन ऑफिशियल में, अब वो ऑफिशियल में ऑफिशियल है कि हमनी जितना पीआईओ है जा हमनी पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है जा, पहले हमने खुद के बुलाते जा, मैं अब कागज में भी
1: भारत सरकार
0: मानता ऑफिशियली रिकॉग्निशन मिलल। तब दूसर बात ये होल कि भाई अब मंच के आगे कैसे बढ़ावल जाए,
1: जरूर
0: तब पीबीडी के बात होल,
1: प्रवासी भारत
0: शुरू में पीबीडी हर साल होता, सभी देश के लोग जाते रहा और भारत सरकार के पूरी टीम अनंजा, और वो पीबीडी में हमने के पूरा जो डायस्पोरा इंडियन डायस्पोरा की समस्या रहल, हमने के जो अपन बात रहल वो मंच रहल भारत सरकार तक पहुँचाई के
1: जरूर,
0: और फिर ओसीआईकाट के बातल
1: ओवरसीज
0: सिटीजन ऑफ इंडिया, पहले ये पीआईओ काट रहा है क्योंकि पीआई पीपल ऑफ इंडियन जन, तो बाद में भारत सरकार इसको बदल कर
1: सिटीजनशिप दिला
0: अब ओसीआई काट कर दिलक, ओकर में जो एनआरआई रहा सब को कर में जोड़ दिलक,
1: एनआरआई मतलब नॉन इंडियन ओरिजिन,
0: जो नॉन रेजिडेंट इंडियन,
1: नॉन रेजिडेंट इंडियन जो भारतीय भारत से बाहर जिया,
0: मैं बाहर जिया था जो भारतीय बन जा, और हमने भारतीय नहीं जा, मैं हमने पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो दोनों के मिल के ओसीआई का मिला। आज हम भाई मन से एगो स्पेशल धन्यवाद और नतमस्तक होते है उन एगो व्यक्ति के प्रति जिनके कारण ये सब होल, नहीं तो रुकर रहल काम नहीं होता, वो रह सदै स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके प्रधानत्व में उनके प्रधान प्राइम मिनिस्टरशिप में ये सब काम होल और हाल जल्दी जल्दी हो ही गए, हमने के थोड़ा सा संपर्क रहा धनदेव जी के, हमने के सब के वो जाना था लंदन, तो वो ऐसा माहौल तैयार कर गल कि ये सब ओसीआई कात रिकॉग्निशन ओसीआई कात और जितना कई मोमा गोपियों के बहुत बड़ा अचीवमेंट में कई गो चीज़ हमने भारत सरकार से मिल के ओके कर ली जाए, कई गो चीज़ों का मैं जो ओसीआई कात बा रिकॉग्निशन बा और पीआईओ मिनिस्ट्री भी बनल, आज वो फुल फ्लेज मिनिस्ट्री में कोनो मिनिस्ट्री संगे हाँ पीआईओ मिनिस्ट्री जो पीआईओ के माटस देखी ऐसे ऐसे करके पीआईओ पार्लियामेंटरी मीटिंग
1: जी
0: जो गोपियों के सजेस्ट कर रहा है कि जितना भारत के बाहर पीआईओ पार्लियामेंट में बैठे वाला जनता हो जाए एलीओ कैल हो जाए उन लोग के भी मीटिंग, मतलब हर क्षेत्र के लेके सब के जुड़े के कैसे मकसद एक बोल जुड़ल जाए कैसे और मिल के कैसे काम कर जाए, क्योंकि हमने के जो संस्कृति है हमने के जो सभ्यता है वो सब के एगो करके है, अलग अलग
1: करके
0: जिए के नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम होला हमने के भारतीयता, तो भारतीयता के आगे कैसे बढ़ावल जाए केवल इंडियन डायस्पोरा में नहीं चारों तरफ, क्योंकि आज के युग में और हमेशा भी यही देखल गल बा कि विश्व शांति के एक एक आधार बा भारतीयता, जो भारतीय संस्कृति बा वो विश्व शांति के सोच के बनावल गल बा और सबको ओकर में चली तो
1: सबको वही नक्शे कदम पर आज चलत
0: अच्छा होवे दिशा निर्देश तैयार करल गल बा और हव पर सबको चली तो युद्ध नहीं हुई, युद्ध के कारण है पेट्रोल या हव महंगा नहीं हुई तो युद्ध ये सब थम जाए, तो गोपियों के कर में बहुत बड़ा हाथ है भारतीयता कैसे फैलाव जाए ये हमने के एक्टिविटी में
1: जरूर। तो आज जैसे सुनत हवा अब हमने भोजपुरी में बोलत है जा कहे कि हमने के पूर्वज लोग के यही भाषा रहल और जब भाषा संस्कृति पुरखन के नाम लेवत है जा तो कैसे सकब जा उन लोग के भाषा में नहीं बतियाए, और आज इस विषय पर बात करत हवन हमने संगे गोपियो मॉरिशस के प्रधान विनय दसोई जी, हमने के बतावत हवन कैसे ई गोपियो मॉरिशस के

0: ओकर स्थापना होल कैसे ओकर जो उद्देश्य बा उत्तय करल गल कैसे हमने जो डायस्पोरा देश है सब मतलब कि भारत से निकल के हमने के पूर्वज लोग जो अलग अलग देश में जाके बसलन जा हर एगो देश अपन अंतर्गत एगो गोपियो मॉरिशस जैसन संस्था के स्थापना करलक और फिर सब देश कैसे भारत के साथ फिर जुड़ल और पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन ओकर बाद OCI ई सब जन सुविधा बा एके प्रदान करे के एगो मंच और एगो अवसर हमने के मिलल ई विषय में अभी हमने थोड़ा गहराई में और जाप जा फिलहाल ले जा एगो छोटा सा विराम।
1: आज की

0: आज के चर्चा कार्यक्रम में आप सबको एक बार फिर स्वागत बा। और आज हमने एगो बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करत है जा, और उ है गोप्य मॉरिशस के। मॉरिशस में कौन भूमिका बा, कौन कौन गतिविधि ई संस्था चलावेला, और ई जौन कार्यक्रम बा गोप्य मॉरिशस के ई सब बातचीत जौन हुआ था उ परिप्रेक्ष्य में चला था। जौन अभी तीन पिछला दिन चलल मॉरिशस में एगो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडेंचर लेबर रूट के लेके, और आज हमनी के मेहमान हवन श्री विनय दसोई जी जे गोप्य मॉरिशस के प्रधान हवन। विनय दसोई जी, अभी आप बोलला कि हमनी के जो जड़ी बा वो भारत में बा, सब डायस्पोरा देश जहाँ भी शर्तबंद मजदूरी चलल, गिरमिटिया मजदूरी चलल, वो सबके जड़ी भारत से है, और हमनी के संस्कृति में आज भी भारतीयता झलकेला, चाहे वो बोली में रही, चाहे वो व्यवहार में रही, पहनावा में, खान पान में, हर हमनी के जो व्यवहार आचरण बा ओकर में भारतीयता झलकेला, और हमनी के चाहे एके जीवित रखे के गोप्य मॉरिशस के शायद ई भी एगो मकसद है। तो कैसे ई जो विश्व शांति के कायम रखे में ई संस्कार संस्कृति के बात जो बा आप लोग जीवित रखे ला जा, कौन कौन माध्यम अपनावे ला जा, थोड़ा एक बार बोलो।
1: देखिए, भारतीयता के मतलब का है
0: जी,
1: वसुदेव कुटुंबकम भारतीयता,
0: हाँ, पूरा विश्व एगो परिवार,
1: सर्वे भवन्तु सुखिनः भारतीयता है, अतिथि देवो भव भारतीयता है। ऐसे कई गो उदाहरण हम सकब दे जोन के बतावेल कि भारतीयता का मतलब का है, हमने के संस्कृति के मतलब का है, और है ये हमने के आगे ले चल के वो संतोष से वो व्यक्ति रहेला पंजीवन में, सुखी परिवार बनावेला, परिवार से गांव सुखी रहेला, गांव से देश, देश से दुनिया,
0: जरूर।
1: तो वर्ल्ड पीस जेकर बात बतियाला से बड़ा बड़ा कॉन्फ्रेंस होला, हम तो मानी ला ठोक के हम मंच पर बोईला कि भारतीयता के बिना वर्ल्ड पीस अधूरा है, नहीं सकी हुई, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट जो लावी के संस्कृति के वो लाभी के वो कॉन्सेप्ट कैसे जिए के एगो तरीका जो रहे, तो हई तरीका कहाँ मिली हमने के खरी फॉलो करे के बाद। देखिए के बोलेला कि हमने तो बोला से एगो परिवार में 10 जना बात, एक जना शादी के लगता अलग बसा दिलक, मतलब ओकर अलग परिवार होगा, जबकि वो चीज चाहिए हमने के हमेशा सोचे के घर 10 गो से की हुई में परिवार एक
0: जी।
1: हाई कौन से पुआ के हमने काम कही लगा,
0: हाँ जी,
1: कि परिवार हमार संख्या ज्यादा होगा परिवार में, सकेता होता एक वो घर में रह के दूसरा घर बनी, एक मतलब नहीं कि परिवार अलग होला,
0: हाँ।
1: घर अनेक परिवार एक,
0: एक।
1: है बीजों से हमने काम कही लगा, हम एक पर बहुत विश्वास कही ला
0: जी।
1: अलग हो, देखा किरण जी एक वो चीज बड़ा सीधा है, हम अपन बात बता कि जब हम छोटा में कठिन स्थिति में अपन परिवार के साथ संगे मिल के कठिन परिस्थिति के सामना कर ले जाए, आज थोड़ी सी सुविधा वाली बात है, अलग कैसे सकब हुई, ये तो बड़ा उल्टा बा।
0: और हमने के जो पूर्वज लोग अलन जा एगो कमरा में 8-9 गो लड़का संगे एक ही गो कमरा में ढाका में जीलन जा, और ओकर बावजूद आज हमनी जैसन लड़का लोग के ऐसा भविष्य देलन जा, तो हमने कहे नहीं सकब जा करे,
1: मतलब दुख में नहीं संगे ऐसा, अब जब
0: सुख में
1: अब अलग टाटा बाय बाय हो दूर से नमस्ते,
0: नहीं
1: ये नहीं सीखी, यही हमने के भारतीयता सिखावेला कि जगह अनेक हुई, देश अनेक हुई, लेकिन मानवता एक ही हुआ,
0: जरूर
1: जोन बोल जा, तो हमने ऊ के फॉलो कैला जाए भारतीयता के जो बहुत अच्छी चीज़ है, हम अभी ओकर ले और कोनो नया कॉन्सेप्ट एकर ले अच्छा हुई, तो हमने के अपना में कोनो दुख नहीं हुआ, क्योंकि हमने अजैन ऑफ जडे विश्व शांति के लिए काम करते जाए कि सबको अच्छा से जी, सबको अच्छा से रही, तो अगर हमने माना थे जा कि भारतीयता है चीज़ के बोला जा रहा है, तो ओके तो फैलाई के चाहिए हमने के काम हो, क्योंकि हमने के पूर्वज है ये भारतीयता के शक्ति दिले,
0: जरूर
1: देखा देश कहाँ रहल, गोनी अभी लड़का लोग नहीं जानी गोनी का बोल जला, गोनी होड़ के सुतत रहन,
0: गोनी आज विरासत के जो एगो एग्जीबिशन

0: म्यूजियम प्रदर्शनी चलेबा तो ओकर में आज गोनी प्रस्तुत करल जला, म्यूजियम में आज गोनी रखल जला ताकि लड़का लोग देखी और जानी ई का है।
1: क्योंकि हमर खातिर उन लोग हमने के पूर्वज जोन जोन चीज वो लोग अब प्रयोग कर लें जाए, प्रयोग के बाद ओकर इतना अच्छा फल मिलल बा सबके, तो हमार खातिर तो उपज्य चीज है
0: जरूर।
1: गोनी हो, हंसुआ हो, कुछ हो जिकर से लोग काम करते जरा, और बड़ा साहब जी की बड़ी ईमानदारी से काम करते जरा, बहुत प्यार से,
0: बहुत प्यार से, बहुत निष्ठा और डिटर्मिनेशन दृढ़ता के साथ।
1: हर एगो चीज रहा लोग के एगो गुण बहुत कोई सकेला एक पर ध्यान नहीं दे, वो लोग हाला करे वाला आदमी नहीं रहा,
0: सुधा गाई
1: हाँ एगो गिर और भीतरे तूफान भीतरे बा आगे बढ़े के आजादी के देश के आगे बढ़ाई के जोन जहाँ पर हवा जो कर लिया हम से निकल के खुली दुनिया में सांस लेके है, तो तूफान दिल में बा लेकिन बाहर एकदम शांत वो लोग जान। पहले एक वो चीज अभी हमने बहुत बोला जाता इतना आदमी समझेला, पहले इशारे से आदमी समझता, सोचो भटका के समय वार्षिक उत्सव एगो ऐसा अवसर रहा जो है देशों में रेवोल्यूशन ले बा, वार्षिक उत्सव हर साल में एक को होता एगो भटका में।
0: वो वार्षिक उत्सव का रहा
1: वार्षिक उत्सव में जैसे जहाँ से हमने के प्रोग्राम एक साल कर ली जाते एक दिन मिल के
0: एगो ब्यौरा प्रस्तुत कर,
1: ब्यौरा प्रस्तुत कर से आपस में थोड़ा सा देखब सका करे, तो वार्षिक उत्सव वो अवसर रहा समाज के इकट्ठा करे के कि एक साल हमने है कर ली सर, गत साल हमने है जा रही सर, आज तनी सन आगे बढ़ रही सर, हाइये सीमा में चाहे जाए के
0: और
1: आगे बढ़ब सर, हमने के देखा एक को मैं कोई को बोला हम के है जैसे अभी हो पहाड़ के हो उधर जाए के बाद चल के तो नहीं जाए, तो बोल पर थोड़ा सा आगे जाए के बाद तो उस सब से करके तो वार्षिक उत्सव एगो ब्यौरा प्रजान और हो वार्षिक उत्सव एगो चीज ऐसा रहा जो नया जेनरेशन के प्रिपेयर करते कैसे हो में लड़का लोग एक दो महीना से कविता याद करते रह जाए, कविता पाठ करके कोई नो कविता कहानी आके कुछ बोले के अच्छी अच्छी चीज़ का वहाँ पर मंचन होता है आगे सामने, और पूरा देश के आदमी मिलत है और हम मानिला एकर में कोई हम कहने से कि बोले कि नहीं मॉरिशस के आज़ादी के संघर्ष में आज़ादी रेवोल्यूशन आने के मॉरिश में आज़ादी के तरफ जाए के वार्षिक उत्सव और बैठका और वार्षिक उत्सव के सबसे बड़ा हाथ, तो इस तरह से हम के पूर्वजों को अपन काम कर रहे जाए और आगे बढ़ रहना जाए, तो जिस तरह से वो लोग काम कर रहे जा हमने के बाद आज हम कमवा का आने के
0: जी।
1: तो गोपियों है ये कमवा का था कि नया विचार लेके नए, क्योंकि दुनिया एक ही जगह पर टिकल नहीं पा गई, बोलिशो चले जाता टेक्नोलॉजी नया नया होता टेक्नोलॉजी के अपन फासों से कैसे ओकर प्रयोग करल जाए अच्छे रास्ते के लिए अच्छा काम के लिए
0: जरूर।
1: ओके कैसे कन्वर्ट कर दो जाए टेक्नोलॉजी के अपन अच्छे काम में एकर ध्यान देकर काम कर दे जा, परंतु हमनी के जोन जड़ बा भारतीयता जोन संस्कृति बा जोन सभ्यता बा भाषा बा सबके बाज बना के छोड़ के नहीं ओके हमनी के बाज बना के हमनी के न्यू हुआ रही आगे पेड़ कहूँ पर ही रहला जंगल में फल तो चारों को तो ऊपर मिलेगा उस तरह के काम करेंगे
0: जरूर। और अभी आप जब बोला कि वार्षिक उत्सव चलत रहा कविता पाठ होत रहा तो हम देखले है कि आप जो काम करत हुआ गोपियो मॉरिशस एक बारे में जो जानेला तो जानेला लेकिन आपके जो एगो नाटक के मंचन बा ई खातिर आप काफ़ी मशहूर हुआ ढेर कोई आपके ई हुनर से जाने लन जा, और आपके नाटक के माध्यम से आप कौन कौन संदेश देवेला नाटक से आप कैसे जुड़ला थोड़ा एक पर हमने बात करी जा।
1: नाटक एगो ऐसा माध्यम है जैसे जोन बात तू सगबा बोले सगबा ओकर में बोल दे और ओकर बड़ा असर होला सही ढंग से नाटक में वो बात के प्रस्तुत कर ले। नाटक दो तरह के हुआ एगो नाटक है कि चलो डायलॉग बोली से स्टेज में हो गल वो नहीं सही ढंग से
0: संदेश
1: हाँ नाटक के समझ के नाटक के सब तत्व समझ के ओकर जब एगो प्रस्तुति करब तो ओकर सीधा असर पब्लिक पर पड़ेगा, तो वो मंच भी हमने इस्तेमाल कर जा प्रयोग कर जा। देखा उदाहरण पर हम इक्वासीदा से हैं हम जब गोपियों नहीं

0: बनल रहल, तब हम एगो वो नाटक लिख रहे इतिहास साक्षी है। ओकर थीम एक एगो चीज है कि जिस दिन लेदे नोबाम के हमने के
1: पूर्वज
0: लोग पैर रखा मोरिस में, और 12 मार्च 1968 इसके बीच के संघर्ष की कहानी।
1: जरूर
0: बहुत कोई तो ये सोच रहा ना कि 1964 में हमने के देश आजाद होलवा तो उसी के आसपास के दिनों के संघर्ष है, नहीं, आजादी के संघर्ष जिस दिन पहला कदम पूर्वज लोग रखना जाए तभी से शुरू हो गए रहा। तो उस संघर्ष में कई जना से हम मिला रही उस समय में कैसे कैसे घटना के लेके, तो ओके बने ले लीजा कि किस तरह से लोग अलन जा, और है बता कि नहीं कि वो लोग के संगे दोमिने हो, नहीं जोन भी स्थिति रहल ओकर से वो लोग कैसे बाहर निकल।
1: जरूर
0: ये बड़ा आवश्यक चीज रहल कि ओकर से कैसे बाहर निकल ताकि दूसरे लोग हमने के नया जनरेशन उदाहरण ले कि अरे इस तरह से आलबा और हमनियों सबसे कुछ करे पेई के देश के स्वतंत्रता मिलकर सबसे बड़ा चीज नहीं है, ओके कायम करके आगे बढ़ते जाए के बड़ा चीज है, तो उतर नया जनरेशन करी तो ओके इस सब चीजन मिली। तो नाटक के भी हमने मंचन के ले जा और हमर सब नाटक में सामाजिक नाटक ज्यादा रहला क्योंकि में वो मिसाज रहला। तो एक उदाहरण जैसे तोरा बोली इतिहास साक्षी है कि कई गो हमने मंचन शो करे जा, हर बार कोनो इंटरनेशनल कॉन्सर्ट हमने दिमाग होला कि वो नाटक के प्रस्तुत करेंगे इतिहास साक्षी। हमारे नाटक के थीम है चौरंगा झंडा, तो ओके बता जे कैसे चौरंगा झंडा हल सब के, तो इस तरह से हमने नाटक का भी मंचन उस मंच का भी हम प्रयोग करते है अपने भारतीयता को आगे बढ़ाने के।
1: और अभी आप बोला कि आप हमने के पूर्वज लोग जब यहाँ आइलैंड जा तो विक्टिम कमती समझ ला जा, मतलब कि स्थिति के परिस्थिति के शिकार अपन के कमती समझ लन जा, एकर से आगे दिख लन जा। हमने जब दिखिला जाता उन लोग के एगो परिस्थिति के शिकार एगो विक्टिमहुड के नजरिया से उन लोग के दिखिला जा, लेकिन जो ई सम्मेलन चलल उकर में भी एगो विषय रहल कैसे ई विक्टिमहुड से बाहर निकलबा और फिर आगे दिखबा, और यही दिशा में अभी आप बात करत हवा। तो हमने के अभी जब सम्मेलन के बात करत है जा, विषय के बात करत है जा, तो आप कितने सम्मेलन के भी आयोजन करत हुई बा? हमने के कार्यक्रम के समाप्त हुई में 3-4 मिनट बाकी बा, इस सम्मेलन पर थोड़ा बताया जा और फिर समापन की ओर बढ़ जा।
0: हाँ, बड़ी खुशी की बात बा कि इसी साल 11, 12, 13 सितंबर के हमने के इंटरनेशनल गोपियों कन्वेंशन होने जा रहा है।
1: अच्छा,
0: जो हमने के जो बोला था इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बा ओका जरिए, और आज तक है प्लेटफॉर्म में 15 गो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का
1: कर दे,
0: पिछला जो हो रहा दिमिल वेनकात में वो मालेजी में रहा, बहुत अच्छा,
1: मतलब देश विदेश में हो वेला।
0: हाँ, हर गोपियो चैप्टर के।
1: अच्छा।
0: एक वो देश के नहीं है, सब देश के है।
1: और ये बारिश कौन देश में हुई?
0: मॉरिशस में।
1: अच्छा जी,
0: मॉरिशस में।
1: तो मॉरिशन लोग सके भाग लो भारी संख्या।
0: हाँ, भारी अब काम शुरू होकर बा, और बड़ी और खुशी की बात है कि अभी ले 16वां जो 15 गो होल बा में अभी ले 3 गो इंटरराष्ट्रीय सम्मेलन गोपियो मॉरिशस मॉरिशस में होस्ट कर लेबा, और है 4था सम्मेलन जो मॉरिशस में होस्ट होता। तो मॉरिशस के विश्व के पीआईओ मूवमेंट में गोपियो चैप्टर में मॉरिशस की बड़ा इज्जत से देखे लन जा सब कोई, और हमने के बात माने लन जा, सब कोई साथ मिल के कह जा, मतलब वो बड़ा भाई कहते हमने रही ला जा। और उकर में आपको पता हो कि हमने के रेकोमादासियों से गोपियो मॉरिशस के रेकोमादासियों से मॉरिस कैपिटल ऑफ पीआईओ घोषित है इंटरनेशनल में।
1: अच्छा जी।
0: दिमिल तुआ में, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री पाथों गोपियो इंटरनेशनल के।
1: अच्छा।
0: सब गोपियो चैप्टर एक्सेप्ट हो गल बा दिमिल तुआ से इससे कि मॉरिशस पीआईओ के कैपिटल मोगिस है वो देश, क्योंकि यहाँ पर ही जितना आगे बढ़ लन जा हमने के पूर्व भारतीय मूल के लोग दूसरे देश थोड़ा कम चांस बा, जैसे यहाँ हमने के प्रधानमंत्री पीआईओ है
1: जी,
0: कई गो मंत्रिमंडल में पीआईओ, तो इस तरह से पीआईओ कैपिटल, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ऑटोमैटिक है हर साल कोई भी

0: प्रधानमंत्री आवे ओ गोपियों इंटरनेशनल के पत्रों।
1: अच्छा जी, मतलब कि ई एगो राष्ट्र राष्ट्रीय संस्था है।
0: हाँ।
1: खाली एगो संस्था नहीं है, एगो अकेला संस्था।
0: हाँ।
1: जैसे कि बोलते हुआ मॉरिशस के जो स्टेट हेड ऑफ स्टेट है।
0: हाँ।
1: वो ई गोपियों के भी हेड हवन
0: हेड हवन
1: जी,
0: और गोपियों के अंतर्राष्ट्रीय सेक्रेटेरिएट जैसे।
1: अच्छा।
0: विश्व हिंदी सम्मेलन विश्व हिंदी सेक्रेटेरिएट औसन के प्रोग्राम बा मॉरिशस में बने के मॉरिशस में, और हमने के जो नेक्स्ट प्रायोरिटी है वो है कि ओकर स्थापित स्थापना हो और कार्य यहाँ से आँचे लिमोन के पीआईओ के हो।
1: जरूर।
0: तो ये थोड़ा सा हमने के कॉन्ट्रीब्यूशन गोपियाँ ताना सुना।
1: और कार्यक्रम के समापन तक चला लीजा दसोई जी, आप अपन उपस्थिति देला फजीरे फजीरे शनिवार के दिन, बहुत बहुत धन्यवाद। एगो आखिरी शब्द के साथ ये कार्यक्रम के समापन करी जा, एगो संदेश के साथ।
0: देखा हमने के पूर्वज के बाद जब बताया जा रहा तो खाली उनका पूर्वज लोग के एगो श्रद्धांजलि के विषय नहीं बनाई गई। पूर्वज लोग के जो डिटर्मिनेशन रहल, जो विजन रहल,
1: जो संकल्प रहल,
0: जो संकल्प रहल आगे बढ़े के और लाभी में गैसी हुई के ओके ध्यान में रख के ओके बढ़ाई के श्रद्धांजलि के साथ साथ प्रेम प्यार और सद्भावना जो रहल सबके परिवार में आगे बढ़े के तब देश आगे बढ़ी। हव सबसे महत्वपूर्ण बा और इस अवसर पर सब लोग ओकर पर ध्यान दियन जा तो बड़ा अच्छा हो। हम के तू अपन स्टूडियो में बोलेला ये खातिर एम्बेसी के बहुत बहुत धन्यवाद, तोरा बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।
1: धन्यवाद। और आप सब सुने और देखे हो रहा लोग के आपके ध्यान खातिर बहुत धन्यवाद। अगला आज की चर्चा में फिर मिलब जा, नमस्ते।

0: शाम के 4:03 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार टीना से। नमस्कार।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। पुराने मंत्री नंदोबोदा के बेटे जिनोबोदा की मौत तो उसका गला दबाने से हुई है। कल रात पुलिस के चीफ फोरेंसिक ऑफिसर डॉक्टर सुरेश कुमार गंगादीन की ओर से जो शव परीक्षण किया गया उससे ये बात सामने आई और जिनोबोदा को कल रानीकोलिया में निर्जय पाया गया। इस मामले में 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आज दिन के दौरान शोमाइल ओलिविया होस और लुई इस्माइल मिगेल राहुल बॉब को वीकेंड कोर्ट में मजिस्ट्रेट नंदोल के सामने पेश किया गया। उन पर हत्या का अस्थायी आरोप लगाया गया है। इंक्वायरी ऑफिसर ने बताया कि पुलिस को उनकी रिहाई पर आपत्ति है क्योंकि सबूत और गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने और उनके भागने का खतरा है। दोनों ही संदिग्ध लोगों को अगले 18 मई तक पुलिस सेल में भेजा गया है। उन्हें अगले सोमवार 18 मई को महापौर अदालत में पेश किया जाएगा। फ्लैग स्थित सनीरो जगन्नाथ अस्पताल के बाद पोर्ट वीजी 2 अस्पताल में एक ट्रोमा और इमरजेंसी यूनिट

0: की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य मंत्री निल बेचू और चुनाव क्षेत्र के सांसदों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द अन्य इलाका या अस्पतालों में भी ट्रोमा और इमरजेंसी यूनिट का इंतजाम किया जाएगा। कोरियन कस्टम सर्विस की एक डेलीगेशन ने मर्चेंट रेवेन्यू अथॉरिटी के महानिदेशक के साथ जूनियर वित्त मंत्री धनेश्वर दामली से भेंट की। इसके अंतर्गत मर्चेंट्स में पार्सल्स के प्रवेश की प्रक्रिया नियंत्रित करने की दिशा में रिस्क मैनेजमेंट प्रणालियां मजबूत करने और उच्च टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। विदेश में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब सहित 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों को इस दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। हमें आगे आ दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: RM3 Radio.

रेडियो मनोरंजन के सभी श्रोताओं को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेलकम इन गीत गाथा देश की। सो आज के हमारे इस प्रोग्राम में कौन सी लोकेलिटी चमकेगी, कौन सा गांव चमकेगा या कौन सा शहर चमकने वाला है, ये जानने के लिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज भी हम आपको समय समय पर चंद संकेत देने वाले हैं, चंद टिप्स देने वाले हैं, चंद जानकारियां आप तक पहुंचाने वाले हैं और उस जानकारियों के बल पर आप हमें फ़ोन करके बताएं या तो हमें व्हाट्सएप मैसेज करके बताएं ऑन कॉल के लिए 402-4170 और व्हाट्सएप मैसेज के लिए 5250-6200 5250-6200। ये आपके मैसेज व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए। सो जो पहला संकेत हम आपको देते हैं, जिस लोकेलिटी को हम ढूंढ रहे हैं उस स्थान उस जगह का नाम फ्रेंच भाषा में लिखित एक कविता, फ्रेंच भाषा में लिखित एक कविता एक पोएट्री स्टाइल से संपर्क रखता है। देखते हैं कि ये पहले संकेत से किसको सही जवाब मिलता है। आपका जवाब जल्द से जल्द ऑन 5250-6200।

रेडियो मनोरंजन की लहरों पर गीत गाथा देश की संजय के साथ। और आज हम एक ऐसे लोकैलिटी को ढूंढ रहे हैं जिसके बारे में हमने पहला संकेत आपको दिया, और वो संकेत है कि इस लोकैलिटी का नाम फ्रेंच भाषा में लिखित एक पोएट्री टाइप से संपर्क रखता है। अभी तक किसी ने सही जवाब नहीं दिया, बहुत बहुत शुक्रिया साथ निभाने के लिए और प्रयास करने के लिए। देखते हैं जो दूसरा संकेत हम आपको देते हैं उसके आधार पर आप उस लोकैलिटी का नाम ढूंढ पाते हैं या नहीं। साल 2016 के सेंसस के अनुसार इस लोकैलिटी की जनसंख्या पॉपुलेशन 24,073 की थी, और जो 8.71 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया क्षेत्र पर भर रहती थी, जिसके आधार पर ये लोकैलिटी हमारे देश की सबसे डेंसली पॉपुलेटेड लोकैलिटी में शामिल होती हैं। सो अगर जनसंख्या के आधार पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 24,073 दैट वाज इन 2016। तो ये इस दूसरे संकेत पर क्या आप जान सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कि हम किस लोकैलिटी की बात करें। अगर आपके पास जवाब है तो हमें मैसेज कीजिए ऑन 52 50 62 00।

रेडियो मनोरंजन के लिए रूपर गीत गाथा देश की संजय के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपके अनेक प्रयासों के लिए, आपके जवाबों के लिए। सो पहला संकेत जो हमने दिया कि इस लोकैलिटी का नाम फ्रेंच भाषा में लिखित एक पोएट्री टाइप से संपर्क रखता है। दूसरा संकेत जो हमने आपको दिया

साल 2016 में सेंसस के अनुसार इस प्रकृति की जनसंख्या 24,073 की थी। और जो तीसरा संकेत हम आपको देते हैं, तीसरा टिप हम आपको देते हैं, इस लोकैलिटी में एक मंदिर है जो 130 साल पुरानी है। इस लोकैलिटी में एक मंदिर है जो 130 साल पुराना है और इस मंदिर के संस्थापक पंडित श्री सोनजी बोनलाल रामसुंदर 4 अप्रैल 1866 में मॉरिशस आए थे कलकत्ता से। अब 130 साल पुराना मंदिर कौन सा गांव में पाया जाता है, कौन सी लोकैलिटी में पाया जाता है, ये शायद बहुत से लोगों को सही राह पर डाल देगा। आपका जवाब 52 50 62 00 पर।

4:31 मिनट आप सुन रहे हैं गीत गाथा देश की रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। इस प्रोग्राम के जरिए हम अपने देश के बारे में जरा कुछ जानकारी आप तक पहुंचाने की प्रयास करते हैं और आज हम एक ऐसी लोकैलिटी को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम फ्रेंच भाषा में लिखित एक पोएट्री टाइप से संपर्क रखता है। ये पहला संकेत हमने आपको दिया। दूसरा संकेत उस लोकैलिटी की जनसंख्या पॉपुलेशन 24,073 की थी इन द सेंसस ऑफ 2016। और जो तीसरा संकेत हमने आपको दिया कि उस लोकैलिटी में 130 साल पहले देश का एक सबसे पुराना मंदिर की स्थापना की गई और संस्थापक थे पंडित श्री सुंज बोनलाल रामसुंदर जो ओडिशा से आए थे और जिन्होंने कलकत्ता से जहाज पकड़ा था। इन तीन संकेतों के बाद हमारे पास दो ऐसे लोगों ने सही जवाब दिया, मेलरोज के रंजन जी ने और एक वायोग की उमा जी ने। दोनों को बधाई सही जवाब देने के लिए, क्योंकि ये मंदिर वाला जो संकेत हमने दिया इसके आधार पर इट वॉज क्वाइट ईजी टू गेस कि हम किस लोकायती की बात करें। चले हम जिन लोगों ने अभी तक नहीं सही जिन्होंने सही जवाब नहीं ढूंढा अभी तक, आपके लिए और संकेत देते हैं। उस लोकायती में तीन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स पाए जाते हैं, लेडी सुशील राम गुलाम स्टेट सेकेंडरी स्कूल, थ्रियल स्टेट सेकेंडरी स्कूल और एक प्राइवेट स्कूल भी पाया जाता है इंटरनेशनल कॉलेज। तो इसके आधार पर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि हम किस लोकैलिटी की बात कर रहे हैं। आप भी जवाब दे सकते हैं बाय सेंडिंग मैसेज ऑन 5250 6200।

और जब खेतों की बात हो रही है, हरियाली की बात हो रही है, तो हम आपको संकेत कर दें कि उस इलाके के चारों ओर हरे हरे खेत पाए जाते हैं। और एक ज़माने में उन हरे खेतों के जो ईक होती थी उनको सुलिचुद शक्कर खाने को भेजा जाता था। और अभी अभी महाराज जी ने कैटरबोन के महाराज जी ने हमें सही जवाब दिया और उन्होंने हमें ये बताया कि साल 1897 में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर जो पहली यात्रा की गई थी इन 1897 वो उसी मंदिर से निकली थी। सो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए, इस भाग के लिए। साथ ही साथ सेवासोल की सुमन जी ने भी हमें सही जवाब दिया, जिस शहर के जिस लोकायती की बात कर रहे हैं उन्होंने सही जवाब बताया। अब जो अगला संकेत हम लेते हैं, ये लोकैलिटी हमारे देश का सबसे बड़ा गांव माना जाता है। सो अगर आप भी अपना नाम भेजना चाहते हैं गांव के नाम के साथ, तो हमारा फ़ोन नंबर 5250 6200

गीत का था देश की संजय के साथ रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। अभी तक 6 लोगों ने सही जवाब हमें दे दिया है। मेलरोज के रंजन भाई, कोया की उमा जी, कटरबोन की माला जी, सेबास्टोपोल की सुमन जी, वाकवा की सुमति जी जो सिलाई करते करते हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और लगे हाँ जितने भी लोग इस समय

दर्जी करते हैं या तो जो हेयर ड्रेसर सैलून में काम करते हैं और इस समय रेडियो मनोरंजन के साथ जुड़े हैं, आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद और आप सबों को बों को आज हम विश करते हैं। मेरा जी ने हमें याद किया है फ्रॉम लाल माची, उनकी ओर से अगला गाना उनकी पूरी फैमिली के नाम जो मौलाशो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा जी ने भी हमें सही जवाब दिया। सो हम उस गांव के बारे में जो अन्य जानकारी है वो आपको देते हैं। ये गांव पोर्ट लुइस के उत्तर दिशा में पाया जाता है, 11 किलोमीटर की दूरी पर। और जब पोर्ट लुइस की ओर से उस ओर जाते हैं तो जो पहला इलाका हम पहुंचते हैं उस गांव का, उसका नाम है सुलिचुद। और शुरुआत ही में एक झील है जिसका नाम है सुलिचुद, जहाँ पर लोग फिशिंग करने जाते हैं, चिलापिया मारने जाते हैं। उसके बाद सिच्चमिल, उसके बाद मोताई शत, उसके बाद ब्रह्मस्थान, सिनेमा कासे, डर्मिंगम, मार्गरेट होल, टीबीएस लेन, शुमे जापने, शुमे पोतो पीमो, विचियम मिल, आनंद स्क्वायर, कॉन लीला, कॉन सादा, कॉन मोती, ट्रॉ बुटिक, नेवियम मिल, टेमिनिस, ट्रो बिश, शुमे वापिये। तो ये सभी के सभी इलाके उस गांव में पाए जाते हैं और हर एक के पीछे एक इतिहास है, हर एक के पीछे एक कारण है। और इन सभी इलाकों में रहने वाले हमारे सभी श्रोता भाई बहनों को हम यहाँ पर से सलाम करते हैं।

गीत गाथा देश की। ये प्रोग्राम चलता है हर शनिवार के शाम को 4 से लेकर 5 बजे तक, जिसके दरमियान हम देश के बारे में जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। आपको जानकारियों के साथ साथ गाने भी पसंद आ रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज जिस गांव के बारे में हम बात करते हैं वो गांव है त्रियोले। और त्रियोले नाम कहां से आया है? त्रियोले नाम आया है फ्रेंच ट्रिपलेट, जो एक पोएम होता है, एक पोएट्री होता है, इंग्लिश में उसे ट्रिपलेट कहते हैं, तीन भाग वाला। तो फ्रेंच कविता में ट्रिपलेट को त्रियोले बोलते हैं। और साथ ही साथ ये वेस्टर्न म्यूजिकल नोटेशन में भी आता है, जैसे कि भारतीय संगीत में आता है ताल, वहाँ पर भी एक ऐसी चीज़ है जिसको कहते हैं त्रियोले, तीन बीट वाला। तो ये त्रियोले शब्द फ्रेंच भाषा में एक पोएट्री टाइप से आया, अंग्रेजी में इसे ट्रिपलेट कहते हैं और फ्रेंच में इसे त्रियोले कहते हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया, वहाँ की जनसंख्या 2016 में 24,073 की थी, आज तो थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया होगा। तो इसी के साथ ही आज का ये प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त होता है। रंजन जी, उमा जी, माला जी, सुमन जी, सुमति जी और मीरा जी, आप सबों ने जिन्होंने हमें सही जवाब दिया और जिन्होंने कोशिश की, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं गुरुवार की शाम को रेडियो मनोरंजन की लहरों पर प्रोग्राम राम रसधारा में। आज के लिए इतना ही, काफ़ी थोड़ी देर में पूनम जी आपका साथ निभाने आ रही हैं, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय मॉरिशस।

0: पुराने नगमे।
1: नमस्ते आदाब, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। 5:10 हो रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूनम। और आज का ये 1 आवर यानी कि 1 घंटा एक ऐसे डायरेक्टर के नाम हम करने जा रहे हैं जिन्होंने फिल्मों को सिर्फ कहानी नहीं एक ग्रैंड एक्सपीरियंस बना दिया। हाँ जी, हम बात करने जा रहे हैं शोमैन सुभाष घई जी की। चलिए उनके शानदार सफ़र और गीतों के साथ इस शाम को और भी फिल्मी बनाते हैं। उन्होंने तो फिल्में बनाई पर हम उनका जो प्रोग्राम है, उनके गाने हैं, उनकी फिल्मों की बातें हैं, उससे उनके प्रोग्राम को और एक नया मुकाम देना चाहते हैं। तो इन्जॉय कीजिए आपके प्रोग्राम के सुभाष घई के जो मूवीज़ के हैं गाने स्पेशली, जो कि सुपर हिट रहे मूवीज़ और सुपर हिट रहे सॉन्ग्स। तो इन्जॉय कीजिए आपका ये प्यारा सा गाना।
2: RM3 Radio.

0: सर
1: नमस्कार।
0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

0: पुराने नगमे।
1: सैटरडे का ये प्यारा सा दिन 16 मई की एक प्यारी सी शाम, इस समय हम बात कर रहे हैं सुभाष घई साहब की, जो बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने अपनी मूवीज़ में ग्रैंडनेस के साथ साथ इमोशंस भी दिए और दोनों ही हिट रहे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तो की थी एक एक्टर बनने के लिए, लेकिन उनको असली पहचान मिली जब वो एक डायरेक्टर बने, और वो भी एक ऐसी मूवी हिट फिल्म देने के बाद जिसे कहते हैं कर्ज मूवी, और उसमें उनको ऐसी पहचान मिली उन्होंने दोबारा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और आज वो एक ऐसी पहचान है जिनकी मूवीज़ आज हम देखते हैं तो हमेशा खुश होते हैं, हमारे चेहरे पे स्माइल आती है, कई बार आंखों से आंसू भी निकलते हैं। पर क्या कहें, उनकी कुछ खासियत ही ऐसी है कि उनकी मूवीज़ के प्रोग्राम या जिस तरीके से वो डेको करते हैं, जिस तरीके से बनाते हैं मूवी, क्या बात है। चलते हैं सुनते हैं

0: उस मूवी का गाना ताल से ताल मिला।
1: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: 5:26 हो चुके हैं दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं सुभाष घई जी की। तो सुभाष घई जी का जन्म जो है 24 जनवरी 1945 को हुआ नागपुर में, और आज वो तकरीबन 81 साल यानी कि 81 ईयर्स के हो चुके हैं। और उनकी फिल्में ऐसी थी कि उनका जादू हमेशा आज तक चलता रहा है, और कहते हैं कि उनकी जो मूवीज़ हैं ना वो आज भी इतनी फ्रेश लगती हैं कि जब भी कोई भी ये मूवी देखता है, कोई भी जनरेशन का इंसान, वो कहता है क्या मूवी बनाई है। जिस तरीके से उन्होंने बनाई थी खलनायक मूवी, और खलनायक मूवी में जिस तरीके से उन्होंने दिखाया था, पिक्चराइज करवाया था, ये एक्ट्रेस को बताया था कि इस तरीके से भी एक्टिंग होती है, क्योंकि जिस तरीके से संजय दत्त ने एक्टिंग की और माधुरी दीक्षित ने की, ऐसा कोई भी पहला नहीं करना चाहता था, कोई हीरो नहीं करना चाहता था, और अपनी कोई मतलब इस तरीके से लुक और ऐसा एक स्टाइल नहीं देना चाहता जिससे उसकी बुराई हो या लोग उसको इस तरीके से कहें कि अरे ये तो खलनायक है। पर सुभाष घई ने बोला अरे ऐसा भी करोगे तो देखना कितना अच्छा दिखेगा, क्योंकि दुनिया इस तरीके से है। तो ये गाना उसी मूवी का है जिसको आज भी उसको न्यू तरीके से बनाई जा रही है, और कहा जा रहा है कि ये न्यू तरीके से बनेगी और रैली में ये भी कुछ अलग ही बनकर आएगी। तो सुनते हैं खलनायक मूवी का ये गाना।
2: RM3 रेडियो।

0: पुराने नगमे।
1: 5:35 हो चुके हैं दोस्तों, हम बात कर रहे थे सुभाष घई जी की फिल्मों की। तो उन्होंने कई मूवीज बनाई और सारी ही नॉर्मली सुपरहिट रही, जैसे कर्ज, हीरो, कर्मा, राम लखन, सौदागर, खलनायक, तिरमूर्ति, त्रिमूर्ति, परदेस, ताल, यादें, मेरी जंग, ऐसे जो बहुत सारी उन्होंने फिल्में बनाई जो कि सुपरहिट रही। उसके साथ साथ में जो उनके सेट्स होते थे, जो उनका म्यूज़िक होता था बहुत ही शानदार होता था, और उसमें जो इमोशंस होते थे वो कभी कभी बहुत ही मिक्स होते थे, मतलब रोना भी चलता था, साथ में मुस्कुराहट भी चलती थी, कॉमेडी भी होती थी, और साथ में बिल्कुल डिशम डिशम वाले भी जो स्टाइल होता था ज़रूर होता था। और वो फिल्म ख़त्म होने के बाद उसके जो गाने होते, डायलॉग्स होते थे, दिल में रह जाते थे। इसी उनकी शानदार के काम के लिए उन्हें कई फिल्म फेयर अवार्ड्स भी दिए गए, आईफा जैसे बड़े सम्मान भी उनको मिले। और कहते हैं ना कि जो डायरेक्टर ऐसा हो उसको सम्मान मिलना ही चाहिए, जिन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया, यानी कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को अप टू डाउन, डाउन टू अप कर दिया। और उन्होंने कहा कि जब मूवीज़ बनाने जाओ तो ये मत देखो कि किस तरीके से काम होता है, ये देखो कैसे काम करना है।
2: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: 5:44 हो चुके हैं दोस्तों, और मुझे पता है कि जिस तरीके से गाने चल रहे हैं आपको पूरी जहां पर भी होंगे बस मस्ती छा गई होगी, मुझे पता है क्योंकि ये गाने हैं ही ऐसे। तो चलिए बात करते हैं सुभाष घई साहब की। माधुर दीक्षित, मनीषा कोइराला, महिमा चौधरी, ऐश्वर्य राय, मीनाक्षी शिशोदरी, रेखा, डिम्पल कपाड़िया, सुभाष घई ने ऐसी एक्ट्रेसेस को इतनी अलग पहचान दी कि आज भी वो ऐसे उनका जो काम है वो आज भी बोलता है। और हीरोज़ की बात करें तो अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, दिलीप कुमार, नसरुद्दीन शाह, शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती, उनकी फिल्मों में हर एक्टर और एक्ट्रेसेस का एक अलग अंदाज होता था, उनकी बात अलग होती थी, और उनके गानों की तो बात ही क्या, मतलब वो जो धीरे धीरे शुरू करते थे और उसके बाद जो उनकी हाई बीट पे गाने होते थे उनकी बात ही अलग होती थी, और वही जो शानदार पहचान उन्होंने तब बनाई थी वो आज भी कायम है। चलिए एक और ऐसा गाना सुनते हैं, उसका जो मुझे एंडिंग है ना इतना पसंद है कि अगर आप वहाँ पर होगे तो 100% डांस कर रहे होगे, और मैं भी यहाँ पर स्टूडियो में डांस कर रही होंगी। तो एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा गाना उनका।
2: RM3 Radio.

0: RM3 Radio. Radio.
1: तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सुभाष घई की फिल्मों के ये रंग, ये गाने और ये यादें उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब कहीं बन जाइएगा, आगे है विस्तार से समाचार, उसके बाद होगी नई सोच और रात के 9 बजे तक यानी कि दिलों की आवाज़ के बाद तक मैं आपके साथ ही हूँ। और अपना एंजॉय कीजिएगा, खाना या जो भी बना रहे हैं, बस ये गाना सुनिए, बहुत ही खुश होंगे आप।

0: 94.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
1: शाम के 6 बज रहे हैं।
2: नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की प्रमुख खबरें। गंगा तालाब में पर्यटकों से जुड़ी घटना के बाद पूजा स्थल की सम्मान और जागरूकता पर बहस तेज हो गई है। मतदाता पंजीकरण का दूसरा चरण शुरू, देश भर में 40 केंद्र खुले, सूची जांच और संशोधन की सुविधा उपलब्ध है। जिनोबुदा मामले में गला घोंटने से मौत की पुष्टि।

0: आरोपी गिरफ्तार 18 मई तक पुलिस हिरासत में रहेंगे। विदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेदरलैंड्स पहुंचे, यूरोप के साथ संबंध मजबूत करने की यात्रा और आम्स्टर्डम में उनका स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। गंगा तालाब मुरशिस में हिंदू समुदाय के लिए आस्था का एक प्रमुख स्थल बना हुआ है। हर दिन श्रद्धालु और पर्यटक भी यहां प्रार्थना करने या मुरशिस की इस प्रतीकात्मक धरोहर को देखने पहुंचते हैं, लेकिन हाल ही में दो विदेशी पर्यटकों से जुड़ी एक घटना ने पूजा स्थलों के सम्मान और इस पवित्र स्थान में अपेक्षित व्यवहार और परंपराओं के प्रति तथा इस स्थल का दौरा करने वाले लोगों को बेहतर जागरूक करने की आवश्यकता पर फिर से चर्चा छेड़ दी है। मतदाताओं के पंजीकरण का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। देश भर में लगभग 40 केंद्र खोले गए हैं ताकि मतदाता अपना पंजीकरण कर सके, अस्थाई मतदाता सूची में अपना नाम जांच सके और जरूरत पड़ने पर उसमें संशोधन कर सके। जानकारी की जांच के लिए दो अन्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई है। ज्यादा जानकारी गीता सुनारान के साथ।
1: 2026 के लिए चुनाव आयोग की अस्थाई मतदाता सूची में 1 मिलियन से थोड़े ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें 49,061 नए मतदाता शामिल हैं। ये आंकड़े जनवरी में घर घर जाकर किए गए सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए थे। उस समय एजेंटों ने गणराज्य में 3,08,000 से ज्यादा घरों का दौरा किया।
2: Avec Didier qui paraît ici, mais non encore la liste électorale ici.
1: घर घर जाकर की गई प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब जांच का कार्य शुरू होता है।
2: चंदनी देवी, ओके।
1: इस अभ्यास के लिए 30 मई तक 45 केंद्र खोले गए हैं।
3: Mon vin vérifier et dans mon nom résiste pour mon voter.
4: Oui, mon tout mon nom et mon dégaçon.
5: Mon guet si mon nom bien si avec mon adresse si c'est ok. Mon guet et mon checké si c'est correct.
1: साथ ही नागरिकों को अपने व्यक्तिगत विवरण SMS या आयोग की वेबसाइट पर जाकर जांच करने की मांग की जाती है। इसके लिए SMS सेवा सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है। चुनाव आयुक्त मोहम्मद इरफान अब्दुल रहमान कहते हैं, पिछले 5 वर्षों में हमने देखा कि ज्यादा मैसेजेस मोबाइल फोन पर आते हैं या हमारे वेबसाइट पर कम लोग हमारे केंद्रों में जाते हैं। मतदाता पंजीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ताकि एक भरोसेमंद, पारदर्शी और विश्वसनीय मतदाता सूची सुनिश्चित की जा सके। अगर इस साल अगस्त महीने तक कोई 18 साल का हो जाएगा तब वो मतदाताओं की सूची में अपना नाम शामिल करवा सकता है। अगर पिछले साल से इस साल के बीच पता बदल दिया हो और नया चुनाव क्षेत्र में रहने चला गया हो तब भी आपकी मदद की जा सकती है। और अगर आपका नाम गलत लिखा हो अस्थाई सूची में और ID नंबर भी सही नहीं हो तब भी उन्हें सही से लिखने में मदद कर सकते हैं। 2026 की मतदाता सूची 16 अगस्त से लागू हो जाएगी।
0: पुराने मंत्री नंदू बुद्धा के बेटे शिनो बुद्धा की मौत उसका गला दबाने से हुई है। कल रात पुलिस के चीफ फोरेंसिक ऑफिसर डॉक्टर सुरेश कुमार गंगाधरन की ओर से जो शव परीक्षण किया गया उससे ये बात सामने आई है। शिनो बुद्धा को कल निकोलिया में निर्जीव पाया गया। इस मामले में 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आज दिन के दौरान जॉ माइल ओलिविए रोज और जॉ और लुई इस्माइल मिगेल लारुबॉब को वीकेंड कोर्ट में मजिस्ट्रेट ननलोल के सामने पेश किया गया। उन पर हत्या का अस्थायी आरोप लगाया गया है। इंक्वायरी ऑफिसर ने बताया कि पुलिस को उनकी रिहाई पर आपत्ति है क्योंकि सबूत और गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने और उनके भागने का खतरा है। दोनों ही संदिग्ध लोगों को अगले 18 मई तक पुलिस सेल में भेजा गया है। उन्हें अगले सोमवार 18 मई को मापू अदालत में पेश किया जाएगा। और पुलिस हिरासत में एक रात बिताने के बाद सर्जेंट नोबे मानुवालू और कंस्टेबल नंदनी रागू को आज सुबह वीकेंड कोर्ट में पेश किया गया। उन पर FCC एक्ट की section Barisian

0: अंतर्गत पब्लिक ऑफिशियल यूजिंग ऑफिस फॉर ग्रेटिफिकेशन का अस्थायी आरोप है। उन्हें वापस पुलिस सेल में भेजा गया है और उन्हें फिर से सोमवार को पॉम्पलमस की अदालत में पेश किया जाएगा। रुख करती है पॉम्पलमस के कार्डियक सेंटर का, जहां एक नई हाईटेक हॉट लंग मशीन अब ओपन हार्ट सर्जरीज को और बेहतर बनाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये मशीन ऑपरेशन के दौरान खून की ज़रूरत को काफ़ी हद तक कम करने में मदद करेगी। ये एक बड़ी प्रगति मानी जा रही है, जिससे हर दिन 10 से ज़्यादा पॉइंट खून की बचत हो सकेगी और राष्ट्रीय ब्लड बैंक पर दबाव भी कम होगा।
1: शनिवार सुबह 9:30 बजे चिकित्सा टीम इस मरीज में ओपन हार्ट सर्जरी करने की तैयारी कर रही है। ये काफी जटिल ऑपरेशन है, जिसके लिए 4 से 5 पॉइंट खून की जरूरत। लेकिन शनिवार के दिन केवल एक ही पॉइंट खून, ऐसा इसलिए क्योंकि जर्मनी से एक नया उपकरण लाया गया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है और स्पष्ट रूप से हिसाब किया जाता है कि ऑपरेशन के दौरान कितने खून की आवश्यकता होगी और इसकी बदौलत नुकसान को घटाया जा सकेगा। कार्डियक सर्विसेज के निदेशक डॉक्टर सुनील कनीस ने कहा,
2: Les chirurgiens opérés nous arrêtent les cœurs nouvelles à poitrine, une machine qui appelle une heart lung machine prend en relais les cœurs et ce poumon. Comme une machine, c'est l'intelligence artificielle qui calcule exactement sa température à l'écho là, température à l'écho baissée, flot disant dans l'écho aussi baissé, et donc sa machine là, les poudiennes tel flot puis aller, ça veut dire pas besoin autant d'issant qu'ils ont. Les permis de ban chirurgien, ban anesthésiste, ban perfusionniste travaillent avec plus de tranquillité.
1: उपकरण को चलाना काफी आसान है। परफ्यूशनिस्ट मरीज की जानकारियां डालते हैं, जैसे कि उसकी उम्र, वजन और साइज। बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ संचालित करता है।
2: Podéien un MBA machine, nous participons con, par exemple, concentration oxygène dans 10 ans, concentration carbone dioxyde dans 10 ans, pH 10 ans. Sa machine-là, en continu, il dit à nous PO2 combien, PCO2 combien, saturation combien, pH combien. Il est extraordinaire. C'est tout l'intelligence artificielle.
1: 15 jours ont été जब से 30 मिलियन रुपए की लागत के दो उपकरण प्राप्त हुए हैं। कर्मचारियों को एक विदेशी विशेषज्ञ की ओर से एक पहला प्रशिक्षण भी प्राप्त हो चुका है। पॉम्पलमस के कार्डियक सेंटर में हर साल 900 से ज़्यादा ओपन हार्ट सर्जरीज होती हैं। इस आधुनिकतम टेक्नोलॉजी की बदौलत राष्ट्रीय ब्लड बैंक को भी काफ़ी राहत मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस डे के संदर्भ में शनिवार को केंद्र में एक रक्तदान का आयोजन किया गया। बहुत से दाता उपस्थित हुए।
0: Fédération des travailleurs Nicole Pendermeco एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, इसमें वर्ल्ड नेट्स समूह की 3 टेक्सटाइल फैक्ट्रियों के लगभग 550 कर्मचारियों की स्थिति पर चर्चा की गई, जो कठिनाइयों का सामना कर रही है। आत्मा सांतु ने कर्मचारियों के वेतन में देरी और क्लाइंट टेक्सटाइल तथा यूनिवर्सल फैब्रिक्स की 2 फैक्ट्रियों में कामगारों को तकनीकी बेरोजगारी पर भेजे जाने का मुद्दा उठाया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रम मंत्री रिजा उद्दीन ने कहा कि इस टेक्सटाइल समूह को अपने कर्मचारियों के प्रति वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
1: एफटीयू के आत्मा शांतो ने उन कठिनाइयों पर टिप्पणी की जिनका सामना अभी 3 टेक्सटाइल्स कारखानों, क्लाइन टेक्सटाइल्स, यूनिवर्सल फैब्रिक्स और वर्ल्ड नीड्स के 550 कर्मचारियों को करना पड़ रहा है। उनके मुताबिक इन कर्मचारियों के अनुसार उनकी तनख्वाह देने में देरी हुई है और उनके भविष्य को लेकर भी वे अनिश्चित हैं।
3: Deux compagnies en chômage technique parce qu'ils paient l'électricité. Pas capable payer ben transporter. Nous finissons 3 rencontres avec le ministre mais il y a même nous finissons une rencontre avec la direction de World It. Et la direction fin répond pareil qu'ils ont fait négocier.
1: Phone par sampark rakhne par shram mantri Reza Uttim ne apni pratikriya vyakt ki.
4: Malheureusement, il y a une centaine de travailleurs qui pas encore gagné la paix, donc c'est totalement inacceptable. Et nous fait un appel au management de Sabanizina à ce sujet qui tout va une droit des travailleurs. Ils ont respecté et ils ont gagné de casse à temps. Donc le management.

0: soit injecté CAS dans sa banivina, soit il prend une mesure qui vient. Employeur paye PRGF, paye tout CAS qui vient, doit travailler. Hein. Ce n'est pas juste de salaire.
1: इस बीच एफटीयू अपनी कोशिश बरकरार रख रहा है और वो जल्द ही तीनों कारखानों के सभी कर्मचारियों को जुटाने का इरादा रखता है।
2: गोल्डन कस्टम सर्विस के एक डेलीगेशन ने मॉरीशस रेवेन्यू अथॉरिटी के महानिदेशक के साथ जूनियर वित्त मंत्री धनेश्वर दामरी के साथ भेंट की। इसके अंतर्गत मॉरीशस में पार्सल्स के प्रवेश की प्रक्रिया नियंत्रित करने की दिशा में रिस्क मैनेजमेंट प्रणालियां मजबूत करने और उच्च टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। जूनियर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने ड्रग तस्करी से जुड़े खतरों के बेहतर संचालन और सरकारी सेवाओं के डिजिटलाइजेशन की कटिबद्धता ली है। आज 16 मई को शनि जयंती मनाई जा रही है। ये दिन भगवान शनि देव की जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में शनि देव को न्याय के देवता माना जाता है। भारत के साथ साथ मॉरीशस में भी भक्त मंदिरों में पूजा और प्रार्थना कर शनि जयंती मना रहे हैं। अशित रघु की ये रिपोर्ट पेश है।

0: पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि देव भगवान सूर्य और माता छाया के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें छाया पुत्र भी कहा जाता है। उनका काला स्वरूप रहस्य, गहराई और गंभीरता का प्रतीक माना जाता है। शनि देव व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं और सत्य व न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। शनि देव का वाहन कौवा है, जो सतर्कता और कर्मों की याद दिलाता है। वही लोहा मेहनत और मजबूती का प्रतीक माना जाता है। आज शनिवार के दिन श्रद्धालु सरसों का तेल, काले तिल और शमी के पत्ते अर्पित कर शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
1: उस शनि देव को विशेष रूप से हम लोग मतलब कि काला उरद जो कि होता है वो चढ़ाते हैं, काला कपड़ा और काला तिल, इससे मतलब कि शनि देव को मतलब कि चढ़ा करके उसको प्रसन्न किया जाता है। बहुत बड़ा महत्व है, केवल शनि पूजन से कुछ नहीं होगा, शनि पूजन के बाद हनुमान जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तो जो कुछ भी मतलब हनुमान जी को हम चढ़ाते हैं वो शनि देव को भी चढ़ाते हैं। पीपल पेड़ का हम पेड़ की आराधना करते हैं, आठ परिक्रमा करने के पश्चात एक लोटा या तो शुद्ध मद पानी वो पीपल पेड़ में अर्घ देते हैं। जो कुछ भी चढ़ाते हैं वो सब प्रतीकात्मक रूप में कि एक दिन सब कुछ नश्वर हैं, सब नष्ट तो हो गई, तो काहे को अहंकार, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, विरोध, रागी, दूसरों से नफरत करना, ये हमारे देवताओं ने ये हमको नहीं सिखलाया, इसलिए इन सब को जीतना है, इन सब को काबू करना है, इन सब को कंट्रोल कर करके फिर मतलब कि भगवान की आराधना उपासना करना है।
0: मान्यता है कि शनि के सारे साथी और ढैया के दौरान व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से गुजरता है, लेकिन यही समय उसे धैर्य और सहनशीलता भी सिखाता है।
2: अगर पूजा चहला जाने के करे के कठिन तनको ने ये आदमी जो सोचेला कि शनिदेव के पूजा जो है कठिन है नहीं, एगो फूल चढ़ा देबा तो शनिदेव खुशी हो जाला। हाँ, देर कोई नहीं खुजला करे के पास की नहीं जाने लंस ना देरे लंस। हाँ,
0: शनिदेव केवल दंड देने वाले देवता नहीं बल्कि जीवन में कर्म, सत्य और अनुशासन का महत्व समझाने वाले शिक्षक भी माने जाते हैं।
3: विदेश में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेदरलैंड्स पहुंच गए हैं। ये उनके पांच देशों के दौरे के दूसरे चरण का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत की रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाना है। आम्स्टरडाम एयरपोर्ट पर नेदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के छोटे दौरे के बाद नेदरलैंड्स पहुंचे, जहां अबूधाबी में उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। और अफ्रीका की प्रमुख स्वास्थ्य एजेंसी ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पूर्वी इटूरी प्रांत में इबोला महामारी घोषित की है। अफ्रीकन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार लगभग 246 मामले और 80 मौतें दर्ज की गई हैं।

0: खासकर मंगवालू और वामपारा के खनन क्षेत्रों में युगांडा में के अधिकारियों ने भी शुक्रवार को कांगो से आए एबोला के एक मामले की पुष्टि की है। देश विदेश की खबरों के बाद आइए अब मौसम का हाल सुनते हैं।
1: दक्षिण पूर्व की तरफ से जो बादल बढ़ रहे हैं रह कर हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि रात में मौसम अच्छा रहेगा, फिर बाद में बादल घिरने लगेंगे और बारिश होगी मुख्य रूप से टापू के आधे पूर्वी हिस्से में, दक्षिणी हिस्से में और सेंट्रल प्लाटो पर। कभी कभी सामान्य से तेज बारिश होगी। ऊंचाइयों पर कोहरे छाए रहेंगे। दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 3.50 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में और लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। फिर भी धीरे धीरे उत्तर के लगून में समुद्र में कुछ सुधार आने लगेगा। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 18 और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 23 एवं 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 27 एवं 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। शाम 5:41 पर सूर्यास्त, जबकि सुबह 6:31 पर सूर्योदय।

0: इसी के साथ ही समाचार समाप्त हुए से अब तक पहुंचाने में हमें लविशा और लुडोविक का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: Number bir Jane Street Vilme Gate Militiami Number bir Jane Street Vilme Gate Militiami 86 saala ki 86 years old ki Shrimati Sabitri Ramdat Shrimati Sabitri Ramdat पैदाशनाम रामदत्त और जो पित की नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे उनके घर नंबर 20 जानेट स्ट्रीट विलमैन गाते मिलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए विलमैन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM डुलाख लेन मेबर्ग में 40 साल के 46 years old के श्री सेविन सामिनाथा पिले जो अन्ना नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और जो जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के अटेंडेंट थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के दो बजे उनके पिता श्री आत्मानंद सोमी सामीनाथा पीले के घर तुलाहलेन मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार किए तोंबो मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM मेरांटी लेन डॉक्टर माये स्ट्रीट फ्लोरियाल में 77 साल की 77 years old की कुमारी पुष्मांती लीलोधारी जो ज्ञान नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल सुबह साढ़े दस बजे उनके घर मेरांटी लेन डॉक्टर माये स्ट्रीट फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगारा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो 10:30 AM शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है
1: on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: दोस्तों, आज इस महफिल में कई मस्ताने हैं, एक शम्मा, दो परवाने हैं।

दीवाने हैं, लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप ही बताइए कौन है हीरो और कौन है जीरो।

0: नमस्ते आदाब सत श्री अकाल वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज की नई सोच एक बहुत ही छोटी लेकिन गहरी बात कहने जा रही है। हम अक्सर लोगों को देखकर जल्दी जजमेंट कर लेते हैं और बना लेते हैं अपनी जजमेंट में कि किसी की मुस्कान देखकर सोच लेते हैं कि वो खुश होगा और किसी की चुप्पी देखकर सोच लेते हैं कि उसे क्या फ़र्क पड़ता है, अरे इसका तो चेहरा ही बना रहता है, उसे गुस्सा ही आता रहता है, तो हमारी जजमेंट बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन सच क्या है जानते हैं? हर इंसान अपनी जंग लड़ रहा है इस दुनिया में, इसलिए कभी भी किसी को भी हल्के में मत लीजिए। ना जाने किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कितने उथल पुथल और कितने रास्तों से वो गुजर के निकल रहा है, तो हमेशा इस तरीके से नहीं सोचना है कि एकदम से जज कर लिया और कह दिया कि उसका चेहरा या उसकी बातें या उसकी नाराज़गी कैसी है। हमें ये देखना है कि वो नाराज़ क्यों है, उसकी तकलीफ़ क्या है। अगर जान सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं जान पाते तो कोई बात नहीं। मैं हूँ आपके साथ पूनम, चलिए आज दिन से समझने की कोशिश करते हैं नई सोच के साथ प्यारी सी बात। ये गाना आप सबके लिए
1: RM3 रेडियो

नई सो। दोस्तों, किसी को जज करने से पहले एक बार ये जरूर सोचिए, शायद वो अंदर ही अंदर ऐसी परेशानियों से गुजर रहा हो जिसका अंदाज़ा हमें भी नहीं होता। इस समय हो रहा है 6:44, इसलिए कभी कभी एक छोटी सी रिस्पेक्ट या कोई छोटी सी काइंडनेस किसी के लिए ज़रूर करनी चाहिए। किसी का पूरा दिन भी बदल सकता है और शायद इस एक्ट से किसी की ज़िंदगी भी बदल सकती है। और अगर आपको लगे कि कोई इंसान बहुत ही हमेशा ही चिड़चिड़ा और बहुत ही परेशान रह रहा है तो पूछ सकते हैं कि क्यों, पर अगर कोई ना बताना चाहे तो ज़बरदस्ती नहीं, पर ज़रूर ज़िंदगी में याद रखना। उसके लिए एक बार प्रार्थना ज़रूर कीजिए कि उसकी ज़िंदगी बहुत सवर जाए, अच्छी हो जाए। ये है आपका प्रोग्राम नई सोच। नई सोच में बस यही होता है कि नया सोचिए, कुछ उठ के सोचिए, कुछ प्यारा सा सोचिए। ये सुनते रहिए आप, उसके बाद हम जुड़वाएंगे दिलों की आवाज़ के साथ। RM3 Radio.

0: RM3 Radio. Radio.
1: दोस्तों जिंदगी

ये सबको अलग अलग तरीके से सिखाते, इसलिए हर इंसान का बिहेवियर भी अलग होता है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, किसी का स्ट्रगल दिखाई देता है, किसी का नहीं। तो यही जिंदगी है। नई सोच सिर्फ इतनी कहती है कि हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर किसी तरीके से जिंदगी में परेशानी आ रही है तो किसी ना किसी से बात जरूर करिए।

को थोड़ा प्यार, थोड़ी सी रिस्पेक्ट, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दीजिए, क्योंकि हम कभी नहीं जानते सामने वाला इंसान अंदर से किस हालत से और किस ज़िंदगी से गुजर रहा है। मैं थी आपके साथ पूनम, और अब थोड़ी देर में जुड़ पाएंगे आप दिलों की आवाज़ के साथ मेरे साथ ही। RN3 रेडियो मनोरंजन पर आप सभी का स्वागत है जो अभी जुड़े हैं और जो बहुत देर से ये प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हैं। बस इंजॉय करते रहिए। एक प्यारा सा गाना आप सबके हाजिर है अरिजीत सिंह की आवाज़ में, बहुत ही प्यारा गाना है, इसको इंजॉय कीजिए।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज
1: बोस्वा नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। दिन धीरे धीरे शाम में बदल चुका है और अब वक्त है कुछ खूबसूरत एहसासों का और ऐसे नगमों का कि जो बहुत समय से हमने ढूंढे बैठे थे और मिल नहीं रहे थे। आप सुन रहे हैं आरएम3 रेडियो मनोरंजन पर दिलों की आवाज़, जहां गाने सुने नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं। और मुझे पक्का पता है कि आप जब से दोपहर से मैं 5 बजे से कर रही हूँ, आपने उन गानों को महसूस किया होगा। अगर किसी तक ये दिल तक बात पहुँचानी है अपने मन की और आपको एहसास दिलाना है कि आप उन्हें कितना चाहते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं या उनसे कितना प्यार करते हैं, वो कोई भी हो सकता है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 5250-6200 पर या कॉल कर सकते हैं 4028070 पर। मैं हूँ आपके साथ पूनम। चलिए शाम को थोड़ा और

0: दिलों की आवाज,
1: सात बजकर 16 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। दूरी चाहे जितनी भी हो, सच्चे रिश्ते हमेशा दिल के करीब होते हैं और आपके ऐसे ही जो मैसेजेस से हमारा रिश्ता बना हुआ है या कॉल्स की वजह से हमारे साथ भी एक रिश्ता बन चुका है, एक परिवार बन चुका है और वहाँ पर चलता है आप ही का प्रोग्राम दिलों की आवाज़। और इस प्रोग्राम में आप सब जुड़ते हैं, अपनी फरमाइश करते हैं, आपके दिल में क्या चल रहा है वो भी बताते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा बंधन हम लोगों का है, तो इस बंधन को जुड़े रहने दीजिए और उसको टूटने की कोशिश मत कीजिए। तो ये गाने सारे आप ही की पसंद के चलने वाले हैं। इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ललिता जी, जो कि सुनाना चाहती हैं सुदेवी जी, ज्ञानी जी, देवीना और छोटी दीदी, दीदी प्रभावती, आत्माराम भैया, हरीश भैया और सुखलाल मौसी, उषा लोकाना के लिए एक प्यारा सा गाना। और एक ललित जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ यूएसए से, कमलेश रानी जी जुड़ी हुई हैं इंडिया से। इस समय हमारे साथ जुड़ी हैं फुलवंती जी, जो कि पूरे एम्बेसी परिवार को और अपने परिवार के लिए भी एक प्यारा सा गाना सुनना चाहती है। तो आप सबकी पसंद का ये गाना आप सबके लिए, इंजॉय कीजिए आपका ये गाना और बस साथ में जो खा पी रहे हैं वो खाते रहिए, बट हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
0: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज,
1: रात के 7:37 हो चुके हैं और सभी जानते हैं इस वक्त हम हर तरह के गाने लेकर आते हैं आपके लिए. कभी रोमांटिक लाते हैं, कभी डांस बीट लाते हैं, तो कभी एहसासों से भरे हुए गीत. बस आप यूं ही साथ बने रहिए क्योंकि हर दिल के मूड के गाने हम चलाने वाले हैं. और ये हर दिन जो ऐसे गाने होते हैं ना, ये आपकी धुनों को तो लेकर आते हैं, साथ में आपके एहसास और अपनी यादों को भी समेट के लेकर आते हैं. तो चलिए भाई, हमारे साथ अब बहुत सारी यादें जो हैं ताज़ा होने वाली हैं. इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अनीता जी फ्लिक ऑफ लाख से, और आज उनकी भतीजी मालिनी का वेडिंग एनिवर्सरी है. और अंकल राज, अनीता जी, अंतिश, अंकुश, साथ में मनीषा, आशिमा भतीजी हमीशा, आध्या, अंशु ने विश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप हमेशा खुश रहो और हमेशा इस ज़िंदगी में प्यार से खुशी से रहना. आप जैसे रहते हैं, आपसे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है. सो ब्यूटीफुल मैसेज, ऐसे साथ रहिए. बीना जी का तो फोन से जुड़ी हुई है और एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही है. साथ में हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारी प्यारी सी जो होने वाली ब्राइड है स्वेनल, और वो कह रही हैं कि वीकेंड पे बहुत सारे कपल्स एक रिश्ते में बंधने वाले हैं. तो हम यही कहते हैं कि जिनका रिश्ता मेरे भाई से बंधा हुआ है, यानी कि भाई श्रवण, भाभी कीर्ति, अभिनव, कियान, नव्या, तुकलक फैमिली, जो कि एक दूसरे से इतने ज़्यादा प्यार करते हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी हम यही कहेंगे कि हमेशा खुश रहो. ज़िंदगी के चैप्टर बहुत ही सारे हैं, उस चैप्टर में से एक चैप्टर आप लोग शुरू कर रहे हैं, बस मोहब्बत और प्यार से शुरू कीजिए. ये गाने आप सबके लिए, एंजॉय कीजिए आपके गाने.
0: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज।
1: 7:54 हो चुके हैं लोग इस समय बहुत सारे हमारे साथ फोन यानी कि व्हाट्सएप के थ्रू जुड़े हुए हैं, फोन कॉल के थ्रू जुड़े हुए हैं। और मुझे पता है कि जो लोग दूर रहकर भी अपने लोगों को याद करते हैं उनके लिए रेडियो एक माध्यम बन जाता है और म्यूजिक उनको याद दिलाता रहा है उन सभी की। और ये मैसेजेस जो होते हैं उनको एहसास दिलाते रहते हैं कि वो लोग कितना इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। जब उन्हें एहसास होता है अरे उसने मेरे लिए मैसेज भेजा, उसने मेरे लिए एक प्यारा सा गाना चलवाया, तो ये एहसास ही ना अंदर से कहता है हाय रे एक बार कॉल करिए पूछ लिया कैसे हैं आप। और यही तो है हमारी जिंदगी, जब आपस में एक दूसरे को पूछते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं, उनसे बात करते हैं और उनके सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। यही जिंदगी है और इसी को ऐसे ही चलने दीजिए। थैंक यू सो मच। हमारे लिए बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है, स्पेशली एमबीसी के लिए भी किया है, मेरे लिए भी किया और बाकी सब आरजीज के लिए किया है। हम सब आपके लिए कहते हैं थैंक यू सो मच। और पर ये स्पेशली जो ये मैसेज है ना नंदा जी का, वो कहती हैं कि मेरे अपने चारों बेटे और उनके गणेश फैमिली, पुनीता फैमिली, आशील, दिव्या और सभी बच्चों को बस इतना कहना चाहती हूँ तुम मेरी आंखें हो और जब जैसे आंखों से सब कुछ दिखता है वैसे जब तुम्हें मैं देखती हूँ तो मुझे सारी दुनिया मेरे सामने नजर आती है। इतना दिल छून लेने वाले ये मैसेजेस होते हैं ना, दिल करता है पढ़ते रहें। उसके साथ में ही प्रकाशवंती जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ बेल्जियम से और सभी को कहती हैं हैप्पी सैटरडे। पर मैम तो अब सैटरडे की रात हो गई है और मुझे पता नहीं कि आपके वहाँ पर क्या टाइम हो रहा है, बट हम आपको कहते हैं अगर आपकी रात है तो आपको भी सैटरडे और या रात मुबारक हो और दिन है तो बस आप इंजॉय कीजिए अपने गाने जो आपने प्यारे प्यारे से फरमाइशें की हैं। सुरेश शर्मा साजदा जी हैं जो कि अपने निशाल बेटे के लिए बस इतना कहना चाहते हैं कि मैं तुझे बोल तो नहीं पाता रोज़ रोज़ कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, पर इतना ये ज़रूर कहता हूँ बिसेस और फैमिली और मैं तुझे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा हमारे आस पास रहो, इंजॉय कीजिए आपके गाने उसके साथ।

0: में ही प्यारे से मैसेजेस भेजना मत भूलिएगा 5250-6200 पर, कॉल कर सकते हैं 4028070 पर।
1: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की
1: आवाज। 8:14 हो रहे हैं दोस्तों और आप सब जुड़े हुए हैं आप ही के फेवरेट प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ में, और मैं हूं आपके साथ पूनम। और इस समय बहुत सारे लोग जो कि अपने घर में काम ख़त्म करके घर पहुंच रहे होंगे, कई लोग ऑफिस में होंगे, कई लोगों ने स्टॉल लगाए होंगे, कईयों की छोटी छोटी शॉप होंगी, कईयों के बड़े बड़े मॉल्स होंगे, कई लोग बस रेडियो सुनते सुनते घर पहुँच रहे होंगे। तो बस उनको हम यही कहेंगे, आप इन गानों को सुनते रहिए, आपका थोड़ा दिमाग भी ठंडा होगा, रिलैक्स होगा, और जब घर पहुँचेंगे तो एटलीस्ट 1-2 घंटा अपने परिवार को दे सकेंगे, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं सब कुछ अपने परिवारों के लिए ही करते हैं, अपने मेंबर्स के लिए करते हैं। तो आपके जब मैसेजेस आते हैं मेंबर्स के लिए, फैमिली के लिए, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए अभी हमारे साथ जुड़े हुए बाबू अनंतवा जी, जो कि एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहते हैं विदेश को, भावना पूजा उषा जी को, और कहते हैं कि मैं सबसे बहुत प्यार करता हूं, बट सबसे ज़्यादा मैं रेडियो को प्यार करता हूं, क्योंकि रेडियो की वजह से ही मैं तुम सबको ये मैसेज दे पाता हूं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं, क्योंकि सामने तो किसी में हिम्मत नहीं होती है बोलने की और कोई सुनना भी नहीं चाहता। और ये सच बात भी है, सब बच्चे अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, ज़िंदगी में भाग दौड़ में चल रहे हैं, तो बस यही एक ज़रिया बन जाता है जब एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं अपने दिल की फीलिंग। उसके साथ में रफ़ीक मोहित जी भी जुड़े हुए हैं और वो भी एक प्यारा सा गाना सुनना चाहते हैं। रिहाना जुड़ी हुई है हमारे साथ और वो हमेशा इतना प्यारा मैसेज करती हैं, वो सबको यही करिए सैटरडे बहुत अच्छा हो और आपका मॉर्निंग संडे की भी बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच रिहाना। सुदेवी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, परिवार और दोस्तों के लिए गाना सुनाना चाहती हैं। साथ में सीरा जी भी जुड़ी हुई हैं और एक प्यारा सा गाना नितीश को सुनाना चाहती हैं, जो कि उनके बेटे हैं और लंदन में यूके में पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, और उनको बस यही कहना चाहते हैं आ जा वापस आ जा। और मैं यही कहूँगी, जहाँ भी रहे कोई खुश रहे, इंजॉय करे, ज़िंदगी खूबसूरत है, सबके लिए अपनी अपनी जगह बनी हुई है, तो जो भी जगह जिसकी है उसको रहने दीजिए, बुलाने से ज़्यादा अच्छा है कि उनको बस गले लगा के इतना कहा जाए कि हाँ जहाँ हो खुश रहो।
0: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज,
1: कभी कभी बस अच्छे गाने और शांत शाम ही काफ़ी होती है दिल को अच्छा महसूस कराने के लिए। अगर आपका दिन थोड़ा सा अच्छा नहीं गुजरा, कई बार बहुत टफ दिन होता है, अगर आप उस चीज़ को भी भूल जाएं कि हर दिन एक तरह से स्पाइसेस के जैसे होता है, हमेशा मीठा मीठा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है, तो दिन बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए भाई, आपके मैसेजेस भी हमारे को बहुत फ्लेवर देते हैं, हमें एहसास दिलाते हैं कि आप सब कितना प्रोग्राम को याद करते हैं और कितना अपने लोगों को मिस करते हैं। तो इस समय हमारे साथ सुदेवी जी जुड़ी हुई हैं, अपने पूरे परिवार के लिए एक प्यारा सा गाना सुनना चाहती हैं और सुनाना भी चाहती हैं। साथ में माला जी भी जुड़ी हुई हैं, जो कि किरण केती केहिल कबीर कनिश और शिव को एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं। माया जी भी साथ में जुड़ी हुई हैं और बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश की है। जो भी हम चला पाते हैं सभी के लिए हम चलाते हैं, जो नहीं चला पाते हैं तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका गाना ज़रूर चले। गुलशन जी साथ में जुड़े हुए हैं और कहते हैं, पूरे दिन तो इतना बिजी होता हूँ पर फिर भी क्या करूँ, मैं भूल ही नहीं पाता कि मेरी मम्मा मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, मेरी सिस्टर कितनी इंपॉर्टेंट है और पूरा परिवार कितना होता है इंपॉर्टेंट है, पर सबसे स्पेशली एक मेरी ज़िंदगी में आई है एंजल आयशा, जो कि मेरी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना दिया है। मैं कैसे इधर उधर भटक रहा था, पर ज़िंदगी को जो ट्रैक पे धर्रे पे लाना होता है ना, उसने लेकर आए हैं। तो थैंक यू सो मच आयशा, ऐसी ज़िंदगी में सभी के जुड़े रहिए, क्योंकि क्या होता है जब कोई अच्छा इंसान किसी की ज़िंदगी में आ जाता है, इन ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो चलिए इंजॉय करते हैं आपके प्यारे से गाने।
2: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
3: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: 8:48 हो चुके हैं दोस्तों, शाम से हम रात पर पहुंच चुके हैं और आप सभी के इतने प्यारे पसंद के गाने हमने आज चलाए आपकी इस प्यारी सी महफिल दिलों की आवाज़ प्रोग्राम में। ये आखिरी गीत उन सभी दोस्तों के लिए जो पूरी शाम हमारे साथ जुड़े रहे। मैं थी आपके साथ पूनम, नमस्ते, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल, गुड नाइट, आदाब, सत श्री अकाल। ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, इंजॉय कीजिएगा। ये गाने सिर्फ इंजॉय करने के लिए हैं, आपको मस्ती करने के लिए। और जब सुबह उठे ना तो बिल्कुल फ्रेश उठिएगा और बस एक प्यारी सी गर्म चाय पीजिएगा और उसके बाद याद कीजिएगा कि पूरा दिन आपने क्या क्या करना है। तो बस अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मैं छोड़े चाहती हूँ आपको ये प्यारे से गाने की आखिरी एक पहला गाना आप सबकी पसंद का है, उसके बाद लास्ट गाना मेरी पसंद का। एंजॉय कीजिए, गुड नाइट, टेक केयर। भाई अबू इब्राहिम, ललित जी, अलीना जी,

0: टाइम चेक रात के 9 बज रहे हैं
1: तड़का
2: हॉल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर
1: भोजपुरी तड़का
0: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने होला जितना कोई श्रोता लोगन हवन सब कोई के स्वागत करत हई रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर आप सब कोई के साथ देवे खातिर रत्ना आप सब कोई के साथ जुड़गल हवन त चला आज के हई कार्यक्रम के मजेदार गीतन से सजावब जा और बढ़िया कार्यक्रम चली अभी से लेके रात के 11 बजे ले सामदी के रात है तो सामदी के रात बहुत जलसा हुएला और जलसा करे खातिर सब कोई के साथ बहुत जरूरी है काहे कि जब परिवार संगे हो जाला मिल जाला तो एगो बढ़िया मौसम एगो बढ़िया समय बितावे में आई जोन भोजपुरी गीत है के जोन रंगत है वो बहुत जस्ती निमन लगेला तो चला आज के कार्यक्रम के संगे संगे जुड़ जाइए और मजेदार कार्यक्रम के साथ जितना कोई हमनी के संगे जुड़ गल हवन बस आशा है करब जा कि रात के 11 बजे ले आप सब कोई हमनी के साथ दे बजा और मजेदार कार्यक्रम सुने खातिन बिल्कुल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर जुड़ जाइए और जे तोरा मन बा कोनो गीत बहुत दिन से तोरा दिमाग में चला था जे तोरा मन बा कोनो गीत कोई खातिन डेडिकेट करे के तो कौन ची करे के चाहिला हो टेलीफोन उठावो 4028085 नंबर घुमावो हमनी के संगे बतियाइया और अपन पसंदीदा गीत के तू मांग करे सकबा और जे काम में हवा तोहर काम तो नहीं जस्ती बा नहीं मिलता ले

तवा टेलीफोने करे के तब मेसाज बिदा करे बिदा करे सकबा हां हो 5251700 पर तो चला आज के कार्यक्रम के शुरुआत करब जा आज के है पहला गीत संगे सुरेश किस्तु के आवाज में रखल है बढ़िया बढ़िया गीत धक धक और है गीत के साथ करब जा एगो बढ़िया शुरुआत 2023 के बरिस के है गीत है सुरेश किस्तु के आवाज में रखल तो चला शुरू करब जा भोजपुरी तड़का कार्यक्रम

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी रखा था हवन और अभी बढ़िया बढ़िया गीत संगे सब कोई हमनी के साथ देवत हवन और मजेदार कार्यक्रम संगे अपन अपन पसंदीदा गीत के तू फरमाइश करे था हवन बहुत बहुत प्यार आप सब कोई के। तो चला आज के जो पहला पसंदीदा गीत

नवीन जी खातिन चलाव अब जा नवीन लक्ष्मण जी हमने के संगे जुड़ गल हवन रोज बैल बगल से और उनकर पत्नी हवन चित्रा जी जे हमेशा बहुत प्यार से साथ दे बोला चित्रा जी बस अच्छा हो जाइए और ईश्वर तोरा बहुत बहुत शक्ति दे और चला हैजा पर निवेदिता और सच्चिदानंद जी भी साथ है देवत हवन मेबक से ललिता और धनराज चरण जी स्वीटी अपन प्यारी बेटी संगे जुड़ गल हवन मोडाल बिया बगल से राज और अमृता ओबिलक साथ है देवत हवन गौबुआ माफ करिएगा न्यू ग्रोव बगल से और रमेश और प्रीति जी गौबुआ बगल से और अभेदानंद पीजन के आवाज में रखल हमार संस्कृति और हई गीत के तुम मांग करत हवा तो जरूर चलाओ अब जाओरी जानत हव ना अभी जैसे मौसम में परिवर्तन चलाल बा तब मौसम जब परिवर्तन करेलन सा तबीयत भी तनी ऊपर नीचे हो जाला त जैसे जानत हव कौन दिन एगो दुखतिया हमार सौत में आल रहल तो सब कोई के ऊ बोलत हवन कैसे कौन चीज फैकोशो लेवे के तो हमार पप्पू भैया संगे गल रहल तो डॉक्टर बोले जानत हव अभी जैसे लेता हुआ सौजे होवा था लाइकवन लोग के बुई करके पानी पिया तो सब कोई तो समझ गल पर हमार पप्पू भैया जन है ना उतनी ट्यूबलाइट है तनी तार दे समझेलन सब वो हाथ उठा के डॉक्टर से पूछे डॉक्टर जी एगो सवाल बा हमार मन में बोले हाँ पप्पू भैया बोला कौन सवाल बा बोले हमनी के मन में एगो सवाल आवा था जैसे तू बोलन कि लकवन के बुई करके पानी पियाए के तो लकवन के बुई कर अब तब लकवा मर नहीं जाए अरे पप्पू भैया तू तो बुड़बक के बुड़बक लकवन के बुई करके बोला था वन पानी बुई करके लकवन के पियाई के हो

भोजपुरी तड़का। तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम संगे हई जाप चाची शांता सुकागी हमनी के संगे जुड़ गल हवन से जमील फॉरेस्ट साइड से आ रहा जन्मदिन बा भाई अशोक के। तो चला अशोक जी तोरा जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई हमारे एमबी से टीम देने से और तोहर सब परिवार सुकागी परिवार की ओर से खासकर तोहर माता जी शांता जी और संगे हवन सब भाई लोग सुजीत सुदेश रखावीन और किरण और संजना भावेश और नागेश और ये चाची शांता सुकागी हमने के बोले तनी सोना नयन के गीतवा बजा द। तो चला गमट किंग सोना नयन के आवाज में रखा है अगला गीत करब जा खास तो हर खातिन और जाइते जाइते चला हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ब सा काहे के जब हंसे हसब जब जन्मा की कुमाजा कैसे बोलबा जीवन में तनी तड़का बा जीवन में तनी जेपिस बा मिर्च मसाला बा त जानत हो हमर जो चाची है ना हमर चाची चमेली कौन दिन घरे बैठे बैठे हमने के बोले हम एगो नवा काम शुरू कर ले हैं। हम बोले अरे वाह चाची है तो अच्छा बात है जानत हवा सब महिला लोग के काम करे के चाहिला। बोले हाँ हम बहुत सोच ली पर हमने के एक गो निदे मिलल। हम बोले अच्छा बोले तो कौन काम शुरू कर ले हवा बोले तो कौन व्यवसाय में हवा। बोले हाँ देखा हम एगो काम सुन ले हाँ अभी जानत हो सब सगरो सब सब कोई बोले लन सा कोई बतवा बतियाए के कोई संगतिया नहीं बा तो हम सोचली हम एगो ऐसा काम शुरू करब जेकरा बहुत दुख है और जे जीवन में कोनो दुख सुने होला आदमी नहीं है तो हम ओकर दुख सुनब और हम बोलब ओकरा देखा तोहर दुख जे छोटा रही तो हम 500 रुपया लेब और जे तनी बड़ा रही 1000 रुपया में हम काम कर देव। कौन काम करब अरे दुख सुने के हो ओकर दुख सुनब हम बैठ के निमन से ओकर दुख सुनब छोटा दुख के 500 रुपया लेब और बड़ा दुख के 1000 रुपया और जे जानत हो जे कोई के संगे रोवे के पड़ी तब बस खाली 3000 रुपया में हम काम कर देव। बोली अरे वाह चाची दुख सुने के है कोनो काम हो

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: भोजपुरी तड़का मजेदार कार्यक्रम और जितना प्यार से सबको हमने के टेलीफोन करा था वन बस तनी तनी पाशांस रखिया काहे के ढेर कोई लालिंडा में जुड़ गल हवन 4028085 और गते गते कार्यक्रम के आगे बढ़ाओ अब जा 11 बजे ले चली भोजपुरी तड़का कार्यक्रम बहुत है मजे

0: मजेदार कार्यक्रम। तो चला आज के जो नगला गीत है चला अब जा मीरा बाई द मिया खातिन जे हमनी के संगे जुड़ गल हवन मौ डाल बिया बगल से और उनकर पति जी भी साथ देवत हवन दमिया परिवार पादिया परिवार और अपन बेटी दामाद खाती नगला गीत के मांग करत हवन दा नाजी नाव जी के आवाज में रखल जवानी के रेल एल्बम से लेवल गए मेवा फरेला है गीत वा तोहर खातिन चलाओ अब जा और चाचा के तक का बोलब चाचा तक काल बहुत परेशान रहलन तो हम बोली का होल चाचा बोले रात के जानत हवा हमर हिया चोर चरार हम बोली हाय रे कैसे कौन ची होल बोले चोर ऐसे चलाल इतना बड़का बंदूक लेके तो हम तो डिड़ा गई नहीं तो हम बोली हाय फिर कौन ची होल बोले हाँ हमर कपार पे ऐसे बंदूक रख के बोले सोना किधर है तो हम तो बोलनी पूरा घर वा खाली बा भैयो जहाँ जहाँ मन करे हुआ जाके सूत जइयो अरे चाचा सूते के नहीं वो बोलत रहलन तोरा बीजू तोहर जन सोना के गहना ओकर बोलत रहलन बोले हाई ऐसे तो हम सोच ली वो काहे हमर कपार पे बंदूक मार के ठोक के हमनी के भगा देलक
1: मेवा

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और हाइजा पर वाकवा बगल से भाई आबू आफे संगे हवन असलम आया जायान जहीरा रईस खाला छोटी और उनकर संगत या हवन आपी और उनकर पत्नी और भाई आबू हमने के

आज तनी जुबेदा के लोटो चला दे हमर खातिर और हई गीतवा से बहुत कोई खुशी रहेलन जुबेदा लोटो लेके जाए रंभा राम तोहल के आवाज में रखल हई गीत और हमनी के संगे जुड़ गल हवन फुलवंती जी वाकवा से संगे हवन उनकर बेटा उषन बेटी हवन भावना और हवन उनकर पति देव आनंद और चला है जबर पीतों से हमनी के संगे जुड़ गल हवन अमृता जी अमृता गणेश और सब गणेश परिवार खासकर सोनिया और परी उनकर बेटा हवन विषम और पतो हवन मीनाक्षी तो चला है ये गीत करब जाओ उनकर खातिन उनकर सब परिवार गणेश खातिन और जुबेदाल लो तो लेके जाए है गीत के संगे संगे चला एगो बढ़िया बढ़िया का बोलब चाचा अरे चाची के तो जितना झगड़ा होवेला का बोलब चाची बोले हाँ तरह हमनी के आवाज सुने के बहुत परेशानी होला ना तो देखिए आज के बाद तरह कबो हमर आवाज सुने के नहीं मिली तो चाचा बोले काहे तू गूंगा होइब का आज से बोले नहीं हम तोरा बहरा बनाब आज के बाद

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का
2: तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 9:37 हो गल बा और ही चला अगला गीत चलाओ अब जा आशी खातिन जे भी घरे जात हवन घूमे गल रहलन दादी चिंता दादी रश्मी पुपू आरती और बहिन विदुषी संगे आवरी बोले ए दादी के गीतवा चला द हमर खातिन जरूर हो भोजपुरी बाजा बाजे बॉयज के है गीत तोहर खातिन और तोहर सब जुली जुली दादी खातिन तोर पुपू खातिन तोर बहिन लोग खातिन पर जितना कोई अभी साथ देवा धवन उन सब कोई खातिन हंसते मुस्कुराते बस ऐसने हंसते रहिए साथ देते रहिए जा आवरी जानत हवा कौन दिन हमर चाची जोन है कहूँ गल रलन तनी तार दे हो गल जैसे घर

ताल था, चचा त्राका में बोले कहाँ रह ले, काहे इतना तार देहो, कहाँ गल रहे हो? बोले हाँ हौजा पर जानत हवा, रक्त के दान करत रहलन, तो हम भी सोचली तनी पुण्य कमावा, तो हम भी जाके तनी रक्त के दान करके आईनी। बोले हाँ हमार खून पीते पीते जस्ती हो गल, हये से तनी तनी ओवरफ्लो हो गल, हये से दान करे गल रहले। का हो चचा, जब देखत अब चाची के पीछे तू पड़ जाला,

ए दादा कहाँ जाल बेटी घरे का भाई हो बड़ी बेज बेटा डटला नहीं हो तब बहू मरला नहीं हो।

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार गीत संगे हईजा पर चाची ललिता भी जुड़ गल हवन। आज बहुत खुशहाली में हवा का है कि आज बहुत जन्मदिन मनावे गर्ल हवन और हौजा पर रिधान और कियान साथ देवत हवन और संगे हवन उनकर बहिन सुदेवी देवीना ज्ञानी और साथ हवन दादी प्रभावती छोटी माला राम जावन भाई आत्माराम भाई हरीश खातिन और जितना कोई सुनत हवन उन सब कोई खातिन लागी नहीं छूटे राम। हाय चाची ललिता के बहुत ही फेवरेट गीत और हई ये गीत गायत्री जी के भी बहुत फेवरेट है। हाँ नोवल फोंस से उस साथ देवत हवन संगे हवन बेटा अजय मामी हवन कल्याणी मोहन भौजी हवन शकुंतला जी मोताइलोंग से और उनकर खास दोस्त गीता बाई जे हमेशा साथ देवेलन नोवल फोंस से। तो चला हई ये हंसते मुस्कुराते हई गीत सुनब जा तलत महमूद और लता मंगेशकर के आवाज़ में रखल हिंदी फिल्म लागी नाही छूटे राम के हई गीत वा और मजेदार गीत संगे बस साथ देते रहिए जा और मजेदार कार्यक्रम संगे हईजा पर निरपाल जरी भी हमारे संगे जुड़ गल हवन बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिटानिया से उस साथ देवत हवन तो हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा और चाचा और चाची के का बोलब चाची बोले चाचा के हाँ एगो बात बोले ना हमनी के तोहरा हमनी के कौन चीज़ अच्छा लगेला हमर सुंदरता तोहरा अच्छा लगेला जस्ती कि हमर संस्कार अच्छा लगेला तो चाचा बोले हाथ पगली हमनी के तोहर हाई मजाक करे के जो आदत है वो ही सबसे जास्ती अच्छा लगेला

0: भोजपुरी तड़का
1: तड़का
2: मजेदार भोजपुरी तड़का और ही चला अगला गीत जन हा चला अगला गीत अब बहुत है मजेदार गीत हैजा पर सुदेवी जी सुदेवी जी वाकवास से जुड़ गल हवान और वो हमने के बोले एगो बढ़िया गीत तनी हमर खातिन चला द सुदेवी जी साथ देवत हवन और अगला गीत उनका दीदी ललिता खातिन भाई आत्माराम दीदी सुनीता शोभा देवी ना मलेगा से हवन सुधीर प्रतिमा सोहम और सब राम रतन परिवार खातिन और हई जोन अगला गीत है कृषि रुदोई की आवाज में रखल सास बहू में हो गलबा लड़ाई जब लड़ाई हो जाला तो जाने ला ना कौन ची होला कौन दिन भैया मनोहर हमनी के चचा गजोधर के बोले आज भैया जाना था दुनिया के दूगो सबसे बहुत घातक खतरनाक हथियार के नाम जाने ला चचा बोले ला हाँ जानी ला पहला हा अपन बुढ़िया बुढ़िया के आंसू और दूसर हा पड़ोसन के मुस्कुराहट हई जब पड़ेला त आदमी घायल हो जाला

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का मजेदार कार्यक्रम और चला सब कोई अभी हंसता मुस्कुराता है ये तो चाहेला जिंदगी के जुन त्राहका है जुन तनाव है वो भगा भग भाग जाला जब तू तनी सन हंस दे बता और हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ब सा जिंदगी में संगे संगे त्याग उसे हैजा पर चाची शांति जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन और उनका जितना संगतिया जितना परिवार हवन मराठी परिवार दागोजिया के उनकर खातिर अगला गीत गिरीश रूपचंद के आवाज में रखल रोमांटिक नानी और ई नाना और ई खास कर उनका जुन भगीना हवन ओम अप दागोजिया से उनकर खातिर चलाओ अब जा है अगला गीत और हंसते मुस्कुराते सब साथ जुड़ गल हवन तो बस साथ इसने देते रहिया जा

हाउरी जानत हव चचा जी कौन दिन एगो गांव में पार्टी पार्टी रहल त हौजा चल गल अकेले त जब हुआ गल त ओकर संगतिया सब पूछत त काहे काहे अपन काहे अकेले चलैलब पत्नी कहां ह बोले पत्नी के नै अनले हई बोले काहे बोले उ गांव के ह तब मनोहर भैया बोले गांव के ह हम त सोचली तोहर ह तोहर बुढ़िया ह बोले अरे बुढ़बक बुढ़िया हमर ह पर गांव से ह उ नहीं जानेला है सब पार्टी वार्टी

0: कार्यक्रम के आगे बढ़ाओ अब जा और ये हाई जा पर बिल्कुल 10 बजे के बस एक मिनट रगल बा और अगला गीत जन है सुनीता जी खातिन चलाओ अब जा जी हमनी के साथ है देवत हवन गाँव गो बगल से उनकर बहिन हवन कोंगोमा से विमला जी गुडलैंड से हवन अमृता जी और गाँव गोप से ही साथ देवत हवन वीना जी और किशोर खिमिया के आवाज़ में रखल हाई अगला गीत चलाओ अब जाओ उनकर खातिन और उनकर सब परिवार खातिन साथ देते रहिए जा 11 बजे ले चली भोजपुरी तड़का कार्यक्रम
1: ₹819 kHz ये है रेडियो मॉरिशस रेडियो मॉरिशस
2: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का
3: आज की रात रत्ना के संगी एमबी

0: भोजपुरी
1: तड़का
2: का तो मारत है बहुत मजेदार भोजपुरी गीत संगे और जितना मजेदार मजेदार गीत तू मंगले हवा बहुत बढ़िया बढ़िया गीत आज के मौसम के परिवर्तन कर देलक और इस सामदी के रात है और सामदी के रात ऐसा बढ़िया बढ़िया गीत चलेला तो सच्चे के बुझाला पार्टी वार्टी घर में बैठ के रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन संगे तो चला मजेदार गीत संगे हैजा पर श्रीमती जी हमनी के संगे हवन सुयाक से और अगला गीत मोहेश परिवार और चंद्र मुनि परिवार लेस्कालिये से जुड़ गल हवन तो चला विनोद सिवदत्त के आवाज में रखल है गीत करब जा उनकर सगरो परिवार सब परिवार खातिर और चाचा जी हमनी के बोले जानत हो काल रात के हमनी के एगो सपना चला बोले अरे वाह कौन सपना चाचा बोले सपना में भगवान दिखल हमनी के हम बोले अरे वाह साक्षात तोरा तो दर्शन हो गल भगवान के बोले पत्नी बनावे के अगाड़ी भगवान हमनी के बोले अच्छी अच्छा औरी समझदार पत्नी दुनिया के हर कोना में तोहरा मिली हाँ हर कोना में मिली तक कौन ची होल तो भगवान को ना बोल के दुनिया के गोल काहे बना देलक बोले दुनिया के हर कोना में तोरा अच्छा बुढ़िया मिली और ये भगवान के कपार में कौन सी चलाल दुनिया के गोल

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चला 10:15 हो गल बातें और गणपत सत्यमी सैम की आवाज में रखा लगला गीत करब जा नीरपाल जरी खातिन और मजेदार गीत संगे जुड़ब जा और का बोलब चाचा गजोधर के कमाल कौन दिन सहर गल शहर में एगो भीख मंगा होकर से बोले साहब जी तनी 20 रुपया दे द हमनी के कॉफी पिए के तनी मन करता त चाचा तब बोले त काफी त 10 रुपया में मिलेला तब बोले हाँ हमर गर्लफ्रेंड है ना ओकरा भी पियाओ अब तनी काफी बोला अरे भिखारी होके तोरा गर्लफ्रेंड भी रख ले हो बोले नहीं हो साहब जी का बोलब हमर गर्लफ्रेंड हमनी के भिखारी बना देलक

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: अगला गीत किशोर कुमार राम इस्सा के आवाज में रखल कीड़िंग करांग और हाय गीत कर अब जात देवी जी खातिन दे जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन और उनका सब परिवार खातिन कीड़िंग करांग चलो तनी कर अब जा कीड़िंग करांग हाय गीत संगे

0: भोजपुरी तड़का
1: जहाँ बर्तन रहेला हुआं तनी आवाज तो होला बजेला तो चला हैजा पर मजेदार कार्यक्रम संगे जितना कोई साथ देवत हवन कीरिंग करंग चलते रही जीवन में ऐसे हंसते रह मुस्कुराते रह औरी अगला गीत जन चमेली के है गीत चमेली चमेली सुनीता नंद को गई हवन और है गीत अनीता लाल जी के ओर से सुनब जाओ और है गीत सब इतु परिवार गोगा परिवार नागेश्वर परिवार और लाल जी परिवार खातिर हर कौन दिन चचा और चाची तनी अपन तेरास में बैठल रहल और चचा तनी गुरकी मारत रहलन आउरी चचा बोले हाँ हम तोहार बिन कबो जी नहीं सकब तो चाची बोले सच्चे है तू बोला था कि तोहार दारू तो चचा बोले हम तो दारू से बोला था हो का तू सुना था हम तोहर से नहीं बोला था दारू से बोला था

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम आउरी चला रोजील से साजिद जी हमनी के संगे जोड़ गल हवन और उनका जितना सखी हवन जितना सहेली हवन जितना परिवार सब कोई हवन साथ देवत हवन और उनका रल बचपन के दोस्त रत्नाबाई और विजय लक्ष्मी बाई आज उनका से भेंट होगा जे फ्लाक से हमनी के हमेशा साथ देवेलन और उनका खास दोस्त दीना सरोवर खातिन सोना नोयन के आवाज में रखल है गीत के उमंग कर ले हुआ तो चलो मजेदार गीत संगे साथ देवब जा और हंसते मुस्कुराते बस देते रहिए साथ हमनी के 10:32 हो गए बाजा बोल है गीत सुना नोयन के आवाज में

और ये चला अगला गीत बहुत मजेदार है जहाँ पर उमा जी हमने के संगे क्यों पीप से जुड़ गल हवन और सरिता जी भी साथ है देवत हवन क्यों पीप से कीजिएगा सरिता जी हवन काटोबोन से चला अभी थोड़ा घड़ी में तो हर गीत चलाओ अब जा सरिता जी और हैजा पर फूंजू साक से उमा जी साथ जुड़ गल हवन लीलो माथुर सुकन की आवाज़ में रखल अगला गीत चलाओ अब जा उनकर खातिन उनकर सब परिवार खातिन और जितना कोई हरदी हाँ जेकर हरदी आज बा उनकर सब खातिन उन सब खातिन आज के है गीत तोहर खातिन और अमृता जी है ये गीत तोहर खातिन भी चलावा।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का आउरी रात के पौने 11 बज गल बात चला है जा पर अगला गीत जोन है संतोष महादेव के आवाज में रखल राधा जी खातिन चलाव अब जासे तौद गए आमले से साथ देवत हवन आउरी संतोष महादेव के आवाज में रखल है गीत उनकर सब परिवार खातिन और हाई जा पर हमनी के नीता खेदनी जी भी संगे जुड़ गल हवन। गुरुवार के उनकर जन्मदिन रहल, नीता जी तोरा जन्मदिन के बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत बधाई। सैं जुलिया विलास से तू साथ देवत हवा सब परिवार संगे खेदनी परिवार और जीता परिवार की ओर से तोरा जन्मदिन के बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत बधाई। और चला है गीत सुनाओ अब जा और जितना कोई शादी के बंधन में बंधी उनकर खातिन है खास। और ये चचा चाची के किस्सा तो सुनते चला। चाची चचा के बोले हाँ सुना ना कोनो दिन हमने के कोनो भूत पकड़ ली तो हम कौन सी करब। तो चाचा बोले देखा एक को बात बोलब तोरा जे तोरा कोनो भूत पकड़ ले तो ओकरा फट से हाली से ओकर हाथ में तू राखी बांध दियो तो ओकर से तोहर भाई बन जाए। और तो जानत हो ना भाई और चुड़ैल में बहुत बड़ा रिश्ता रहेला।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का 11 बजे के 10 मिनट ट्रगल बावरी माहिन जी है जय हमनी के साथ जुड़ गला वन भाई माहिन खातिन चलाओ अब डा भोजपुरी बाजा बाजे बो इसको नाल बाबूलाल के आवाज में रखल दमाद बाबू घर दमाद कैसे खुशी रहे लन सा और का बोलब चाचा के किस्सा जानत हव चाचा जी अपन ससुराल गइलन उनकर सास बोले अरे वाह दमाद बाबू आज अचानक कैसे हमने के तू दर्शन दे देलक तो चचा बोले हाँ हो तुहार बेटी है बेटी से झगड़ा हो गल बा और हमने के बोले जहनम में जाइया वैसे चल इनी तोहर हिया चला हंसते मुस्कुराते हाई ये बढ़िया गीत दमाद बाबू और दमाद बाबू के गीत जितना दमाद बाबू हवन उन सब कोई खातिन बहुत मजेदार गीत हंसते मुस्कुराते तनी थपरी बजा के

0: भोजपुरी तड़का
1: और ये चला है जापर रोज बेल से हमनी के साथ है देवत हवन संजय जी, पत्नी वीना, संगे हवन गीता, कृष्णा, माला, उनका सब परिवार, अनीता जी फ्लिकॉन फ्लैग से हमनी के सोना नोयन के गीत के तू मांग कर ले रलान, पर अब बहुत कम ती समय रह गल बा तो चलाओ अब जा है अगला गीत बहाल गौरी और सुग्रीव गौरी की आवाज में रखल संजय जी के पसंद पर है ये गीत करब जा सरिता जी खातिन काथो बोन से, मानती जी हमनी के साथ है देवत हवन वेलफॉन्स से, अनंती आरती और उनकर चिंता जी साथ है देवत हवन, श्यामा जी भी हमनी के संगे जुड़ गल हवन और चाची शांता सुकागी से जमील फॉरेस्ट साइड से हमनी के बोले जन्मदिन के है जो गीत तो चलाई रहे रहा बहुत खुशी हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद साथ देते रहिए और हाय आखिरी गीत रही मामा पापा और अगवा बहाल गौरी और सुग्रीव गौरी की आवाज़ में। अच्छा आशा है ये करब जा कि आप सब कोई के आज के कार्यक्रम अच्छा लगा, तो चला फिरो से भेंट आप सावत शाम दिखे रात के 9 बजे से लेके 10 बजे नहीं पर 11 बजे नहीं 2 घंटा के सफर, इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे, चलते चलते हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, नमस्कार शुभ रात्रि सब कोई के।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओं को नीतू का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। आशा करती हूँ कि सर्दी के इस मौसम में आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बस अकेलेपन को दूर करते हुए आपका स्वागत है सुनहरे पल कार्यक्रम में। आपको हमेशा ले चलते हैं गोल्डन एरा में उन एक्टर्स एक्ट्रेसेस संगीतकार गीतकार म्यूजिक गीत के बारे में हम लोग बात करते रहते हैं। आज हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत ग्रेसफुल और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक अगर किसी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है तो वो है शर्मिला टैगोर। उनके गाने इतने मस्त है तो क्यों ना आज सुनहरे पल इनके नाम।

शर्मिला टैगोर की पर्सनालिटी में एक अलग ही नजाकत, सोफिस्टिकेशन और एलिगेंस नजर आती थी। 60s और 70s के दौर में जब बॉलीवुड अपने गोल्डन फेज में था, तब शर्मिला टैगोर ने अपनी एक्टिंग, अपनी ब्यूटी और एक्सप्रेसिव आंखों से लाखों दिलों को जीत लिया था। वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा की एक टाइमलेस आइकॉन बनी।

शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर 1944 को हैदराबाद में हुआ था। वो एक प्रेस्टीजियस बंगाली फैमिली से बिलोंग करती हैं और नोबेल प्राइज विनर रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से संबंध रखती हैं। बचपन से ही उनमें एक कल्चरल और आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट था जिसने उनके पर्सनालिटी को और भी रिफाइंड बना दिया। वैसे उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बंगाली सिनेमा के लेजेंडरी फिल्म मेकर सत्यजीत रे के साथ फिल्म अपूर संसार से की थी। इतनी कम उम्र में भी उनकी एक्टिंग में मैच्योरिटी और नेचुरल एक्सप्रेशंस देखने को मिलते

बॉलीवुड में शर्मिला टैगोर की एंट्री किसी सपने से कम नहीं थी। फिल्म कश्मीर की कली में उनके ऑपोजिट द लेजेंडरी एक्टर शम्मी कपूर। इस फिल्म में उन्हें ओवरनाइट यानी कि रातों रात सुपरस्टार बना दिया। ये चांद सा रोशन चेहरा या फिर जितने भी गाने रहे आज भी उनकी खूबसूरती और चार्म को याद दिलाते हैं। उनकी स्माइल और ग्रेसफुल स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें हर जेनरेशन का फेवरेट बना दिया।

0: कभी नहीं।
1: उसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया जैसे आराधना, अमर प्रेम, सफर, दाग, मौसम, चुपके चुपके, एन इवनिंग इन पेरिस वगैरह वगैरह। फिल्म आराधना में राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया। मेरे सपनों की रानी, रूप तेरा मस्ताना या फिर कोरा कागज था ये मन मेरा, गुनगुना रहे हैं भंवरे जैसे गाने आज भी एवरग्रीन क्लासिक्स माने जाते हैं। शर्मिला टैगोर की एक्टिंग में एक इमोशनल डेप्थ होती थी जो डायरेक्टली ऑडियंस के दिल को छू जाती थी।

वैसे उनकी फिल्मों की लिस्ट इतनी लंबी है तो अमर प्रेम में उन्होंने एक ऐसी महिला का रोल निभाया जो समाज के ताने और दुख सहकर भी अपनी इंसानियत और ममता को नहीं छोड़ती। इस फिल्म में उनका डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशंस इतने पावरफुल थे कि आज भी लोग उनकी परफॉर्मेंस को याद करते हैं। उन्होंने ग्लैमरस रोल्स भी किए और सीरियस इमोशनल कैरेक्टर्स भी, और दोनों में ही वो इक्वली ब्रिलियंट रही।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, वहां पर इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: कहिए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ।

शर्मिला टैगोर की एक और खास बात थी उनका बोल्ड और मॉडर्न थिंकिंग। उस दौर में जब एक्ट्रेसेस को एक फिक्स्ड इमेज में देखा जाता था, तब शर्मिला जी ने अपनी इंडिविजुअलिटी को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस किया। वो बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेसेस में से थी जिन्होंने बिकिनी फोटो शूट करके सोसाइटी

वैसे उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग रही। उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के लेजेंडरी कैप्टेन मंसूर अली खान पटौदी से शादी की। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम आयशा सुल्ताना भी रखा, लेकिन फिल्म दुनिया में वो हमेशा शर्मिला टैगोर के नाम से ही मशहूर रही। उनके बच्चे भी एंटरटेनमेंट और पब्लिक लाइफ में सक्सेसफुल हुए। एक्टर सैफ अली खान, सोहा अली खान उनकी बेटी, और ज्वेलरी डिजाइनर सबा अली खान, अब तो बहू करीना और पोती भी है सारा अली खान।

शर्मिला टैगोर को उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए कई अवार्ड्स और ऑनर्स मिले। उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें प्रेस्टिजियस पद्म भूषण अवार्ड भी दिया। वो इंडियन फिल्म सेंसर बोर्ड की चेयरपर्सन भी रही और सिनेमा के डेवलपमेंट में उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल्स भी निभाए।

शर्मिला टैगोर को देखकर एक रॉयल एलिगेंस और टाइमलेस ब्यूटी का एहसास होता है। उनकी पर्सनालिटी में सिंप्लिसिटी और सोफिस्टिकेशन का परफेक्ट बैलेंस नजर आता है। वो उन एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्होंने सिर्फ फिल्म्स में एक्टिंग नहीं की बल्कि इंडियन सिनेमा की डिग्निटी और क्लास को नई पहचान दी। शर्मिला टैगोर का नाम हमेशा बॉलीवुड के गोल्डन एरा की चमक, खूबसूरत अदाकारी और ग्रेसफुल स्टारडम के साथ जुड़ा रहेगा। उनकी फिल्में, उनकी मुस्कान, उनका अंदाज आज भी सिनेमा लवर्स के दिलों में एक खास जगह रखता है। प्रणाम, शुभ रात्रि।

जो मोस्ट सुपीरियर है। हमें और आपको इन दिनों के लिए वो दुआ अदा करो जो दुआ अफजल है, और ये दिन भी अफजल है, द मोस्ट सुपीरियर। नाइट्स एंड डेज ऑफ द ईयर, पूरे साल की रातों में और दिनों में सबसे अफजल और बेहतरीन दिन और रात। सो यहां इंतखाबुल अफजल मिल अफजल हुआ, यानी अफजल तरीन जिक्र और दुआ को उन रातों के लिए मुंतखब किया गया और सेलेक्ट किया गया, जो रातें और जो दिन सबसे बेहतर है। सो इस वजीफे को जो बहुत आसान है, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये बहुत आसान इजी वजीफा है। दस दिनों के लिए आपकी जुबान पर सुबह शाम इन मुबारक और पाकीजा कलिमात का विर्द होना चाहिए, ताकि इस जुबान को इन कलिमात का नूर नसीब हो और हमारी जुबान पर वो बातें आए, हमारे लिखने के दौरान हम वो बातें लिखें जिसमें नूर हो, जिसमें रोश हो, जिसमें उम्मते मुस्लिमा को यूनाइट किया जाए, उनको डिवाइड होने से बचाया जाए, जिसमें किसी को स्ट्रेस डिप्रेशन में डालने के बजाय उस गुफ्तगू से, उस तहरीर से, उस तकरीर से स्ट्रेस और डिप्रेशन और इस तरह की अमराज से निकालने, जिसमें किसी की तौहीन और तजलील के बजाय उसकी इज्जत और तकरीम का पहलू हो, बेअदबी डिसरिस्पेक्ट के बजाय अदब रिस्पेक्ट का पहलू है। जिन लोगों की जुबानों पर ये कलिमात होते हैं, जिनकी जुबानों पर सुबह शाम ये औरादे मुस्तफवी होते हैं, ये मुस्तफवी वज़ाइफ, तो फिर अल्लाह पाक उनकी जुबानों को वो नूर अता करता है, उनकी जुबानों को वो रोशनी अता फरमाता कि जिस रोशनी से माशरे के, सोसाइटी के सारे अंधेरे छट जाते, सारी तारीखियां दूर हो जाती, डार्कनेस अंधेरा वो फिनिश हो जाता, और उसके साथ साथ एक दुरूद है जिसको कहते हैं सलातुल कमाल, उसको भी अपना वजीफा बना। सलातुल कमाल, कमाल का माना है परफेक्शन, कामिल होना। जाहिर है कि हर एक यहां भी परफेक्ट होना चाहता है, मोमिनीन में से, अहले ईमान में से, और आखिर तो इस दुरूद का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये इंसान को कामिल बना देता है, इंसान को परफेक्ट बना देता है। इस दुरूद में ये कलमा कमाल का आया है और उसका बराह रास्त पढ़ने वाले पर असर होता है। अगर आप ज्यादा ना पढ़ सके तो इन दिनों में और इन रातों में इसको

0: सौ दफा पढ़े, 100 times, 100 दफा इसको पढ़े, हर मुश्किल के लिए, हर डिफिकल्टी के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए, स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए, फॉर एनी डिजीज, हार्डशिप के लिए, अलगरज इसकी बरकत से इंसान अल्लाह पाक से जो मांगता वो उसे आता है। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आली सय्यिदिना मुहम्मद अददा कमालिल्लाह कमा यलीक बिकमालिही। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम वबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद अददा कमालिल्लाह वअददा कमा यलीक बिकमालिही। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम वबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अददा कमालिल्लाह व कमा यलीक बिकमालिही। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम वबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अददा कमालिल्लाह व कमा यलीक बिकमालिही व कमा यलीक बिकमालिही। आला हजरत ने फरमाया काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नाम रजा तुम पे करोड़ों दरूद। इन रातों में, इन दिनों में स्पेशली वो काम करें जिससे अल्लाह राजी हो, जिससे उसके हबीब राजी हो। बहुत फितने हो गए, बहुत फसाद हो गए, आप कहते हैं ना बहुत दिजोत हो गया। खुदा के लिए इन 10 दिनों में अल्लाह की तरफ आए, अल्लाह के रसूल की तरफ आए। ये हज के अय्याम, ये ज्यारत के अय्याम, ये हज के दिन, ज्यारत के दिन। हज का फैज और उसका नूर फकत मक्का मुकर्रमा तक और ज्यारत का नूर फकत मदीना मुनव्वरा तक महदूद नहीं होता। उसका वो नूर हर सू फैलता, पूरी दुनिया में फैलता चला जाता है। उस नूर को पाने के लिए जरूरी है कि हमारे दिल के बर्तन साफ हों, हमारे दिमाग के बर्तन साफ हों। इसलिए कि जब हम नापाक बर्तन में सालन नहीं डालते तो वो नापाक बर्तन में अपना पाक नूर कैसे डाल सकता। सो फितने और फसाद से निकले, बुग़्ज़ो इनादो अदावत से निकले, जलेसी और गाकिन जैसी बीमारियां जिसने कैंसर की तरह आपको कमजोर कर रखा है, ये रूहानी कैंसर है, इससे निकल आए। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।
1: NBC रेडियो हर पल आपके साथ।

0: सी रेडियो हर पल आपके साथ
1: एंथनी गोंसाल्विस
2: गोंसाल्विस
1: राइट माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: सेबेस्टियन।
2: नो
1: गोल्डी सोल्डी।
2: नो एंथनी गोंसाल्विस।
0: ओ यस एंथनी गोंसाल्विस।
3: एमबीसी रेडियो, वजह मुस्कुराने की।

हाय हाय हाय।